आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई लकी ना।
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
6: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
8: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
9: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
10: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9493045651 या 9707-06-575।
11: दोस्त लोग, सवेरे सवेरे आ गेल बाड़ी राव रेडियो दोस्त दीपाली, आ करे तरी रउआ सब के सुप्रभात प्रणाम। ठीक सोचनी श्रोता लोग, कार्यक्रम है आपन दी आपन देखभाल। दोस्त लोग, सवेरे सवेरे हम रउआ से ना मिली तबले ई लग भी ना करेला कि सवेर भइल बा। तो दोस्त लोग, सवेर तो हो गइल बा, तो चली यही के साथ शुरुआत कई जाओ अपना प्रोग्राम के। आ हम बताई आज के हेल्थ टिप्स। दोस्त लोग, आज जानल जाई सबसे पहले पाइनएप्पल यानी अनानास के घरेलू नुस्खा। एसिडिटी में पाइनएप्पल के जूस के सेवन करी, ई एंजाइम से भरल होला। खाए के बाद अगर पेट अधिक भरल व भारी महसूस हो रहल हो के, तो आधा ग्लास ताजा अनानास के जूस पी। सारा बेचैनी और एसिडिटी इसे खत्म हो जाई। पाइनएप्पल के अपना डाइट में इस्तेमाल कर बढ़त उम्र के साथ कमजोरी, चक्कर आइल और अनिद्रा के भगावल जा सकेला। रोग से लड़े के क्षमता बढ़ावे खातिर अनानास के जूस लाभकारी है। पथरी के मरीज के अनानास जूस लेवे के कहल जाला, ताकि आगे और स्टोन ना बने। अनानास में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होला, ऐसे दृष्टि दोष दूर होला। अनानास के जूस के मिश्रण कुछ मिनट तक आँख के नीचे लगा के रखे से काफी फायदा होला। दोस्तों चलिए अब जान जाओ सौंदर्य के लाजवाब घरेलू नुस्खा। एक पपीता के टुकड़ा चेहरा पर रगड़े से चेहरा चमकदार होला। कच्चा दूध में बादाम पीस के मिलाई आ ई पेस्ट के नियमित रूप से चेहरा पर मले से चेहरा आकर्षण लागेला। शकरकंदी के उबाले के पश्चात बचल पानी से फटल होखल एड़ी धोए से ओ ठीक होला। बाल के काला करे

0: धूप में रखी, फिर बाल में हल्का हाथ से मालिश करी। इसे बाल के जड़ मजबूत हुई और ये बाल लंबा हुई। गोभी के पत्ता के पीस के उसके रस में थोड़ा सा शहद मिला के चेहरा पर लगाई और ये सूखे पर धोली। इसे त्वचा के खुश्की व कालापन कम होला। पालक के काट के उबाल ली आ ये पानी के हल्का हाथ से चेहरा पर लगाई। इसे त्वचा में निखार आई। खीरा के रस में थोड़ा सा दूध मिला के चेहरा पर लगावे से रंग साफ होला। खीरा के टुकड़ा के चेहरा पर रगड़े से चेहरा के दाग धब्बा कील मुहासा व छाई कम होला। श्रोता दोस्त, ई तरह है सौंदर्य के लजबाब घरेलू नुस्खा। चलिए अब हम बतावे जात बानी कुछ उपयोगी घरेलू नुस्खा। बथुआ के भाजी के पानी में उबाल के वो पानी से हाथ पैर धोए से त्वचा मुलायम हो जाला। बच्चा के सर्दी लग जाए तो वो लोग के हाथ पैर के नाखून पर ब्रांडी लगाई और छाती व पीठ पर भी ब्रांडी लगा के मालिश करे से सर्दी के असर मिट जाला। शिशु के पतला दस्त लाग रहा लोके तो बड़ा हरड़ ठंडा पानी में घीस के एक छोटा चम्मच भर सुबह दोपहर शाम के पिलावे से पाचन क्रिया सुधर जाला। और पतला दस्त लागल बंद हो जाला। अगर कब्ज होके तो बड़ा हरड़ गर्म पानी में घीस के छोटा चम्मच भर दिन में दो बार ई दो तीन दिन तक लेवे से कब्ज मिट जाला। नाभि में प्रतिदिन तेल या शुद्ध घी रात के लगा के सूते से होठ ना फाटेला। होठ मुलायम चमकीला व गुलाबी हो जाला। तो दोस्त लोग, आप चली हम बता दी चक्कर आवे तक का करे के चाहिए। कभी कभी केहू के भी चक्कर आवेला। बैठे रहे के बाद उठे पर आँख के सामने अंधेरा छा जाला और ये चक्कर आवेला। इस स्थिति में एक सफल सिद्ध नुस्खा हम बतावे जातानी। एगो कड़वा सूखा लंबा या गोल लौकी या तुम्बी जौन पकावे के बाद अपने आप सूख चुकल होके लेके एके डंठल के तरफ से काट दी ताकि अंदर के पोला यानी खोखलापन दिखाई दे। एकरा अंदर बीज या सूखल गुद्दा होके तहिला हिला के गिरा दी। इमें ऊपर तक पानी भर के 12 घंटा तक रखी, फिर हिला के पानी निकाल के साफ कपड़ा से दो बार छान ली। ई पानी के ऐसन बर्तन में भरी जिमे राउर नाक डूब सके। नाक डुबा के इमें खूब जोर से सांस खींची ताकि पानी नाक से अंदर चढ़ जाए। दिन भर नाक से पानी टपकत रही। पानी खींचे के बाद नाक नीचा करके आराम करी। ये उपाय से ये व्याधि सदा खातिर नष्ट हो जाए। तो चलिए अब जानल जाओ अखरोट के अचूक फायदा के बारे में। बच्चा के बहुत ज्यादा क्रीमी हो गयी होके तो ऊ लोग के रोज एगो अखरोट के गिरी खिलाई। इसे सारा क्रीमी मल के रास्ता से बाहर आ जाए। छिलका और गिरी सहित अखरोट के बारीक पीस ली आ रोज सुबह शाम ठंडा पानी के साथ लगातार 15 दिन तक एक एक चम्मच ली। पथरी मूत्र मार्ग से बाहर आ जाए। अखरोट के तेल लगावे से दांत खाज में बहुत फायदा मिलेला। बच्चा के बिस्तर गीला करे की आदत छुड़ावे खातिर बच्चा के रोज सूते से पहले 2 अखरोट और 15 किशमिश खिलाई। ये प्रयोग करके देखी बच्चा की आदत अपने आप छूट जाए। एक एक खाए से नर्वस सिस्टम की फायदा और ये दिमाग की तरावट मिलेगा। अखरोट के साथ कुछ बादाम और मुनाका खाई व एकरा ऊपर से दूध पिए से वृद्धा के बहुत फायदा मिलेगा। अखरोट खाए में थोड़ा सावधानी रखे के चाहिए क्योंकि अखरोट गर्मी करेला और कफ बढ़ावेला। ऐसे एक बार में 5 से ज्यादा अखरोट ना खाए। ज्यादा अखरोट खाए से पित्त बढ़े की संभावना रहेला, जिसे मुंह में छाला, गला में खुश्की या खुजली और अजीर्ण होके की संभावना रहेला। तो दोस्तों चलिए अब जानल जाओ एलर्जी से बचे की कुछ घरेलू नुस्खा। धूल मिट्टी से नाक में एलर्जी हो जाला तो इस सब परेशानी खातिर चलिए हम बता देता नहीं कुछ नुस्खा। सौंठ, काली मिर्च, छोटी पीपर और मिश्री ये सब द्रव के चूर्ण 10-10 ग्राम, बीज निकालल होखल मुनाका 50 ग्राम, गोदंती हरताल भस्म 10 ग्राम। और तुलसी के 10 पत्ती इस सब के मिला के खूब घोंट के पीस ली और 3-3 रत्ती के गोली बना के छाया में सुखा ली। सुबह व 2 गोली शाम के गर्म पानी के साथ 3 माह तक सेवन करी। ठंडा पदार्थ, बर्फ, दही, ठंडा पेय से परहेज करी। ऐसे नाक की एलर्जी दूर हो जाए। तो दोस्तों ये रहल है आज के आपन कार्यक्रम आपन दी आपन देखभाल। अब दी इजाजत दीपाली के जाए के, फिर हम लेके आए कल कुछ दूसर नुस्खा। नमस्कार।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करें 87-894-18744।
6: ठक ठक।
7: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
9: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: नमस्कार, मैं हूँ जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा। कल के एपिसोड में आपने हमारे साथ सुना शिव ध्यान सिखाता है, शिव हर जरूरी ज्ञान सिखाता है। अब आगे
11: आई एम सो सॉरी, आपको कहीं लगी तो नहीं?
12: नहीं मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं?
11: अरे आपको तो बहुत ब्लीडिंग हो रही है, हॉस्पिटल पास में ही है, मैं आपको लेके चलता हूँ।
12: ओके।
11: हमें कुछ देर वेट करना पड़ेगा, डॉक्टर बुलाएंगे अंदर।
13: हटिए
6: हटिए साइड में हटिए।
13: अरे अरे अरे भाई हटो सामने से।
14: हटिए हटिए सामने से। एक्सीडेंट एक्सीडेंट इमरजेंसी कैसे हटिए सामने से।
6: बेटा प्रणव बेटा।
13: बस बस बस ठीक हो जाएगा। बैठो यहाँ बैठो।
6: हमारे बेटे ने ऐसा क्या गलत कर दिया जिसकी ये सजा मिल रही है उसे? उसे कुछ हो गया तो? नहीं नहीं मेरे प्रणव को कुछ नहीं हो सकता।
13: अरे तुम रोना बंद करो, बस करो, डॉक्टर्स गए हैं ना।
15: आंटी आप फिक्र मत कीजिए, ठीक हो जाएगा सब, डॉक्टर्स है ना।
16: आई एम सॉरी, हम कोशिश कर रहे हैं पर चोट सर पर लगी है और ब्रेन ने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया है। मेडिकल लैंग्वेज में इसे ब्रेन डेड कहते हैं। अभी सांसें चल रही हैं पर ऐसी सिचुएशंस में ज्यादातर पेशेंट्स नहीं बचते। वी कैन ओनली प्रे फॉर हिज रिकवरी।
6: नहीं ऐसे नहीं हो सकता।
15: आंटी
16: सर एक मिनट के आप अंदर आ सकते हैं, आपसे कुछ बात करनी है।
13: कहिए डॉक्टर।
16: देखिए बाहर आपकी वाइफ की हालत ठीक नहीं है इसलिए आई डिडंट मेंशन। मुझे लगा शायद वो इस बात को लेकर और परेशान हो जाए।
13: पता है डॉक्टर।
16: ये साफ है कि आपके बेटे को हम नहीं बचा पाएंगे। हॉस्पिटल की पॉलिसीज के हिसाब से हम बॉडी घर भिजवा देते हैं आफ्टर ऑल द फॉर्मेलिटीज, पर कुछ ही दिनों पहले प्रणव ने हमारे ही हॉस्पिटल में ऑर्गन डोनेशन के लिए साइन अप किया था।
13: क्या?
16: आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि उसने आपको बताया नहीं, इसलिए मैंने सोचा एक बार आपसे पूछ लूं। फैमिली का कंसेंट लगेगा। देखिए अभी सांसें चल रही है आपकी बेटी की, ये सब क्लैरिटी पहले ही मिल जाए तो ठीक रहता है।
13: लेकिन हमें प्रणव ने बताया नहीं।
16: आई वुड सजेस्ट आप एक बार अपनी वाइफ से भी बात कर लीजिए।
15: आंटी बस बस आंटी। आइए अंकल।
13: कविता बस करो, अभी प्रणव की सांसें चल रही है ना, तुम क्यों ऐसे? अभी शांत हो जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
6: कहिए।
13: वो प्रणव ने।
6: कहिए ना। प्रणव ने क्या?
13: कुछ दिनों पहले प्रणव ने ऑर्गन डोनेशन के लिए रजिस्टर किया है इसी हॉस्पिटल में।
6: ऑर्गन डोनेशन क्या?
13: हाँ हॉस्पिटल वाले इसीलिए फैमिली का कंसेंट मांग रहे हैं।
6: क्या? हम क्या डोनेट कर सकते हैं? हमसे गरीब कौन है? अभी हमारा बेटा अभी मौत से जूझ रहा है, हम क्या डोनेट कर सकते हैं? मुझे नहीं समझ आ रहा है अब कुछ, मुझे नहीं पता कुछ भी। आप उनसे कह दीजिए हम ये सब बातें ना उसके ठीक होने के बाद करेंगे।
13: कविता हमें उन्हें जवाब अभी देना है, मेरी बात समझने की कोशिश करो।
6: क्या समझूं मैं अपने बेटे को कुछ होने नहीं दूंगी, और अगर उसे कुछ हो गया तो मैं ये पाप नहीं कर सकती, ऐसी विदा नहीं कर पाऊंगी अपने बेटे को। समझा दो उन्हें ये पाप है, पाप।
15: आंटी आप समझने की कोशिश कीजिए, ये पाप नहीं है, ये तो पुण्य है।
6: मेरा भगवान मुझे ये कहता है कि ऐसे मेरे बेटे को मोक्ष नहीं मिलेगा। हे ईश्वर, हे ईश्वर।
15: आंटी ईश्वर भी यही मानते हैं कि दान सबसे बड़ा पुण्य है।
13: शांत हो जाओ कविता, रोना बंद करो, ईश्वर से प्रार्थना करो, उनके बारे में सोचो, अपना ध्यान भटकाने की कोशिश करो।
15: आंटी वैसे तो मैं आपका कुछ नहीं लगता, पर ऐसे टाइम पर मैं आपको ईश्वर की ही कहानी सुनाना चाहता हूँ। आपका ध्यान थोड़ा उस तरफ लग जाएगा तो आप।
13: हाँ बेटा सुनाओ।
15: माता पार्वती शिव जी को पाने के लिए घोर तपस्या कर रही थी। उनकी ऐसी तपस्या देखकर सभी देवता प्रसन्न थे।
17: विस्मयकारी है पार्वती का तप।
18: महादेव पार्वती की मनोकामना पूरी करें।
17: महादेव आपके द्वारा भेजे गए सप्तऋषियों की परीक्षा में देवी सफल रही है, आप देवी की और कितनी परीक्षा लेना चाहते हैं?
19: ठीक है, मैं स्वयं उसकी परीक्षा लेने जाऊंगा।

0: पार्वती, आंखें खोलो पार्वती।
1: महादेव,
0: मैं तुम्हारे तप से अत्यधिक प्रसन्न हूँ देवी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।
2: बचाओ, बचाओ।
1: हे प्रभु, ये कैसी आवाज है? ये क्या?
2: मुझे कोई बचाओ।
1: प्रभु, ये मगरमच्छ, ये बचाओ।
2: देवी, देवी मुझे बचाइए।
1: मैं क्या करूं ईश्वर? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं?
2: मेरे ना तो माँ है ना बाप, मैं अनाथ हूँ माता। मुझे बचा लीजिए, मुझे बचाने वाला कोई नहीं है।
1: मगर देव, इस बच्चे को छोड़ दीजिए इसे, ये बेचारा अनाथ है। छोड़ दीजिए इसे, जाने दीजिए।
3: असंभव। यदि मैं अपने आहार पर दया करूँगा तो खाऊंगा क्या? दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे अपना आहार स्वीकार करना ही मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने मेरी भूख पर दया करके दिन के छठे पहर पर इस लड़के को भेजा है, मैं इसे कैसे छोड़ दूं?
1: हाँ, लेकिन ये बच्चा बेचारा अकेला है। देखो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, इस बच्चे को छोड़ दो। बदले में तुम जो चाहिए वो मुझसे मांग लो, लेकिन इस बच्चे को जाने दो।
3: सोच लो देवी, मैं कुछ भी मांग सकता हूँ, फिर तुम अपने वचन से पीछे नहीं हट सकोगी।
1: हाँ मगर देव, फिर चाहे तुम मेरे प्राण ही क्यों ना ले लो, लेकिन इस बच्चे को छोड़ दो।
3: यदि ऐसा है तो ठीक है। मुझे ज्ञात है तुमने महादेव का तप करके उनसे वरदान प्राप्त किया है। यदि उस वरदान का फल तुम मुझे दे दो तो मैं ऐसे नहीं खाऊंगा, इसके प्राण छोड़ दूंगा।
1: अवश्य, मैं अपने तप का फल आपको देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। बस आप इस बालक को जाने दीजिए।
3: एक बार फिर सोच लो देवी, जोश में आकर संकल्प मत करो। तुम्हारे हजारों सालों के तपों का फल एक साधारण बालक के लिए गवाना चाहती हो?
1: मेरा निश्चय पक्का है, आप इसे जीवन दान दीजिए। मैं आपको अपने तप का फल देने के लिए तैयार हूँ।
2: माता, आपके दान से इस मगरमच्छ का देह तो तेज सा चमक रहा है।
0: हे देवी, देखो, तुम्हारे तप के प्रभाव से मैं तेजस्वी बन गया हूँ। तुमने जीवन भर की अपनी ये पूंजी एक बालक के लिए व्यर्थ कर दी, पर यदि तुम चाहो तो अपनी भूल सुधारने का मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ।
1: नहीं ग्रह, अब कोई संदेह नहीं, तब तो मैं पुनः भी कर सकती हूँ। यदि आप इस लड़के को निकल जाते तो क्या इसका जीवन वापस मिल पाता? हे ईश्वर, ये क्या था? क्या मैं स्वप्न देख रही थी? ये बच्चा, ये मगरमच्छ कहाँ चले गए दोनों? मैं दोबारा तप करूंगी, अपने महादेव को प्रसन्न करूंगी। हाँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
0: पार्वती, पार्वती, तुमने मुझे फिर याद किया?
1: प्रभु।
0: पार्वती, क्या हुआ? तुम फिर से तप कर रही हो? तुम्हें तो वरदान मिल गया ना, अब भला क्यों तप कर रही हो?
1: प्रभु, एक बालक के प्राण बचाने के लिए मैंने अपने तप का फल दान कर दिया। आपको पति रूप में पाने के संकल्प के लिए मैं वैसा ही घोर तप करके आपको प्रसन्न करूंगी।
0: तुमने अपने वर्षों की साधना का फल किसी और को दान कर दिया, एक बालक के प्राण बचाने के लिए।
1: लेकिन प्रभु, मैं तो तब दोबारा कर सकती हूँ, किंतु यदि उस बालक के प्राण चले जाते तो मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाती।
0: मुझे खुशी है इस बात की देवी, वास्तव में वो मगरमच्छ और वो बच्चा दोनों मैं ही था। तुम्हारा चित प्राणी मात्रों में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये लीला रची। अनेक रूपों में दिखने वाला मैं एक ही एक हूं पार्वती, तुमने अपना तप मुझे ही समर्पित कर दिया है, इसलिए तुम्हें और तप करने की आवश्यकता नहीं।
1: प्रभु,
0: जानती हो पार्वती, दान इस संसार का सबसे बड़ा पुण्य है। तुमने वो सबसे बड़ा पुण्य कमाया है। तुमने अपना वरदान तो दान किया ही, उस बच्चे को भी प्राण दान किए हैं।
1: प्रभु,
0: जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।
4: आंटी, दान इस संसार का सबसे बड़ा पुण्य है, भगवान का भी यही मानना है।
5: कविता, अपने आप को संभालो।
1: ये पाप होगा ना?
4: नहीं आंटी, कितने लोगों की जान बच सकती है आपके प्रणव के किसी एक ऑर्गन से। न जाने कितने लोग हर दिन इसके लिए अपनी जान गंवाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई डोनर नहीं मिलता। ऑर्गन डोनेशन तो बहुत बड़ा पुण्य होगा।
6: आई एम सो सॉरी, हम आपके बेटे को बचा नहीं सके। अपने आप को संभाल लीजिए प्लीज। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रणव ने ऑर्गन डोनेशन के लिए साइन अप कर रखा है। हमें एक घंटे के अंदर ही उनके ऑर्गन्स को विड्रॉ करना होगा। आप आपस में बात कीजिए और हमें कंसेंट दे दीजिए प्लीज।
1: नहीं नहीं मेरा बच्चा, नहीं, मैं अपने बेटे को ऐसे अपाहिजों की तरह विदा नहीं कर सकती।
6: नहीं मैम, आप चिंता मत कीजिए, ऑर्गन सर्जिकल तरीके से निकाले जाते हैं और आपको अपने बेटे को अपाहिज नहीं विदा करना होगा। ऐसा नहीं होता
5: डॉक्टर। कंसेंट फॉर्म कहाँ मिलेगा? हम तैयार हैं।
6: जी, ये लीजिए।
1: मेरे बेटे को मोक्ष मिलेगा? बताइए ना, मिलेगा उसे मोक्ष?
4: आंटी, उसके ऑर्गन्स किसी के काम आएंगे, उसे कितनी दुआएं मिलेंगी, उसे सिर्फ मोक्ष ही नहीं, भगवान के पास स्थान मिलेगा।
5: हाँ कविता, ये लड़का ठीक कह रहा है।
6: मिस्टर नील, आइए, आपकी पट्टी कर देते हैं।
4: अब नहीं, एक्चुअली अब मैं ठीक हूँ, मैं निकलता हूँ, लेट हो रहा है।
5: बेटा, तुमने बिना किसी रिश्ते के हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम प्रणव की देह संस्कार तक तो रुक जाओ।
4: जरूर रुक जाता अंकल, लेकिन अभी मुझे जाना होगा, पर मैं आपसे जल्द वापस मिलूंगा।
5: वो कैसे बेटा?
4: आप प्रणव के सारे कार्य खत्म करने के बाद शिवजी से मिलने अमरनाथ आइए, आपको भी अच्छा लगेगा और मैं भी आपसे वहीं मिलूंगा।
5: अमरनाथ?
4: जी अंकल, अमरनाथ, भोलेनाथ के धाम। चलता हूं, अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।
7: ऊपर वाला सबको अच्छा काम करने का बहुत मौका देता है, जीते जी भी और मरने के बाद भी। अभी तू बोलेगा कि जैकी थोड़ा सा सरक गया। क्या बोल रहे ला? बिड़ू, मरने के बाद कोई किसी के काम कैसे आ सकता है बताता दरू। अपने देश में हर साल करीब 5 लाख लोग जरूरत के वक्त ऑर्गन ना मिलने के वजह से अपनी जान गंवाते हैं, क्योंकि आज भी यह माना जाता है कि अपनी आखिरी टाइम में अगर हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स नहीं है तो हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन जरा सोच, अगर तेरे अधूरे होने से किसी का जिंदगी पूरी हो जाए तो क्या ऊपर वाला मोक्ष नहीं देगा क्या? शिव दानी है, शिव देना सिखाता है। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा शिवा।
8: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
10: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
11: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH-27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
10: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
11: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष विशेषज्ञों द्वारा।
10: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
11: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
10: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
11: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
12: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
13: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
12: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
13: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
12: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
14: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
15: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
14: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
15: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
14: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
15: जानकारी है तो कॉल करें 62052 61112 पे।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9939365923।

0: नेचर डोलता है और बोलता है, तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्म

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता: शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066271।
0: कॉल

0: कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
1: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। आपातकालीन चिकित्सा को बेहतर बनाने के लिए जिला पदाधिकारी ने की बैठक। आज 7 परिवारों को मिली पक्के मकान की चाबी। कृषि अतिक्रमण से मुक्त करा दी गई सबिया एयरफील्ड की भूमि। सोशल मीडिया पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और मारपीट के मामले में 3 आरोपियों को आज अदालत ने सुनाई सजा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी समीर सौरभ के निर्देश पर सदर अस्पताल गोपालगंज में मरीजों को बेहतर, सुलभ एवं त्वरित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने तथा आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जिला पदाधिकारी के द्वारा अस्पताल के स्वास्थ्य सेवाओं की नियमित समीक्षा करते हुए मरीजों के इलाज, रेफरल, एम्बुलेंस व्यवस्था एवं आपातकालीन सेवाओं की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बीच बताया जा रहा है कि 7 जुलाई 2026 से 18 अगस्त 2026 तक की अवधि के चिकित्सा आंकड़ों के अनुसार 6 सप्ताह के दौरान अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में कुल 733 गंभीर मरीजों को भर्ती कर उनका उपचार किया गया। अंतिम सप्ताह 12 से 18 अगस्त 2026 के दौरान सर्वाधिक 181 गंभीर मरीज आपातकालीन वार्ड में पहुँचे। आपातकालीन वार्ड में भर्ती मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गयी। अस्पताल प्रशासन के अनुसार गंभीर मरीजों को उच्च चिकित्सा केंद्रों पर रेफर किए जाने के प्रमुख कारणों में बेहोशी, गंभीर मल्टीपल फ्रैक्चर, चेतना की कमी तथा सड़क यातायात दुर्घटनाएं शामिल रही हैं। मरीज की गंभीर स्थिति को देखते हुए आवश्यकता के अनुसार उच्च चिकित्सा संस्थानों में रेफर करने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। मरीज के अनुरोध पर किए जाने वाले रेफरल में भी आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। गंभीर मरीजों को सुरक्षित रूप से उच्च चिकित्सा केंद्र तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा का भी समुचित समन्वय किया जा रहा है। 6 सप्ताह की अवधि में 34 गंभीर मरीजों को एम्बुलेंस के साथ त्वरित रूप से उच्च चिकित्सा संस्थानों में भेजा गया है। जिलाधिकारी ने सदर अस्पताल में आने वाले मरीजों को समय पर उपचार, आवश्यक दवाएं, चिकित्सकीय जांच, आपातकालीन सेवा एवं अन्य जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर आवश्यक निर्देश दिया है। जिला प्रशासन द्वारा विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है कि गंभीर मरीजों के इलाज में अनावश्यक विलम्ब न हो। आपातकालीन वार्ड में चिकित्सकीय एवं पैरा मेडिकल स्टाफ की उपलब्धता प्रभावी रहे तथा आवश्यकता पड़ने पर मरीज को समय से उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर भी किया जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवास विहीन एवं जरूरतमंद परिवारों को पक्का एवं सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने की दिशा में केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा निरंतर महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। इसी क्रम में आज केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा बिहार के बापू सभागार पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभुकों को स्वीकृति पत्र एवं पूर्ण आवास की चाबी का वितरण किया गया तथा राज्य के लिए आवास निर्माण का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया। इस अवसर पर गोपालगंज में समाहरणालय के सभागार में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और हथुआ के विधायक राम सेवक सिंह की गरिमामय उपस्थिति रही और जिले के 7 लाभुकों को, जिनका आवास पूर्ण है, उनको आवास की चाबी दी गयी। बताया जा रहा है कि पात्र लाभुकों के चयन, आवास स्वीकृति, निर्माण कार्य की प्रगति और पूर्ण आवास के उपरांत लाभुकों को चाबी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। 2024-25-25-26 के तहत कुल 16,773 के विरुद्ध 13,467 आवास पूर्ण कर लिए गए, जो लक्ष्य का 80% से भी अधिक है। शेष आवासों को भी अभियान चलाकर पूर्ण करा लेने की बात कही गई। जिला प्रशासन ने कहा कि हमारा स्पष्ट प्रयास है कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों तक पारदर्शी, समयबद्ध एवं प्रभावी तरीके से पहुंचे। इस दौरान कार्यक्रम में जिलाधिकारी सहित जिले के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जिले में सरकारी एवं रक्षा संपदा की भूमि को अतिक्रमण मुक्त एवं सुरक्षित रखने की दिशा में बिहार सरकार के निर्देश पर गोपालगंज जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। सरकार के निर्देश पर जिलाधिकारी समीर सौरभ के प्रभावी प्रशासनिक समन्वय के फलस्वरूप हथुआ के सवैया परित्यक्त एयरफील्ड की 259 एकड़ से अधिक रक्षा भूमि से कृषि अतिक्रमण हटाने की व्यापक कार्रवाई सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। यह कार्रवाई भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के फेज 3 सर्वे प्रोजेक्ट के तहत रक्षा भूमि के संरक्षण एवं उसके वास्तविक भौतिक स्वरूप को सुनिश्चित करने की दिशा में की गई कार्रवाई है। इसके उपरांत अतिक्रमण मुक्त भूमि का भौतिक कब्जा विधिवत रक्षा प्राधिकार को सौंप दिया गया है। सरकार के निर्देश के अनुपालन में DM समीर सौरभ के द्वारा सवैया एयरफील्ड में रक्षा भूमि के संयुक्त सर्वेक्षण सीमांकन और अतिक्रमण हटाने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों और कर्मियों की संयुक्त टीम का गठन किया गया था और टीम में रक्षा संपदा अधिकारी दानापुर और गोपालगंज के प्रशासनिक पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि हथुआ में कुल 473 एकड़ से अधिक रक्षा भूमि का सर्वे और सीमांकन कार्य किया गया है। सर्वेक्षण के दौरान रक्षा भूमि पर मौजूद 19 एकड़ से अधिक अतिक्रमण का विवरण भी दर्ज किया गया है। इसके बाद रक्षा भूमि के बड़े भूभाग पर किए गए कृषि से संबंधित अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई कर ली गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी के द्वारा एक विशेष धार्मिक समुदाय को लक्षित करते हुए अभद्र आपत्तिजनक और आपसी सामाजिक सौहार्द को प्रभावित करने वाली भाषा का प्रयोग करते हुए पोस्ट किया गया था। पुलिस को जैसे इसकी जानकारी हुई तो पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू किया और इस पोस्ट को करने वाले आरोपी को पुलिस ने पटना से गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि पकड़ा गया आरोपी गोपालगंज शहर के ही सरिया वार्ड नंबर 2 का रहने वाला राजू कुमार राम बताया जा रहा है। इसके पिता मोहन राम है। आरोपी ने गिरफ्तारी के बाद इस पोस्ट को करने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। अब इसे गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। नगर थाना की पुलिस ने चीटिंग कांड के मामले में भी फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी असलम अली पिता नूर अहमद साकिन रूपन छाप थाना बरौली का निवासी है। बताया जा रहा है कि इसके एक गाड़ी का पुलिस ने जांच पड़ताल किया था जिसमें फर्जी पेपर इत्यादि पाए गए थे और इसी मामले में आरोपी पर चीटिंग का मुकदमा दर्ज कर इसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। विजयपुर थाना क्षेत्र में 2015 में हुई एक मारपीट के मामले में अदालत ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद तीन आरोपियों को 3-3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। बताया जा रहा है कि 2015 में विजयपुर के भरपुरवा बढ़ई टोला में खेत में मिट्टी काटने को लेकर मारपीट हुई थी। इस मामले में लाठी डंडा और फरसा से मारपीट कर पीड़ित को गंभीर रूप से जख्मी किया गया था, जिसमें पुलिस ने केस दर्ज कर अनुसंधान करने के बाद कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित किया और इसी मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी पाया और इन्हें 3-3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसमें एक आरोपी सुरेंद्र गिरी, दूसरा नरेश गिरी और तीसरा अवधेश गिरी, ये तीनों सगे भाई हैं और रामचंद्र गिरी के पुत्र हैं। ये सभी भरपुरवा विजयपुर के ही निवासी हैं। पुलिस ने सजा सुनाने के बाद तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। बताया जा रहा है कि इस मामले में अपर लोक अभियोजक हरेंद्र प्रताप सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पुलिस की प्रभावी पैरवी और समय पर साक्ष्य इत्यादि देने के उपरांत कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुना दिया। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने अपने कार्यालय में जनता दरबार के माध्यम से लोगों की शिकायतों को सुना और उसके त्वरित निष्पादन को लेकर पदाधिकारियों को निर्देशित किया। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बरनैया मिश्र गांव के पास बाइक सवार एक युवक पर अज्ञात अपराधियों ने जानलेवा हमला किया। बताया जा रहा है कि धारदार हथियार से युवक पर ताबड़तोड़ वार किए गए हैं। हमले में युवक के गंभीर रूप से घायल होने की खबर मिली है। बताया जा रहा है कि गंभीर रूप से घायल इस युवक का सरकारी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। पूर्व में हुई सड़क हादसे को लेकर यह विवाद हो गया था और इसी मामले में चाकूबाजी की घटना हुई है। हालांकि इसमें अब तक जिला प्रशासन की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मीरगंज के उत्तर मोहल्ला में शॉर्ट सर्किट से एक फैशन गारमेंट्स की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों के सहयोग से आग को नियंत्रित करने में सफल हो सकी। फिलहाल स्थानीय प्रशासन इस आग लगने के कारणों का जांच पड़ताल कर रहा है। माझा थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी बीरेंद्र यादव जो धर्म परसा अहिर टोला का रहने वाला है, इस पर 2023 में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था और तभी से यह फरार चल रहा था। आज पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अब इस पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर बैकुंठपुर थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त राकेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के बांस घाट मसूरिया का रहने वाला बताया जा रहा है। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इसके द्वारा वादी को गाली गलौज और मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था। गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। कहते हैं सपने को सरकारी योजना का अगर सहारा मिले तो आगे बढ़ने का हौसला और बढ़ जाता है। बताया जा रहा है कि इसी वजह से गांव में ही एक बड़ा कारोबार खड़ा कर दिया गया। मामला उचका गांव प्रखंड के लूसी गांव का है, जहां यस एंटरप्राइजेज इसकी मिसाल बन रहा है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से सहयोग लेकर शुरू की गई रेडीमेड गारमेंट्स इकाई का सालाना कारोबार आज करीब 80 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। खास बात यह है कि इस कारोबार की सफलता अकेले एक उद्यमी तक सीमित नहीं है। इकाई ने 65 जीविका दीदियों के लिए भी रोजगार की राह खोली है। गांव में चलने वाली सिलाई मशीनें यहां कपड़ों के साथ आत्मनिर्भरता की कहानी भी बुन रही हैं। घर और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच जीविका दीदियों को स्थानीय स्तर पर काम का अवसर मिला और दूसरी ओर एक उद्यम के विस्तार ने यह भी दिखाया कि स्वरोजगार की पहल आगे चलकर दूसरों के लिए रोजगार देने का माध्यम भी बन सकता है। आज जिलाधिकारी समीर सौरभ ने इस यस एंटरप्राइजेज का निरीक्षण किया। उन्होंने इस पूरे उद्यम को करीब से जाना और गारमेंट्स तैयार करने की प्रक्रिया और इकाई की कार्य प्रणाली को देखी। जिलाधिकारी ने उद्यमी से उत्पादन विपणन कारोबार के विस्तार और रोजगार सृजन के बारे में जानकारी ली। जिलाधिकारी ने इकाई के सफल संचालन के साथ 65 जीविका दीदियों को रोजगार देने की पहल की भी सराहना की और कहा कि ऐसे उद्यमों की उपयोगिता केवल स्वरोजगार तक सीमित नहीं है। जब एक उद्यम आगे बढ़ता है और उससे दूसरे परिवारों के लिए भी आजीविका के अवसर पैदा होते हैं तो उसका लाभ पूरे क्षेत्र को मिलता है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। आपातकालीन चिकित्सा को बेहतर बनाने के लिए जिला पदाधिकारी ने की बैठक। आज 7 परिवारों को मिली पक्के मकान की चाबी। कृषि अतिक्रमण से मुक्त करा दी गई सबिया एयरफील्ड की भूमि। सोशल मीडिया पर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और मारपीट के मामले में 3 आरोपियों को आज अदालत ने सुनाई सजा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
2: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
9: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 3945 651 या 97 0 97 0 6 575।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67-666।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
6: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज, कॉल करें 94512-11001।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: सुनिए,
2: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
1: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
2: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
1: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अरे माँ ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710 3992 या 90765 6750।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। तो अब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388 8947 या 9198 8697 3।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपति मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।

0: मैया।
1: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
2: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
5: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4-5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
5: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
4: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
4: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
4: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 9289225767 या 9774-86164।

सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। अब समय हो गया है समाचार प्रभात का। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के नई दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।

0: लगाई
1: और हॉकी विश्व कप में सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में अवसंरचना, संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों और विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सचिवों से देश के भविष्य को आकार देने के बारे में दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचने का आग्रह किया।
2: बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के असरदार इस्तेमाल के साथ साथ इंसानी दखल सुनिश्चित करने और क्षमताओं को इंसानी विशेषज्ञता के साथ जोड़ने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने अपनी बात खत्म करते हुए जटिल चुनौतियों से निपटने और भारत के भविष्य को आकार देने के लिए बेहतर तालमेल, नई सोच और सामूहिक जिम्मेदारी की जरूरत को दोहराया। बैठक के दौरान सचिवों ने क्षेत्रवार प्राथमिकताओं, उभरती चुनौतियों और योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़ी समस्याओं पर अपने अनुभव साझा किए। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है समायोजन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: पुणे में भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 17 से 21 अगस्त तक 5 दिवसीय ब्रिक्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT ट्रैक का आयोजन किया जा रहा है। दूरसंचार विभाग के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम की थीम है इनोवेट, कोऑपरेट और ट्रांसफॉर्म फॉर अ रेजिलिएंट फ्यूचर। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और सुरक्षित, समावेशी तथा मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम विकसित करना है। 5 दिवसीय कार्यक्रम का समापन आज 21 अगस्त को 12वीं ब्रिक्स कम्युनिकेशंस मिनिस्टर्स मीटिंग के साथ हो रहा है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार पुणे से माधव जायभाई के साथ सुरेखा जोशी।
0: इसके अलावा ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक आज से जयपुर में शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। चर्चा के मुख्य विषयों में टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन, कौशल विकास, आसान यात्रा और पर्यटन में प्रौद्योगिकी और AI का इस्तेमाल शामिल किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के पूर्ण गायन के बजाय केवल 2 छंद गाने के निर्णय की आलोचना की है। श्री शाह ने कहा कि यह निर्णय संसद द्वारा पारित कानून का खुला उल्लंघन और राष्ट्र विरोधी है। श्री शाह ने दावा किया कि वर्ष 1937 में कांग्रेस ने तुष्टीकरण के नाम पर वंदे मातरम को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर केंद्र सरकार ने इस ऐतिहासिक गलती को सुधारते हुए पूर्ण गीत को कानूनी मान्यता दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को न्याय और उन्हें मिलने वाली कानूनी सुविधाओं का लाभ उठाने में लगने वाला समय कम हो जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने कहा है कि किसी प्रश्न के उत्तर को चुनौती देने की प्रणाली सभी विद्यार्थियों के लिए निष्पक्ष है। एजेंसी ने इसके महंगे होने की चिंताओं को खारिज किया। एनटीए ने बताया कि ये एक ऑनलाइन प्रक्रिया है जिसमें जेईई मेन, नीट या यूजीसी नेट जैसी परीक्षा देने वाले उम्मीदवार अस्थायी उत्तर में मौजूद गलतियों पर आपत्ति जता सकते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: एनटीए ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अगर कोई भी उम्मीदवार किसी प्रश्न को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ उस चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं तो संशोधित उत्तर परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवार पर लागू होता है। एनटीए ने कहा कि उत्तर को चुनौती देने पर फीस इसलिए ली जाती है ताकि अकारण की चुनौती से बचा जा सके और अगर चुनौती सही साबित होती है तो फीस वापस कर दी जाती है। एनटीए ने बताया कि जिस उम्मीदवार की चुनौती सही मानी जाती है उसे प्रति प्रश्न 200 रुपए वापस किए जाते हैं। एनटीए ने कहा कि फीस का उद्देश्य अकारण की चुनौती को रोकना है न कि सही चुनौती से लाभ लेना। किसी भी उम्मीदवार की सही चुनौती लाखों दूसरे उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को सही कर सकती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शिमला में शुरू हो रहा है। सत्र 3 सितंबर तक चलेगा और इसमें कुल 10 बैठक होंगी। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। मॉनसून सत्र के पहले कल शिमला में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। गृह मंत्री अमित शाह कल शाम पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर बागडोगरा पहुंचे। हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, दार्जिलिंग से सांसद राजू बिस्ता और पर्यटन मंत्री शंकर घोष सहित अन्य लोगों ने श्री शाह का स्वागत किया। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। एक रिपोर्ट।
5: अमेरिका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। अमेरिका के वित्त विभाग के अनुसार यह नेटवर्क लेबनान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच वाणिज्यिक एयरलाइन उड़ानों से यात्रा करने वाले कुरियर का इस्तेमाल करके अलग अलग देशों में बड़ी मात्रा में पैसे भेजता था। इससे हिजबुल्ला को औपचारिक वित्तीय प्रणाली से बाहर विदेशी मुद्रा हासिल करने और प्रतिबंधों से बचने का जरिया मिलता था। इस नए वर्गीकरण का उद्देश्य यह बताना है कि हिजबुल्ला ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC की ओर से काम करता है और कोई स्वतंत्र संगठन नहीं है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिनों में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। इलाके में बढ़ती अस्थिरता के बीच सोमालिया और यमन के समुद्री क्षेत्रों में समुद्री डकैती फिर से बढ़ने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। एक रिपोर्ट।
6: हाल की घटनाओं में सोमालिया के पुंटलैंड तट के पास कैमरून के ध्वज वाले MV लुतुफ जहाज पर कब्जा और यमन के पास इरिट्रिया के ध्वज वाले सिबू 1 टैंकर का अपहरण शामिल है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। खबरों के अनुसार 8 समुद्री लुटेरे जहाज को पुंटलैंड के डंगोरोयो जिले में गरमाल के पास नुगाल तट की ओर ले गए। सोमालिया के अधिकारियों ने बताया कि समुद्री लुटेरों ने अभी 6 जहाजों पर कब्जा कर रखा है। इनमें इस हफ्ते कब्जा किए गए 2 जहाज भी शामिल हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: और अब खेल के मैदान की हलचल के साथ हैं शक्ति सिंह।
7: हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण मैच में आज अम्स्टरडेम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। कल पूल डी में अपने आखिरी मैच में इंग्लैंड के साथ बिना किसी गोल के ड्रॉ खेलने के बाद भारत दूसरे दौर में पहुंच गया। इस ड्रॉ की मदद से सलीमा टेटे की कप्तानी वाली भारतीय महिला टीम पूल डी में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल करने में सफल रही। इधर नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग टी की पुरुष डबल्स जोड़ी का मुकाबला चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वेई केंग और वान चांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का सामना चीन की चौथी वरीयता प्राप्त चिया यी फेन और झांग शू शियान से होगा। वहीं पूर्व विश्व चैंपियन PV सिंधु, पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो को अपने अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। और एथलेटिक्स में लुसाने डायमंड लीग में आज भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रमेश पतिरागे एक बार फिर आमने सामने में होंगे। इस प्रतियोगिता के द्वारा नीरज चोपड़ा डायमंड लीग फाइनल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में श्रीलंका के पतिरागे ने नीरज चोपड़ा को मजबूत चुनौती देते हुए स्वर्ण पदक जीता था, जबकि नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहकर रजत पदक के साथ वापस आए थे।
0: धन्यवाद शक्ति इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवाएं चलने की संभावना है। उधर केरलम के कई तटीय क्षेत्रों में आज समुद्र में ऊंची लहरों से समुद्र का जल स्तर बढ़ने की आशंका है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आज हल्की बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
8: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज दिल्ली मास्टर प्लान 2047 को अपने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, नई होगी दिल्ली। दैनिक जागरण लिखता है 40 लाख नए घर, 695 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क से बदलेगी राजधानी। दैनिक भास्कर ने छापा है लुटियन छोड़ बाकी दिल्ली में होंगी गगनचुंबी इमारतें, डेटा सेंटर बनेंगे, वैश्विक शहर के रूप में विकसित होगी देश की राजधानी। झारखंड में झटका शीर्षक से राजस्थान पत्रिका ने छापा है, सरकार ने छात्र आंदोलन के बाद दिया था आदेश, झारखंड में परीक्षाएं रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर की जम्मू कश्मीर के संदर्भ में हालिया टिप्पणी पर जनसत्ता ने कूटनीतिक संदेश शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, पिछले कुछ सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में आमतौर पर शांति और स्थिरता देखी जा रही है, इसलिए संभव है कि पाकिस्तान की ओर से तमाम नकारात्मक कवायदों के बावजूद वहां के बारे में वैश्विक स्तर पर अलग राय बनी है, इसलिए गोर के बयान को भारत के प्रति अमरीकी नीति में बदलाव के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अमर उजाला ने रचनात्मकता से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, चीन में कल से रोबोट ओलंपिक, बीजिंग में पहुंची 16 देशों की 666 टीमें, मैदान में उतरेंगे 2056 ह्यूमनॉइड। पत्र की उपलब्धि शीर्षक से विश्व आर्थिक मंच की 2026 की रिपोर्ट भी ध्यान आकर्षित करती है, कैंसर के टीके से एआई तक दुनिया बदलने वाली 10 नई तकनीकें, आने वाले सालों में ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, साइबर सुरक्षा और एआई के क्षेत्र में पड़ सकता है इन तकनीकों का बड़ा असर। आज विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर वृद्ध जनों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिए लोक सत्य ने बॉक्स में खबर प्रकाशित करते हुए लिखा है, ज्ञान अनुभव का उत्सव है वरिष्ठ नागरिक दिवस।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। देश के भविष्य के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने और विभागीय बाधाओं का समाधान करने का किया आह्वान। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा वंदे मातरम के मात्र दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की, पूरा वंदे मातरम गाने पर बल दिया। भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। जयपुर में होगी ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कहा, उत्तरों को चुनौती देने की प्रणाली निष्पक्ष है, इसके महंगी होने की चिंताओं को खारिज किया। और हॉकी विश्व कप में आज एम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का सामना नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
9: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
10: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
9: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
10: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
9: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
10: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
9: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564।
11: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो? क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
12: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
11: ध्यान दें, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
12: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
13: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98 523 52 599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
9: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
14: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
9: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
3: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
1: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
0: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
1: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
3: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
1: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
0: कॉल करें 87-894-18744।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा, मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
7: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
5: ओनली ऑन रेडियो रंजन 90.4 अमर।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।

0: किस तरह हो सकती है मद्रास में?
1: तमिलिया
0: ओ इको गल है कविता तेरी नू है
2: मैं कह जी साउथ इंडियन स्टैंडर्ड दे हिसाब नाल तेरी सोहनी है
1: रजी एनु मिल साडे किसी लवर अन्याय
2: अन्याय भला भी कोई ना हो

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 62052 62112 पे।
7: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
8: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
7: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
5: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
9: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
3: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: पूछा?
1: नहीं
2: कप्तान, क्या तुझे यकीन नहीं है?
1: हाँ पार्टनर, यकीन है, पूरा यकीन है। अगर मैं कूदा तो मैं मर जाऊंगा।
3: साले डर गया, क्यों लाई
2: साले इतना सारे, तू कूद गया।
3: अबे पागल नहीं हूँ तेरी तरह, मर जाएगा किसी दिन, लाश भी नहीं मिलेगी।
2: क्यों
3: तो क्या हुआ? अबे आत्मा भटकती रहेगी तेरी, शांति नहीं मिलेगी।
2: अगर ये लाश नहीं मिली ना तो जला देना मेरी चीजें, मेरे कपड़े, मेरे जूते और उसकी राख नदी में बिखेर देना, मिल जाएगी मेरी आत्मा को शांति। अब तू भी खुद मेरे साथ।

सब ठीक चल रहा था, या हम ऐसा सोचते थे। उन पहाड़ों के पीछे कुछ ऐसे हादसे हो रहे थे जो हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाले थे।

न्यायालय ने रात 9:55 के बाद डीजे और लाउड स्पीकर बजाने पर पूरी तरह रोक लगाने को कहा है। दिन में भी ध्वनि निर्धारित डेसिबल सीमा के भीतर ही रखनी होगी। न्यायमूर्ति राजीव रॉय ने अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान सभी संबंधित पदाधिकारियों को ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 और मोटर वाहन अधिनियम 1988 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। प्रदेश में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार पटना के गांधी घाट में नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 7 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। दीघा घाट और हाथीदह में नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर को पार कर गया है। वहीं भागलपुर के कहलगांव और सुल्तानगंज में भी नदी चेतावनी स्तर को पार कर गई है। मुंगेर, बक्सर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया और कटिहार जिले में भी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि जलस्तर में बढ़ोतरी से निचले इलाकों में पानी फैलने लगा है। रेलवे ने भागलपुर और अहमदाबाद के बीच नई साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन की घोषणा की है। इस रूट पर चल रही अहमदाबाद पटना क्लोन स्पेशल को अब नियमित कर अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में संचालित किया जाएगा। यह ट्रेन 26 अगस्त से प्रत्येक बुधवार को अहमदाबाद से बख्तियारपुर मोकामा क्यूल अभयपुर जमालपुर और सुल्तानगंज के रास्ते परिचालित होगी। वहीं वापसी में यह ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को भागलपुर से रवाना होगी। 65वीं अंतर्राष्ट्रीय सुब्रतो कप अंडर 17 बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप में बिहार की टीम ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की है। नई दिल्ली में खेले गए मैच में बिहार ने तेलंगाना को 12-0 से हराकर अगले दौर में पहुंचने की अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। बिहार की टीम ने अब तक 3 मैचों में 38 गोल किए हैं और उसके खिलाफ एक भी गोल नहीं हुआ है। पहले मुकाबले में बिहार ने नेवी चिल्ड्रेन स्कूल को 23-0 और दूसरे मैच में सिक्किम को 3-0 से हराया था। बिहार का अगला मुकाबला 22 अगस्त को पिछले वर्ष की विजेता पश्चिम बंगाल से होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने ओडिशा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का प्रशासक नियुक्त किया है। यह नियुक्ति न्यायाधीश एल नागेश्वर राव की रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर की गई है। किशनगंज में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा और विधि व्यवस्था को लेकर जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। ठाकुरगंज स्थित एसएसपी की 19वीं वाहिनी परिसर में हुई बैठक में दोनों देशों की सुरक्षा और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय मजबूत करने पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मुजफ्फरपुर के चर्चित AK-47 तस्करी मामले में आरोपित भैरव त्रिपाठी को गिरफ्तार कर लिया है। स्थानीय पुलिस के सहयोग से NIA ने उसे ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र के संजय सिनेमा रोड से गिरफ्तार किया। इस मामले में यह 6वीं गिरफ्तारी है। पटना की एक अदालत ने हत्या के 19 साल पुराने एक मामले में दोषी क्रांति मोहन सिंह को आजीवन कारावास और 20,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं जहानाबाद की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग के अपहरण के मामले में 3 दोषियों को 4-4 साल कारावास और 10,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अररिया जिले के कुर्साकांटा थाना क्षेत्र के महेशकूट के पास से पुलिस ने 240 किलो गांजा के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता

0: से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान लिखता है बिहार में ग्रामीण खरीफों को 11 लाख पक्के घर बनेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम सम्राट चौधरी को स्वीकृति पत्र सौंपा। प्रभात खबर की सुर्खी है शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर के घर से मिले 51 लाख के जेवर, 25,88,000 कैश। दैनिक जागरण ने लिखा है चीनी 70 रुपए तो गुड़ 80 रुपए किलो तक बिक रहे बाजार में। दैनिक भास्कर लिखता है जेपीएससी 11वीं से 13वीं सिविल सेवा और एफएसओ नियुक्ति रद्द करने के सरकार के फैसले पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं अब मॉडल स्कूलों की जिम्मेदारी संभालेंगे अफसर। आज अखबार लिखता है राज्यपाल सचिवालय के 4 स्टेनोग्राफर बर्खास्त। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने अक्टूबर तक 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। राज्य में चीनी मिलों और व्यापारियों के स्टॉक की होगी जांच। प्रदेश में अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत विद्यार्थियों को अधिकतम 2 लाख रुपए तक का ही ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण मिलेगा। राज्य सरकार ने खरीफ मौसम के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना लागू की। फसल क्षति के लिए 31 अक्टूबर तक किए जा सकेंगे आवेदन। और 65वीं अंतर्राष्ट्रीय सुब्रतो कप अंडर 17 बालिका फुटबॉल चैंपियनशिप में बिहार की टीम ने लगातार तीसरी जीत दर्ज की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9974434468 पे।
7: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
8: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
7: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
8: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
7: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
8: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
6: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
7: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
10: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
9: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
10: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
9: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
3: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
11: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
3: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
11: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
3: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
11: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
12: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रेडियो रिमझिम 90.4 है तुमने।
1: थैंक यू मैम। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम,
1: क्या खैरियत से जनाब?
2: ठीक है, आप अपना बताइए।
1: मेरा भी ठीक है। अच्छा है,
2: क्या हो रहा है अभी?
1: अभी तो आपके पास कॉल लगा रहे थे। कॉल लगा रहे थे आपके पास, तो लाइन किया कॉल।
2: चलिए बढ़िया है, तो कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: किसी बरसा पानी है सुना दीजिए।
2: और गाना डेडिकेट है
1: सभी जिसमें तो डेडिकेट करना चाहते हैं। मैम ये तीसरा सोमवार है ना?
2: हाँ ओके, गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 है।
1: सुनो दिल से।
2: जी जी बिल्कुल, सुनो दिल से।
1: ओके बाय
2: बाय बाय।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते,
1: कैसी हैं?
0: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: हम भी ठीक हैं।
0: और सब
1: नाश्ता बढ़िया है?
0: अच्छा, नाश्ता हो गया है?
1: मैम आपका नाश्ता हो गया है?
0: हाँ मेरा हो गया है।
1: मैम हम गाना बनाते हैं तो मेरा पसंद का गाना बजता ही नहीं, दूसरा बजा दूँ।
0: दूसरा आपके पसंद का नहीं बजा?
1: नंदिया लक्ष्मी।
0: और कौन सा सॉन्ग बोले थे आप?
1: पगड़ी का माल जैसा, पगड़ी का सॉन्ग
0: देशभक्ति शायद वही सॉन्ग बजाए थे हम।
1: नहीं आप वही गाना वाली था गाना, लेकिन लास्ट में नहीं था वो गाना।
0: लास्ट में
1: गाना था खाली पगड़ी का माल, पगड़ी का माल ऐसा गाना।
0: अच्छा तो वो गाना नहीं था?
1: नहीं वो गाना था
0: कोई नहीं,
1: इसी लाइन का था सिर्फ पगड़ी का माल, पगड़ी का माल।
0: अच्छा कोई बात नहीं, इस पर बता दीजिए, इस पर ध्यान से बनाएंगे। बता दीजिए आज कौन सा गाना सुनना है? वही गाना सुनना है?
1: हाँ।
0: तो एक बार अच्छे से उसको लाइन बता दीजिए ताकि मैं अच्छे से बना पाऊँ। और किसका है ये सॉन्ग और गाने के बोल जो है थोड़ा क्लियर बता दीजिए मुझे।
1: पगड़ी का माल जैसा, पगड़ी का माल जाना वे की मर जाना वे, ऐसे ना बजे खुद के निकाल रहे पगड़ी का माल जैसा, पगड़ी का माल।
0: अच्छा जी, हमने तो शायद हिंदी में बजाए थे और वो वही पगड़ी वाला ही सॉन्ग था।
1: खाली इसमें था पगड़ी का माल, पगड़ी का माल खाली ऐसे ही गा,
0: और आगे कोई लाइन नहीं गा रहा था?
1: नहीं।
0: ओके देख लेते हैं,
1: सुना दीजिए।
0: जी जी बिल्कुल। और गाना डेडिकेट भी रहेगा?
1: जी मैम, आपको अपने घर में सभी को रेडियो
0: फिर गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: जी मैम, गाना बजा दीजिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: चलिए तब ठीक है।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 8604348652 पे।
5: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
6: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
5: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
7: हर घर सूर्य घर।
8: कुल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
10: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
11: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
10: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
11: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
12: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
11: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
12: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
11: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
12: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
13: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello.
14: जब फोन डिंडे बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
15: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: हेलो
17: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 91.4 FM में।
16: जी मनोरमा जी नमस्कार, कैसी हैं आप?
17: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
16: हम भी अच्छे हैं। आज सोचा कि सोमवार का दिन है, चलिए हम भी कतार में खड़े खड़े प्रतीक्षा कर रहे हैं, तब जाके लगा है।
17: अच्छा जी,
16: आप बताइए कि गोपालगंज की इस समय मौसम कैसा है?
17: अभी तो मौसम सुहाना बना हुआ है गोपालगंज का।
16: तो बारिश वारिश करवाने के विचार है कि नहीं?
17: हुआ है ना बारिश, रात को
16: रात में हुआ है,
17: पूरा जम के हुआ है।
16: तो थोड़ा इधर भी भेज दीजिए दिल्ली में।
17: अच्छा आ जाएगा धीरे से।
16: आप लोग भेजिएगा तो अपना आएगा।
17: नहीं पार्सल किए हैं, थोड़ा पार्सल जाने में टाइम लगता है ना।
16: कौन से पार्सल के? नॉर्मल कीजिएगा तब तो हाथा दिन लगेगा, और तार मनी ऑर्डर कीजिएगा तो 24 आवर उसमें पहुँच जाएगा।
17: देखिए अब कैसे पहुँचता है।
16: तो नाश्ता पानी तो बढ़िया से करके आई होंगी, भारती जी अभी आई है कि नहीं?
17: आप पहचान रहे हैं?
16: हाँ भारती जी बोल रही है, इसलिए थोड़ा नाम हमने चेंज करके बोला ना कि इसे क्या कहती है।
17: नहीं जब वो आप मनोरमा समझ के बात कर रहे हैं तो चलिए वहीं पर।
16: देखिए आवाजों में जो है ना मिसिंग स्पेलिंग होता है ना।
17: हाँ हाँ कोई बात नहीं, उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, मनोरमा समझ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। वो भी
16: मान लीजिए कि दोनों आदमी तो आ रही है, क्या हो गया? कभी वो रिकॉर्ड करती है कभी आप करती है, तो ऐसा है ना। कभी एक चीज और आपको बताते चलूं मैं कि आपकी आवाज जो है ना सोनी जी से थोड़ा सा मिलता जुलता रहता है, थोड़ा सा। क्योंकि वो कभी गौर कीजिएगा अपनी आवाज को सुनिएगा।
17: नहीं उससे हम लोग कोई दिक्कत नहीं होता है।
16: चलिए सब तो अपना ही है। देखो आज के गाना के फरमाइश है कि आचर आके लुड़वा धरा के गिरे लागा लुड़वा हो, तिवानी सिंह का सॉन्ग। तो इस गाने में सबसे पहले आपको सोनी जी है, मनोरमा जी है, सविता जी, बबीता जी, गुड़िया जी, सपत जी, जाजाला जी, रुबीना नाज, ब्यूटी परवीन और निशा भारती, रोशनी जी है, अफसर भाई है, सोनू भाई है और अहमद भाई है, सरी जी है। इसके बाद जो है जिसमें श्रोता जन लाइव सुनेंगे रेडियो रात शाम को, सभी दोस्तों को गाने रेडी किस दोस्त का। तो नमस्कार, आप सभी के बाद में मिलते हैं।
17: कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
16: आपका भी दिन शुभ हो।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 92.4 एफएम में।
0: नमस्ते जी।
1: प्रणाम।
0: क्या हाल है?
1: हमारे से ठीक बरोबर। बताइए रोबा कैसन वाली?
0: छुट्टी है अंबानी। सोनी जी अभी ना चलिए। और सब?
1: हाँ सब ठीक बाबा।
0: मनोरमा जी कहाँ वाली?
1: बानी एट।
0: मनोरमा आज बड़ी?
1: हाँ बानी एट। बानी
0: तो चलिए टाइम से चलिए
1: ना। टाइम से चलिए।
0: रिक्वेस्ट ले ली पिछला बाजल बाकी ना शुक्र बार वाला हमारा वही नहीं पड़ बनी। कभी रिपीट बजाता, कभी कहूँ बजाता, कभी कुछ बजाता।
1: ना ना 15 अगस्त वाला रिपीट बजाता
0: तो वो मैं हमार बुझाता नहीं के बाजल का
1: ना बाजल होते नहीं कहीं हो दो चार गो कॉल बाजल गोइंग में
0: सुनबो ना कहीं ढंग से एक बार में सुनबो कहीं तो रिपीट ना आवत रहे।
1: जन शनिवार के बाजे रहे ना वही रिपीट चलेला
0: ना शनिवार के भी मनी रिपीट आवत रहे।
1: हाँ तो सुबह में रिपीट ही बाजेला शाम के नया लागेला।
0: हाँ तो वो रिपीट में रिपीट बजत रहे पहले का बजत रहे
1: ना ना
0: एक बार एगो अमित उपाध्याय के गाना में भाई से भाई लड़े।
1: कौन सा गाना?
0: भाई से भाई लड़े
1: गाना
0: अमित उपाध्याय के ये सुना दे
1: गाना सुना
0: कितना लिखना सुन लो सुन लीलो चलिए
1: गाना प्ले करते नहीं रेडियो रिंग में करे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।
2: भाई से भाई

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
3: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 आमजेड पर।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
7: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
7: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
7: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
8: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो,
10: सलाम अलैकुम।
9: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM में।
10: मैं अहमद अली, सारे आवाज नंबर 1 से। कैसी हैं मैम?
9: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
10: हम लोग भी अच्छे हैं।
9: नाश्ता हो गया है?
10: हाँ, नाश्ता हो गया आपका? नाश्ता करके मत आया कीजिए, खाना खा कर आया कीजिए, बहुत लंबा ड्यूटी हो जा रहा है।
9: तो नाश्ता करने के बाद दोपहर में खाते नहीं है, न्यूज जब चलता है उस समय खाते नहीं है?
10: हाँ खाती है ना। अच्छा, लेके आया कीजिए क्योंकि बहुत लंबा, 4 बज जाता होगा 5 बज जा रहा होगा। आज हमको गाना सुना दीजिए सड़क मूवी से, जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा हुआ है।
9: और गाना डेडिकेट भी है।
10: हाँ है, सबसे पहले तो आपको सोनी मैम को और मेरी वाइफ है अख्तरी उनको और दिलीप भाई को, कमरान भाई को, राघव जी को और समीर को जंगलिया से जो समीर हैं उनको और जो भी रेडियो रिमझिम जहाँ से भी सुन रहे हैं सभी को।
9: रेडियो
10: थैंक यू गाना सुनाने के लिए मैम।
9: बिल्कुल।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 एफएम में।
1: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार,
1: तो क्या समाचार है?
0: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
1: हमारा भी ठीक है मैम। का है 77-82 वाला पर का है
0: नहीं करते हैं।
1: अरे नहीं तो 10 बोले मंगलवार को, न मंगलवार सोमवार को 10 गो कॉल किए थे, 10-12 बोले, आप कट कर दी तब छोड़ दिए।
0: सोमवार को ना थोड़ा फोन में दिक्कत आ गया था, वो अपने से ही सबका फोन व्यस्त बता रहा था, तो उसको ठीक किए तो बाद में मतलब कॉल आना शुरू हुआ, तो कुछ लोगों का कॉल उठाए थे।
1: तो नाश्ता हो गया मैम?
0: हाँ नाश्ता हो गया। आप सभी का हो गया?
1: जी मैम, मेरा भी हो गया। क्या कि माँ से बात कर रहे थे तो उसी का टाइम हो गया, 11:17 पर तक बोली का एक बार बात कर ले। आप लोग इतना लगाव हो गया है कि आप फोन नहीं उठाती तो मन बेचैन हो जा रहा है।
0: अच्छा जी,
1: क्या हो गया है हम लोग का? सब आप सब बोलिए।
0: आपके तो बच्चे तो पढ़ने चले गए होंगे इसमें?
1: जी मैम, दो गो है, एक गो है, वन में है, एक गो टू में है, एक गो नाइन्थ में है, एक गो टेन में है।
0: अच्छा जी, चलिए तब तो बड़े
1: आप बड़े वाले हैं, 11th में है, 5 गो है मेरा लड़का।
0: तो बढ़िया,
1: परिवार तो बढ़ गया है मैम। खर्चा खर्चा मानने की थोड़ा सा है, मगर चलिए भगवान का दया है, आप लोग का दया है तो क्या नहीं।
0: हाँ जब परिवार ही रहता है तभी तो अच्छा लगता है।
1: गाना ये है, गाना सुना है मैम?
0: बता दीजिए कौन सा
1: गाना? नहीं है, जाते जाते ये तो बजा बराजा हम जिएंगे के लिए
0: है,
1: हिंदी गाना। हम फिल्म देखे हैं मगर भूल गए हैं। आप सब बोलिए।
0: और गाना सुनाना भी है?
1: जी मैम, आपको मनोरमा मैम को, सनी भैया को, रिमझिम परिवार में सभी को सुनाना है।
0: जी जी बिल्कुल।
1: मैम एक बात बोले?
0: बोलिए।
1: और जिसे विवाह में देमानंद जी को जब प्रवचन देते बजाते हैं लोग, अनुरुद्धा आचार्य जी को बहुत छोड़ा है।
0: आपका संदेश मिला जो पत्र आता है ना हम लोगों में?
1: जी सनी, संदेश को सोमवार को नया जाता है।
0: हाँ तो उसको आप उसमें अगर लिख के अगर डालती हैं तो कुछ मतलब चर्चा हो सकता है और हो सकता है बच्चे।
1: मैम तो मेरा मैच करना नहीं आता है इंग्लिश में, मानिए कि आप जब फोन करेंगे तो डॉक्टर जो है एक बेरा हम फोन किए कि हम तो सीखा करिए, उनसे लग गया तो हम उससे लगा रहे थे मगर उनसे लग गया तो सर बोले का नीता जी बोली, अब हम तो डरे फोन करिए भगवान की कहाँ लग गया।
0: नहीं
1: मैंने अनुरुद्धा आचार्य जी के भी बात मैंने प्रवचन सुनाया जाए
0: जी, गाना ले सकते हैं।
1: थैंक यू मैम।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
6: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11-001।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello.
10: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
11: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: जी नमस्ते।
13: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
12: जी बाजी सिंगापुर।
13: हाँ जी, क्या हाल चाल है आपका?
12: ठीक है, आपन बताइए।
13: मेरा भी ठीक है।
12: रक्षा बंधन भी कोई भी गाना सुना दे।
13: रक्षा बंधन का कोई भी सॉन्ग?
12: जी जी जी।
13: मतलब ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
12: जी
13: जी बिल्कुल। ओके फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
12: जी नमस्ते।
13: नमस्ते।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: थैंक यू जी। मैडम जी, मैं अरुण मिश्रा बोल रहा हूँ गोपालगंज से।
1: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
0: बहुत बढ़िया है। आप सब आदमी कैसे हैं ये बताइए।
1: हम सब भी ठीक हैं।
0: ये बहुत खुशी की बात। और सब सावन के महीने में पूजा पाठ हो रहा है?
1: पूजा पाठ तो हमेशा हो रहा है, सावन है तो होगा।
0: नहीं नहीं, सही है, ऊपर वाले को नाम लेना चाहिए। जी मैडम जी, हमको गाना सुना है जी।
1: बता दीजिए कौन सा।
0: हाथी मेरे साथी का है ये गाना। अब ये है नगर दुनिया छोड़कर प्यार की दुनिया में कुछ रहना मेरे यार
1: है,
0: यही गाना सुनना है।
1: और गाना सुनाना भी है?
0: हाँ, तो जितना भी रेडियो रिंगण है वो सब तो सुनाना है। आप अभी जो भी अपना स्टार है वो सब तो सुनाना है।
1: जी जी
0: जी, बस ये गाना कभी तो कल होएगा।
1: ये आपको आज नहीं तो कल हो जाएगा।
0: अच्छा अच्छा, दूसरा दिन जो होता है 5 बजे वाला जो प्रोग्राम चलता है 5 से 7, उसी में होता है ना गाना?
1: हाँ, 5 से 7 जो होता है उसी में बजता है, नया नया एकदम जो कॉल आया होता है। और सेम रिपीट बजता है सुबह हमें 9 से 11 के बीच में।
0: अच्छा अच्छा,
1: अगर जो शाम को नहीं सुन पाते हैं वो अपना सुबह में सुन लेते हैं।
0: जी जी, लेकिन मैं बोल रहा था की अपना पूजा कराने में सा शराब में होती तो नाचती है बोतल। वो गाना का मैं रिप्लाई किया था लेकिन गाना नहीं सुन पाया उस दिन। 7 बजे तक तो पूजा होता ही रह गया, इसलिए
1: सुबह में सुने होते ना तो जरूर आप सुन लिए होते।
0: जी जी जी,
1: क्योंकि सुबह में सेम रिपीट चलता है 9 से 11 के बीच में।
0: नहीं नहीं, आप लोग का तो प्रोग्राम जो है रेडियो रिंगटोन का एकदम टाइम टू टाइम जो भी बात होता है एकदम पता होता है। यानी रेडियो रिंगटोन पूरा इंडिया में छा गया है, यहाँ तक विदेश में भी छा गया है।
1: जी,
0: बहुत अच्छा।

0: बहुत तरह से रेडियो रेंज जिम चैप्टर का नाम ले रहे हैं और ये रेडियो रेंज जिम चैप्टर प्रोग्राम सुनने के लिए हमको तो लगता है कि किसी का नशा हो गया है लोगों को, जैसे खाने का नशा, बालू का नशा, पान का नशा, वैसे ये गाना सुनने का नशा हो गया है यहाँ की। हाँ, इस टाइम में ये प्रोग्राम आएगा, सुना जाए। सबसे अच्छा तो लगता है प्यारा वो सुबह वाला जो बस होता है, कितना आदमी सुधर गया, बहुत मतलब अच्छा है प्रोग्राम जो भी है, जितना भी मुंह से बड़ाई करे तो कम नहीं है। ठीक है,
1: जी जी, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिंगटोन 90.4 FM।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो
8: हेलो हेलो, मुझे कुमार बात कर रहा है
7: जी। कहाँ से?
8: चारिंग तरफ।
7: क्या हाल चाल है आपका?
8: ठीक है, अपना सुनाइए।
7: हम सब भी ठीक हैं।
8: मेरा भी ठीक है।
7: तो आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
8: झूठी खाई थी कसम, नहीं खाई नहीं।
7: अच्छा जी, और गाना सुनाना भी है किसी को?
8: सबसे पहले आपको मनोरमा में टूनी में हर जी सोनी सर खड़ी आप सरल सभी रेडियो सुनने और रेडिशनर को
7: जी जी
8: सुनाना है।
7: ओके,
8: नाश्ता हो गया?
7: हाँ हाँ, हम लोग नाश्ता करके आते हैं।
8: मेरा भी ठीक है।
9: वो नहीं आने वाली, वो बेवफा छलावा थी।

0: कैसे हो?
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: नमस्ते
1: नमस्ते, मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: मैं भी ठीक
1: हो गया है। आवाज थोड़ा आज आपको कुछ हुआ है
0: क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ है।
1: आज लग रहा है थोड़ा उदास उदास लग रही है।
0: नहीं वो क्या है ना, दीदी का तबीयत खराब है तो हमने काम किए हैं थोड़ा, अभी खाना वाला खा के घूम दिया था।
1: अच्छा, इसीलिए हमको लगा कुछ तो हुआ है आपको।
0: हम दोनों साथ में बैठ के कॉल लगाते हैं। हेलो,
1: अभी दीदी ठीक है?
0: हाँ?
1: अभी दीदी आपकी ठीक है?
0: हाँ, अभी दवा देती हूँ, उनको खाना खिला के मैं कॉल
1: लगा रही। ठीक हो जाएंगे फिर से एक साथ कॉल लगाइएगा।
0: वो भी कभी कभी बोलती है कि हमें भी देना, अगले बोलती है कि आज तुम लगाएंगे तो अगले दिन मैं लगाऊंगी। मैं बोली कि ठीक है लगा लेना, लग जाए तब ना। तो वो भी लगाती है।
1: चलिए बढ़िया है। तो आज ये कौन सा गाना सुनिएगा?
0: सुनना है हमें तुमसे हुआ है प्यार।
1: ऐसा और गाना सुनाना भी है
0: आपको? सुनाना है मनोरमा मैम को, सुनाना है और जितने भी सुनने वाले हैं सभी को। कि आपने मेरी डी सॉन्ग सुनाई थी तो आप बोले कि जब भी आप कॉल कीजिएगा जब भी सुनाइएगा।
1: हाँ अच्छा लगता है उनकी आवाज में गाना, बहुत अच्छा गाती है। अब आपका तो नहीं सुने, आपने मुझे सुनाया नहीं है लेकिन उन्होंने सुनाया है।
0: वो बहुत अच्छा गाती है, उनका वॉइस बहुत ही अच्छा है।
1: कभी मुझे आप भी सुना दीजिएगा तो पता चल जाएगा आप आपका भी।
0: अगली बार करूंगी ना तो सुना दूंगी। बिल्कुल
1: इंतजार रहेगा।
0: ठीक है मैम, फिर बात करते हैं आपसे अगली बार।
1: रेडियो रूम से मैं कॉल किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू,
1: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
0: थैंक यू।

0: है तेरा रोज रोज का पेट दर्द?
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करें 87-894-18-744।
9: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
10: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
11: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434-03, 62042434-03।
12: Now pick it up, now pick your phone up.
13: Hello?
12: Pick it up, pick it up.
13: Hello?
12: Now pick your phone up.
13: Hello?
14: Jab phone ring de bajti hai to kehte hain hello.
15: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: हेलो
17: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
16: अस्सलाम वालेकुम मैम।
17: वालेकुम अस्सलाम।
16: रेशमा बोलते नहीं?
17: पहचान से नहीं।
16: चलो मैम,
17: ठीक बारो बा, बताए रोबा कैसे बानी?
16: ठीक बानी
17: सब, क्या होता अभी?
16: अभी खाना बनता है।
17: अच्छा, नाश्ता हो गई बा, दोबारा बनता?
16: नाश्ता हो गया, दोबारा बनता लाइक आई लेट 1 बजे।
17: चलिए तब तो बढ़िया बा।
16: और समाचार ठीक है मैम?
17: समाचार सब ठीक है।
16: तबियत ठीक बानू? नॉर्मल
17: कहाँ बनी से बानी ही नहीं तो बताए।
16: बोली
17: बताए कौन सा गाना सुने?
16: गाना गाना नहीं था जी, याद नहीं की कहले जी।
17: अच्छा,
16: सोचने तो लगाओ तो नहीं तो लाग दे तो बताए फोन तो लगे गई।
17: अच्छा कोनो बात ना, धीरे से सोच के बताए।
16: सोच के बता दिया। रघु किशन के गाना तो मैं
17: कौन सा
16: किस्मत से निकल गलू, दिलवा से कैसे निकलू।
17: अच्छा, वो तो गाना खूब बिजोड़ होला।
16: बिजोड़ वाला बानू? बात भी सही बा मैम।
17: हाँ बात भी सही बा, बिल्कुल
16: बने सही। यही से कौन यही आज बजवा दी।
17: अच्छा, सुना हो गया बा केहू के?
16: सुनवावे के तो बा, सुन ले पहले मुनर्मा मैम बोले बानी, सब कोई सुन, जितना लोग रेडी सुनता।
17: अच्छा जी, चलिए ठीक। और सब ठीक बा ना?
16: जी मैडम सब ठीक बा, बात हो गया और सब ठीक बा। रोज इंतजार रहे दिन के कम में से बात हुई। अभी तो हो गए जरूरत नहीं थी कौन से, आज देखे लगाए फोन उठाए तो बात हुई।
17: ठीक
16: नहीं थी जरूरत। एक दो पहले तो रोज पहले रही जाते नहीं, सुना तो मोबाइल फूट गए।
17: बहुत भीड़ चलता हूँ मैं।
16: बहुत भीड़ चलता है तो बिजी बताओ ना, जाता तो रहूँ मैं। अब पहले लगा लगा आदमी तो मैंने टाइम नहीं मिलता, रो ना उठाया टाइम, अब बाकी बिजी बता रहे। जैसे आदमी सुन रही प्रचार लगाए चलो फिर बीज बता दी चोली सो आके चल रहा सब सुने हमें सुने नहीं सर लागल तो बात हो गाना तो बजबे कर रहा
17: है निमन सबके फरमाइश करवे कर रहा
16: हाँ सब गाना तो मैं बीनल खराब थोड़ी बा सबसे पहले तो राव फरमाइश बोल रहेगा सबसे बढ़िया
17: अच्छा
16: हाँ फरमाइश
17: हम कोशिश करे नहीं रो बढ़िया ही सुनाई
16: बढ़िया
17: चलिए ठीक रेडियो में कॉल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद

0: हेलो,
1: हेलो जी, नमस्ते
0: नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: इसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं नेपाल बिहार छोटा संग्राम सोना मंडिया पूर्वी चंपारण बिहार से संजय कुमार सा।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: जी, मेरा हाल खबर बिल्कुल बढ़िया है। कहिए ना कि आप बारिश रिमझिम रिमझिम हो रही है। हम लोग ये अपना है पूछे हैं, आपसे बात कर रहे हैं। मौसम ठंडा है, सुहाना है।
0: चलिए बढ़िया है। तो कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: आज जब बारिश हो रहा है तो बारिश वाला सुना दीजिए। का पानी इसी के ज्यादा जोर से नहीं बारिश हो रहा है।
0: अच्छा।
1: जी, फुहार चल रहा है।
0: पर गाना सुनाना भी
1: है किसी को? सबसे पहले आपको, आज आपको रेडियो मिल गया, संपन्न परिवार को दोस्त दोस्त में हो गया। खाना सब मामा साहब जी, राम लक्ष्मण को सुहा दिया, नरे सोहनी, दीपक दास, उदयभान ठाकरे, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से, राजिंदर जब भारती, संत लाल गौतम उत्तर प्रदेश मऊ से, हमारे नाम से ज्यादा पता है तमाम दोस्तों, और विशेष करके रेडियो रिमझिम से मोहब्बत करने वाला संपूर्ण परिवार को, खास करके मोहम्मद अंसारी मजबलियत है, विशेष करके उनको सुनाते हुए रामचंद्र मुखिया लगा, हमारे नाम से जाने पहचाने तमाम दोस्त को सुनाते हुए अभी आपसे विदा लेंगे। नमस्कार।
0: नमस्कार। रेडियो रिमझिम में कॉल किए इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई लकी ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
1: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
9: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
10: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
9: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
11: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
9: कॉल करें 85070-32042 पे।
12: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
13: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
12: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
13: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
9: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
13: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
9: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
13: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
9: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
14: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
15: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello, hello, hello, hello, hello.
16: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
17: हेलो।
18: हेलो
17: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
18: जी नमस्ते मैम।
17: नमस्ते
18: जी, क्या हमारा इंदा बोल।
17: कैसे हैं आप?
18: बढ़िया है जी, हम आ रहे थे मैम।
17: जी अच्छे हैं।
18: अरे सब आए तो पूजा है ना मैम?
17: पूजा है, पूजा का
18: आज वो क्या बोलते हैं, वो नागपंचमी का जो नई पूजा होता है 2 दिन बाद।
17: हाँ हाँ, सप्तमी
18: वही पूजा। मेरे घर पर भी पूजा हो रहा था, सुबह में मेरी मैडम फोन करी, बोली की आ गई पूरी खीर खाने के लिए।
17: मेरे यहाँ भी हुआ है।
18: और बताइए क्या हाल चाल है?
17: और सब ठीक है। नहीं, सावन में थोड़ा ज्यादा ही पूजा होता है।
18: जब और जैसे नाग पंचमी होगा तैसे वो तो पूजा हम लोग भी बढ़िया है, एकदम मस्त है, तंदुरुस्त है एकदम। मंगलवार के दिन गाड़ी पकड़ेंगे, यहाँ से चले आएंगे अपने देर में।
17: जी जी आइए। और बताइए आज गाना कौन सुनना चाहते हैं?
18: गाना तो सुनना है वो नील कमल का राखा बंधन वाला। क्या है क्या उसको गाना?
17: गाड़ी से
18: गाना तो नहीं आता है लेकिन गाते हैं।
17: गाइए ना, अच्छा लगेगा।
18: ये नया सॉन्ग है मैम।
17: हाँ।
18: ये अभी नया अभी जाना ये लॉन्च हुआ है। नील कमल का है।
17: गा रहे हैं, बोलते हैं कि हम गाते ही नहीं है।
18: नहीं मैम, मैं तो घर पे मैं अरजाम अरजाम गा रहे, तो जो अरजाम है कीर्तन नहीं होता है, हरे रामा हरे कृष्णा वाला
17: होता है,
18: वो सब हम जाते हैं गाने, वो गाने के लिए जाते हैं अरजाम।
17: अच्छा जी।
18: लेकिन मेरी मम्मी बोलती है कि बेटा ये सब करने से धर्म कर्म नहीं चलेगा बेटा, 2000-3000 रुपए मिलता है तुम्हें 24 घंटा का। हम मम्मी से बोलते हैं कि मम्मी उतना कम है बताओ 24 घंटा में, भगवान को तो भजन हम गा रहे हैं, कौन सा स्टेज पे डांस कर रहे हैं।
17: ये तो सही बात।
18: मम्मी बोलती है कि नहीं बेटा ये मत करो, तुम बेशक दुकान उकान कर लो सब्जी जी का अपना, टाटा उटा चलेगा तो टाटा उटा में जाना। और बताइए खाना वाना हो गया है रूपों में?
17: हाँ खाना तो हुआ है।
18: अच्छा, सबसे पहले आपको ये गाना सुनवाना चाहते हैं, ठीक है?
17: जी जी।
18: जितना रेडियो रंजन सुनने वाले हैं सब उड़ता
17: होगा।
18: एक मेरे अभिषेक भाई है, वो बनारस के हैं, गाजीपुर का, वो मेरा हुआ का गाँव का, ठीक है, उत्तर प्रदेश का
17: जी।
18: वो बोल रहे हैं कि गाना तो बहुत बहुत गाना फेवरेट है, फरमाइश ये हो भाई। हम बोले रक्षा बंधन का है ना यार।
17: हाँ इसीलिए। चलिए फिर गाना प्ले करते हैं।
18: ठीक है, ओके मैम।
17: नमस्ते, रेडियो रंजन में कॉल किए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
18: ठीक है, ओके।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपके रेडियो
1: जी। भारती जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: क्या हाल चल रहा है?
0: हमारा हाल चाल तो ठीक बरबर बताइए, तो कैसे बनी?
1: हाँ ठीक है बनी, लगातार मोबाइल पे कॉल हुआ और लग गए बैठे। हम दिल्ली से बोलता नहीं, बढ़िया से नाश्ता पानी कैसे रही है कि ना?
0: हाँ सब पूजा रहा तो जल्दी जल्दी में लेट हो गया तो ना ही कहीं है आज।
1: हाँ देखा था नहीं ग्यारह पहुँच गया, पता ना भारती जी रास्ते में गाड़ी का मौसम कैसा होता है?
0: मौसम तो कभी धूप कभी छाँव और ये हवा भी बहुत
1: कुछ हवा इनका भेजना थी, हवा नहीं खेल चलती यहाँ दिल्ली में, बहुत उमस हुआ है समझ नहीं।
0: उमस बारिश
1: बादल तो छेले बा लेकिन बारिश हो जाए तो
0: बारिश मैंने उमस बात तो हुई जरूर।
1: देखिए उमस वाला जो दिन बता ना कार्तिक महीना तक उमस वाला चल गया, मौसम ऐसा होकेला धान के खेती के लिए होकेला जब तक उमस ना हो सही से तो धान बढ़िया से अपन फसल जब आप पकाव ना कर माने फसल के हिसाब से मौसम होकेला तो हर समय के नहीं थे अपना हिसाब से जो भी मौसम बा। तो आज के गाना बचे समझे
0: नहीं
1: हम कहा तू खाइया हो या बहरा न जाइया। सबसे पहले रउआ के सोनू भाई बानी और जो है और अभी कॉल कर जोड़ी तो नमस्कार और हम मिला था नहीं अपने के दोपहरिया में
0: रेडियो में कॉल करनी है खातिर बहुत बहुत धन्यवाद
1: अपने के भी धन्यवाद और दिन शुभ हो।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 आमजेड पर।
3: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
4: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
5: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
4: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
6: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
11: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
12: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
11: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
12: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
10: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
9: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
10: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
9: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
10: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
10: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
9: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
13: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
11: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
13: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
11: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
13: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
11: के
1: बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो, सलाम, नमस्कार।
15: नमस्कार, वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM में।
14: जी मैम, कैसी हैं?
15: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
14: हम भी अच्छे हैं मैम। आज लेट से चालू हुआ तो आज 4 मिनट लेट हो गया था।
15: नहीं,
14: लगा नहीं, हमारा
15: बिजी जा रहा होगा।
14: नहीं, पहले बंद था और 2 मिनट के बाद हो गया।
15: क्या हो रहा है अभी?
14: अभी तो टाइम से देखकर आपके पास कॉल लगा रहे थे, पहले से ही 10 मिनट काम सब छोड़ करके आपके पास।
15: चलिए, सब तो बढ़िया है। नाश्ता कर सकते हैं?
14: जी मैम, हम लोग तो नाश्ता करके ही आते हैं।
15: अच्छा, चलिए सब बढ़िया है।
14: आता हो गया मैम। चलिए, तो आज वो रिकिट नहीं चला मैम?
15: कौन सा?
14: कल वाला रिकिट जो चलता है ना सुबह में।
15: वही तो रिपीट चल रहा है?
14: नहीं नहीं चल रहा है अभी वो वाला, पहले माई चॉइस वाला।
15: वही सेम रिपीट चल रहा है?
14: हम 9 बजे सुन रहे थे तो नहीं चल रहा था।
15: तो थोड़ा 1-2 मिनट इधर उधर हो जाता है, हो गया। वही चल रहा है,
14: बस अलग अलग गाना बज रहा था लेकिन वो रिपीट नहीं चल रहा था। लगता है कुछ दिक्कत हुआ था,
15: पता नहीं, लेकिन अभी तो

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमिशन 90.4 FM में।
0: नमस्ते दीदी।
1: नमस्ते,
0: क्या हाल है?
1: मेरा ठीक है, आप अपना बताइए।
0: मेरा भी ठीक है।
1: तो क्या
0: खाना तो खा कर आए हैं?
1: हाँ,
0: पहचान रहे हैं क्या?
1: हाँ हाँ गणेश,
0: 2 दिन से टाइम नहीं मिला तो नहीं जुड़ रहे हैं। कल भी नहीं जुड़े हैं, परसों भी नहीं जुड़े हैं। मेरा फरमाइश था सोमवार के दिन, एक हफ्ता कम्प्लीट हो गया था, तो मंगलवार बुधवार हो गया, 10 दिन हो गए मेरे फरमाइश के लिए। टाइम नहीं मिल रहा है, कल भी टाइम नहीं मिला है, परसों भी टाइम नहीं मिला है।
1: आपका फरमाइश आज ही ना कम्प्लीट।
0: संडे वाला दिन तो स्पेशल है,
1: करिश्मा जी का बुधवार को, आपका मंडे को।
0: सोमवार के संडे संडे का दिन तो फरमाइश बजेगा, जितना लोग बजेगा सब लोग का बजेगा। बस टाइम रहना चाहिए, टाइम रहेगा तो बजेगा, नहीं रहेगा तो नहीं बजेगा। तो आपका घर की पूजा हो गया है?
1: नहीं।
0: कब पड़ेगा?
1: होगा शुक्रवार को।
0: अच्छा, हम लोग का तो आज,
1: मतलब आज पूजा होता है लेकिन शुक्रवार को ये माता जी के मंदिर में कढ़ाई चढ़ता है।
0: अच्छा, और सब बताइए?
1: और सब ठीक है। फरमाइश बता दीजिए, आज कौन से गाने की है?
0: आज तो कॉल कर रहे हैं तो आप बेजी, इतना बेजी, अभी 11 बजे से 5 मिनट पहले ही से कॉल लगा रहे थे। पता नहीं कब मोबाइल खुलता है, अभी फोन लगाए तो बिजी बिजी बिजी बता।
1: मोबाइल खुल जाता है।
0: मनोरमा दीदी आई?
1: हाँ वो भी आई है।
0: अच्छा, कल भी आपके पास थी क्या मनोरमा दीदी?
1: नहीं।
0: तो वो भी आती है सीखने के लिए आपके पास?
1: नहीं, कभी कभी एक साथ बैठते हैं, अच्छा लगता है।
0: अच्छा, मतलब सर बोलते हैं कि चल आज सीखने के लिए क्या?
1: गाना बता दीजिए मुझे।
0: अब आप ही बताइए, फोन लगाए हाँ मगर इसमें झगड़ा करेगी दीदी, मैं बतियाएंगे आप बताइए। इतना देर से तो परेशानी हम झेल रहे हैं, बोले कि नहीं दीदी हम बतियाएंगे।
1: कोई बात नहीं, वो आप कर दीजिए या वो कर दे, बात देखी है, फरमाइश सुन लीजिएगा लोग अपनी।
0: तो मेरे गाना बजाना है नीलकमल सिंह की आवाज में, देव भाई सॉन्ग।
1: कौन सा गाना? गाना बता दीजिए।
0: जब साथ के देखे ना रहे तो प्यार का है कोई।
1: और
0: सबसे पहले आपको मनोरमा दीदी को, सोनी दीदी को, करिश्मा को, पूरा रेडियो रिमिशन करेंगे। नहीं।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराएं नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434468 पे।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
7: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
7: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779746164।
8: ठक ठक।
9: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा मिला ही नहीं।
9: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
9: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, के हाल चाल कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूँ। मैं सोनू सो SMS फरमाइश के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे समय 9:25 हो रहे हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है एक छोटा सा, जिसमें अपना नाम और गाने का नाम और कहां से मैसेज कर रहे हैं उस जगह का नाम टाइप करना है और सेंड करना है हमारे नंबर 7277-1665 पे। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करना है, आप लोगों को हर रोज़ बताई जाती है कि पुराने गाने के साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना है और पुराने गाने की फरमाइश करना है, तो आप पुराने गाने पसंद करते हैं तो अभी टेक्स्ट मैसेज करें हमारे नंबर 7277-1665 पे। कुछ मैसेज हमारे पास पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और पहला मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि बुलेट चौधरी तीन फिड़िया से गाना सुनना है, जो बीच बजरिया तूने मेरी पकड़ी भैया। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने के फरमाई से तो आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय सोनम बाबू कैसे हैं, हम और मैडम जी साथ में जुड़ गए हैं, इनका एक फेवरेट सॉन्ग है 1982 का, ये मेरे माध्यम से सुनना चाहेंगे। तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है, फिलहाल स्वागत है आप दोनों का। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सोनम भाई नमस्ते, मुझे एक गाना सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल स्वागत है इस कार्यक्रम में। MD 97 दरभंगा भाजीतपुर से जुड़े हुए हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, सोनो सर राजन कुमार तमकुही रोड कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है राजन जी और गाने का फरमाइश है तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, सोनो भाई नमस्कार कैसे हैं आप, और मैं रोहित देहरादून से और मैं भी कार्यक्रम से जुड़ गया हूं, तो बिल्कुल बन रहे हैं हमारे साथ, स्वागत है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, प्रणाम भाई कैसे हैं, ठीक है, सभी दोस्त कैसे हैं, ठीक है। सविता चौहान भोज छपरा से जुड़ी हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और बन रहे हमारे साथ। पहले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं बुलेट जी की और इन्हीं के गाने के साथ इस कार्यक्रम की आगाज़ करते हैं और सुनते हैं, जो बीच बजरिया तूने मेरी पकड़ी बहिया।

कमल के शाम रेडियो एमसीएम 94.4 एफएम पे सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का। यदि आप भी इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है एक छोटा सा, जिसमें अपना नाम और गाने का नाम, कहाँ से मैसेज कर रहे हैं उस जगह का नाम बताना है, और फिर इस कार्यक्रम में अपने गाने के साथ इंजॉय करना है। यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हैं, फिर अगले गाने की भी फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि माँ मुझे माँ से मिला दे। सुरेश जी तिरबिरवा से जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और गाने का फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज, नमस्ते नमस्कार कहिए, जैसा है आपका समाचार। नाम शगीर अंसारी फ्रॉम असम से जुड़े हुए थे, बिल्कुल आपका बढ़िया, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सोनो भैया नमस्ते, हम सिद्धांत सिसई बरौली से, भैया गाना सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय सोनू सर कैसे हैं, मेरा नाम है सुरभि और मैं गोपालगंज से, और मुझे गाना सुनना है, तो बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि, तो चलिए आगे मैसेज इनके तरफ से पहुंचा हुआ है, वीरेंद्र गुप्ता भैया मैसेज किए हुए हैं और गाने का बोल दिए हुए हैं, तुम यहाँ मैं यहाँ, लता जी और अनुराधा पौडवाल जी के आवाज़ में है, और डेडिकेट आपके लगाए थे सभी, और इनके सखी सहेलियों को और सुन रहे सभी श्रोताओं को है, तो चलिए स्पेशल में उन्हीं को सुनाएंगे, तो आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो एमजीएम 94.4 एफएम पे।

0: सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारक टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 FM पे शो चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि शुक्रिया सोनू बाबू मैडम की तरफ से लवली गुप्ता। तो चलिए आपकी फरमाइश हम सभी सुना, काफ़ी अच्छा लगा, धन्यवाद है रेडियो रमझिम सुनने के लिए आपको। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं? मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। मैं भी शुरू से जुड़ गई हूँ और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए। और आज मेरे दोस्त का बर्थडे है, सो मुझे आज बर्थडे वाला सॉन्ग सुना दीजिएगा। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल स्वागत है इस कार्यक्रम में, मैसेज करती हैं, काफ़ी प्यारा सॉन्ग रोशनी। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि एक सप्ताह पूरा हो गया है गाने, तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे, थोड़ा सा सब्र करें। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है राजीव कुमार का मधुसरिया से, और कहते हैं कि मुझे सॉन्ग सुनना है। तो राजीव जी, आपकी फरमाइश तो हम पूरी किए हुए हैं इस सप्ताह में, सो थोड़ा सा सब्र करें, दूसरों को भी मौका दें। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सोनू भाई नमस्कार और सभी दोस्तों को नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं दिलीप राम दिल्ली से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज मंकी साहनी जी वेस्ट चंपारण से जुड़े हुए हैं, सोनू भैया इस प्रोग्राम को हम बड़ा बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, फिल्म मधुमती का गाना लौट के आजा मेरे मीत, तो बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं MD नौसाद जी की, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश काफ़ी प्यारा पहुंचा हुआ है, और उफ़ ये मोहब्बत का गाने का बोल दिया गया है, उतरा ना दिल में कोई इस दिल रुबा के।

MGM 94 FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है SMS फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि बहुत बहुत शुक्रिया सोनम भैया आपका मुझे मेरा गाना सुनाने के लिए। MD 97 दरभंगा बाजित पुरुषे मैसेज किए हुए, चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो MGM सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि तेरे ही प्यार से मेरा ये दिल धड़कता है, तेरे ही नाम से मेरा ये दिल भड़कता है, मेरे इस दिल की वफाई को तो देखो, मेरा है पर तेरे लिए ही धड़कता है। और इस लाइन को भेजते हैं दिलीप राम जी, और यहाँ पे एक और लाइन है और मेरे तरफ से, और लिखा गया है कि तेरे बिना भी जी रहे हैं मगर जीने का एहसास नहीं, तेरे बिना भी जी रहे हैं मगर जीने का एहसास नहीं, दिल में दर्द तो बहुत है मगर कहने को कोई पास नहीं, तू खुश रहे बस यही दुआ है मेरी हर पल, क्योंकि तुझसे बढ़कर आज मेरे लिए कोई खास नहीं। और आगे मैसेज पहुँचे हुए हैं, आगे लिखा गया है कि हाय, मेरा भी वेलकम कीजिए, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सुनो भैया नमस्ते, हम सिद्धांत सिसई बरौली से, भैया गाना सुना दीजिए, तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो MGM 94 FM पर।

अभी प्यारा सॉन्ग रेडियो रेम छेम नैडी फोन 4 FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि बिल्कुल तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, जब तक जिएंगे मोहब्बत करेंगे। काफ़ी प्यारा सॉन्ग मैसेज करती हैं रोशनी। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और अगली गाने के फरमाइश करती हैं सुरभि। और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है कांटा लगा। और डेडिकेट भारती मैम, मनोरमा मैम और रेडियो रेमझम सुनने वाले सभी दोस्तों को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी बेबी डॉल से और इंजॉय करते हैं।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स NH 27 बंजारी चैन पट्टी गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714-86164।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
6: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
5: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
7: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
9: रेडियो MGM 94.4 FM सुनते हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और समय जो है आगे निकलते जा रहे हैं। आगे मैसेज कई पहुंचे हुए हैं और कई गाने की फरमाइश, और यहां पे लिखा गया है कि प्लीज़ प्ले माय सॉन्ग, तो बिल्कुल आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश यहां पे करते हैं, और इस मैसेज को पहुंचाने वाले मंकेश जानी वेस्ट चंपारण से हैं, और गाने का बोल देते हैं फिल्म मधुमती का गाना लौट के आजा मेरे मीत। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और सुनेंगे, आप भी सुने, एंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो 94.4 FM पे।

94.4 FM पे काफ़ी प्यारा सॉन्ग सुन रहे थे अभी हम सभी और मधुर आवाज़ में। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और अगले गाने के फरमाइश करती हैं रोशनी और इनके दोस्त की आज जन्मदिन है, उसी के उपलक्ष्य में गाने के फरमाइश की हैं। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और डेडिकेट भी करती हैं, लिखती हैं माई डियर फ्रेंड्स स्पेशल डेडिकेट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आपकी फरमाइश प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रम छम 94.4 FM पे।

लड़कियों का इंतजार नहीं करता। और इस लाइन को भेजते हैं राजू जी मधुसरिया से। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि थैंक्स शॉन्ग बोलने के लिए। चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रेमशम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगले गाने की फरमाइश करते हैं। यहाँ पे एक सप्ताह इंतज़ार करने के बाद रंजन कुमार जी तमको ही रोड कुशीनगर उत्तर प्रदेश से और गाने की फरमाइश करते हैं, ए मेरे हम सफ़र क्यामत से क्यामत मूवी का। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं इस प्यारे से सॉन्ग को, इंजॉय करते हैं।

रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और यहाँ पे समय जो है समाप्ति का हो चुका है, तो कार्यक्रम को अंतिम रूप देंगे और अंतिम गाने प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि सुनसर गाना बजाने के लिए धन्यवाद। तो चलिए, आपको धन्यवाद है रेडियो एमसीएम सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि दुआ करते हैं आपके लिए हम हर पल, हर दिन आपके लिए लाए हसीन पल, हो खूबसूरत आपका ये जन्मदिन, आपकी हर तरह खुशियों का लगे मेला, आपके जीवन में हर पल जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैसेज करते हैं दिलीप राम जी। और आगे मैसेज लिखा गया है कि हाय सर, गुड इवनिंग, और इस मैसेज को पहुंचाने वाले अपना नाम पता कुछ नहीं दिए हुए हैं। तो चलिए, अंतिम गाने प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे, और अंतिम गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं, यहाँ पे किए हुए हैं सुरेश जी त्रिवेवा से, और गाने का बोल देते हैं माँ मुझे माँ से मिला दे। तो चलिए, अंतिम गाने प्ले करते हैं और सुनते हैं, और फिर कल मुलाकात होती है इसी कार्यक्रम में। नमस्कार।

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिंगजिम 91.4 FM। और समय हो गया आप सभी के मन पसंदीदा कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस के शो में। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 78527 88 92 और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो बिना देरी किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमारी तरफ से आप सभी के लिए प्यारा सा गीत, इंजॉय कीजिए गाने को।

अभी हम लोग सुना बहुत ही प्यारा सॉन्ग, पंछी सुर में गाते हैं। और बताइए आप लोगों को कैसा लगा ये सॉन्ग। और बढ़ते हैं, यहाँ हमारे पास बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं, जो कि अगला मैसेज है गणेश कुमार जी की तरफ से। और इन्होंने मैसेज किया है, मनोरमा दीदी क्या हाल बा, मेरा नाम गणेश कुमार पीपरा नारायण से, और सब बताइए। भारती दीदी मनोरमा दीदी के पास और इन्होंने मैसेज किया है, भारती दीदी मनोरमा दीदी के पास करा दी जी बिल्कुल। और गोपालगंज का मौसम कैसा है ज़रूर बताइए। तो गोपालगंज का मौसम भी सही है। और यहाँ पे अगला मैसेज है, जो कि नाम मेंशन नहीं किए हैं, और इन्होंने मैसेज किया है, हेलो मनोरमा जी, राम राम, कैसे हैं। मैं सरोज गुप्ता करकर कुंड से। और इन्होंने, और यहाँ पे अगला फरमाइश है जो कि विकास जी की तरफ से है, और इन्होंने मैसेज किया, नमस्ते जी, मैं विकास गुप्ता भोरे गोपालगंज बिहार से, मेरा भी एक फरमाइश है आप सब से, जेकर अचके में दिलवा टूट गई कल्पना की आवाज़ में। और एक शायरी भी है, दिल तोड़ने वालों को सज़ा क्यों नहीं मिलती, हर किसी को प्यार में सफलता क्यों नहीं मिलती है, लोग कहते इश्क एक बीमारी है, मेरे दोस्त तो मेडिकल स्टोर पे इसकी दवाई क्यों नहीं मिलती। बहुत ही प्यारा और खूबसूरत शायरी इन्होंने लिखा है। तो चलिए इनके गाना को प्ले करते हैं और सुनते हैं इनकी फरमाइश और इंजॉय करते हैं।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

ब्रेक के बाद जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हुए हैं उनका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और मैं हूँ आप सबकी दोस्त मनोरमा। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 98527 88291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं और यहाँ पे अगला मैसेज है नौशाद जी की तरफ से और इन्होंने मैसेज किया है, मनोरमा जी हमारा गाना जल्दी से बजा दीजिए प्लीज़, मुझे कहीं जाना है प्लीज़, गाने का लिंक भेज दिया हूँ बजा दीजिए। और दिव्या जी को और सोनी जी को दोनों को ये गाना हमारे तरफ से सुना दीजिए। जी बिल्कुल, तो आपका गाना प्ले करते हैं, इंजॉय कीजिए।

अभी अभी हम लोग सुने बहुत ही प्यारा सॉन्ग, सराफत, अली को सराफत ने मारा। और बढ़ते हैं आगे की तरफ, और यहाँ पे मैसेज किए हैं सरोज गुप्ता जी, और लिख रहे हैं हमें भी आज सॉन्ग सुना दीजिए रक्षाबंधन का। तो चलिए प्ले करते हैं गाना आपका और इंजॉय कीजिए।

और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, जी मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून। वाओ, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग, आपका चॉइस लाजवाब है।

और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है रोहित कुमार जी की तरफ से, जो कि हैदराबाद से, हैदराबाद के रहने वाले हैं। और इन्होंने मैसेज किया, हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, और हमारा भी अटेंडेंस लगा दीजिए जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रिबन 91.4 FM में।

और यहाँ पे मैसेज पहुँचा है हिमांशु जी की तरफ से, और इन्होंने मैसेज किया है, भारती जी नमस्कार, और आज मेरे बेटे हिमांशु की जन्मदिन है, आप विश कर दीजिए जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, और अपने तरफ से बर्थडे सॉन्ग प्ले कर दीजिए, यदि आपकी दिल तो दिलीप दिलीप राम दिल्ली से जुड़े हुए हैं, तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, इंजॉय कीजिए।

0: आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम एक डेरवा, तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावाड़ नंबर 5 हनुमानगढ़ी, गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 6052 62112 पे।
1: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
1: आज ही संपर्क करें 7388 89470 या 9198 88 6973।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:56 हो रहे हैं और आप सुन रहे हैं योर वॉइस योर चॉइस के शो। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98-52-78-81 और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर 72-77-16-65-96 पे कॉल कर सकते हैं। तो अगले मैसेज की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैम नमस्कार, मैं सुनील यादव दुबई से और एक गाना सुनना चाहता हूँ, प्लीज़ सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि मैम हजरा सूरत से प्लीज़ मैम बजा दीजिएगा, एक हफ्ता से ज़्यादा हो गया है। तो जी बिल्कुल, आपकी गाने की फरमाइश पूरी की जाएगी और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है धनेश कुमार मिश्रा जी की तरफ से जो कि लिख रहे हैं कि जिकर अचके में दिलवा टूट गई, मेरा फेवरेट सॉन्ग बजाने वाले को दिल से धन्यवाद, इसके साथ मैं भी जुड़ गया हूँ उस सोने में। धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और बहुत ही खूबसूरत लाइन पहुँची हुई है तो जो कि लिख रहे हैं वो जो हमसे नफ़रत करते हैं हम तो आज भी सिर्फ उन पर मरते हैं, नफ़रत है तो क्या हुआ यारो, कुछ तो है जो वो सिर्फ हमसे करते हैं। और बहुत ही खूबसूरत लाइन पहुंची हुई है धनेश जी की तरफ से और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली फरमाइश की तरफ। और यहाँ हमारे पास फरमाइश पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, मैं अनीस यादव विलेज डुमरा यदवंशी टोला सिवान बिहार से हूँ और खान ग्लोबल स्टडीज़ पटना का नीट का स्टूडेंट हूँ और गाना सुनना चाहता हूँ मैम, मुझे आज की रात सॉन्ग सुनना है जो डेडिकेट करना चाहता हूँ मनीष यादव सृष्टि यादव सतीश यादव रौनक यादव अंकिता यादव अंजलि यादव नंदिनी यादव मिष्टी यादव मिल्की यादव पूजा राजपूत और आपको। और बहुत ही खूबसूरत इनकी तरफ से शायरी पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि रिश्ते वही खास होते हैं जिनमें अपनापन और एहसास होता है, दूर रह के भी जो दिल के पास रहे वही लोग ज़िंदगी में सबसे खास होते हैं। और गाना जो कि पहुँचे हुए तो चलिए लिख रहे हैं कि थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

अभी हम लोगों ने अनीस जी की तरफ से सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग और गाने की बोल थी आज की रात मजा हुस्न का। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि मोतिहारी से एमडी मीनू बोल रहा हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और इनकी तरफ से भी गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, पर आपकी गाने की फरमाइश प्ले नहीं कर सकते क्योंकि आपका गाना बुधवार को ही मैंने प्ले किया था। और जो कि हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग मैम, मैं दीपक कुमार, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, मैं रोहित कुमार हैदराबाद से और मैं भी जुड़ गया हूँ और हमारा भी अटेंडेंस लगा दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ लिख रहे हैं, हेलो हाय भारती दीन, मैं श्याम।

0: सुंदर संग्रामपुर से मेरा भी हाजिरी लगा दीजिए। तो जी आपकी भी हाजिरी लग चुकी है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि आपको पसंद का गाना बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसके लिए दिल से धन्यवाद। और यहाँ पे मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्कार प्रणाम बरुआ के हमहू आविल बानी, हमरो हाजिरी लगा दी, हमार मैसेज खोइंचा में बांध देले बानी का। और मैसेज करने वाले हैं सन्यासी रंजन जी। तो जी नहीं, आपकी मैसेज को खोइंचा में नहीं बांधे और आपकी भी मैसेज शामिल कर लिया गया है अब। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, लिख रहे हैं कि मेरा भी, मैं हजरा सूरत से और गाना सुनना चाहती हैं। और यहाँ इनकी तरफ से वॉइस रिकॉर्डिंग पहुँची हुई है। उससे पहले जो कि यहाँ एक मज़ेदार चुटकुला भी पहुँचा हुआ है जो कि लिख रही हैं कि शादी के बाद पता चला सासू माँ ने अपने बेटे को बहुत मेहनत से पाला, हमारी माँ ने तो हमें मीशो से ऑर्डर करके मंगाया। क्या बात है। और मैसेज करने वाली हैं हजरा, तो चलिए इनका बिना देरी किए वॉइस को शामिल करते हैं।
1: हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम मैम। मैं हजरा सूरत से और मुझे भी एक सॉन्ग सुनना है। सॉन्ग का नेम है अगर दिल ये कहे मुझे तुमसे मोहब्बत है तो तुम क्या करोगे, और सुनवाना चाहती हूँ अपने हस्बैंड को और आपको। कुछ रेडियो दोस्त हैं, हिना जी, सफाक जी, सलिया जी, शाहजहाँ जी, रोशनी जी, ब्यूटी परवीन, गुलाम हुसैन, वीरेंद्र गुप्ता, इरफान भाई, कमरान भाई, साहिल राजा, समीर भाई और बाकी जितने जाने पहचाने वाले हैं उन सभी लिसनर को।
0: तो यहाँ हजरत जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत से गाने की फरमाइश पहुँची हुई है। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 91.4 FM में।

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7146-164।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034-48652 पे।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, प्रदीप चौहान कुशीनगर दुबई से जुड़े हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं मेरी तरफ से हिमांशु बाबू के, विश यू हैप्पी बर्थडे टू यू डियर। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रमुख जी, जो कि लिख रहे हैं हम हूँ बानी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, और डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह। बरेज से यूपी से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं कि विश्वास कितना छोटा शब्द है, इसे पढ़ने में कुछ सेकंड, सोचने में मिनट, समझने में दिन और साबित करने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। तो बहुत ही खूबसूरत लाइन है और बात तो बिल्कुल सही है आपकी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हेलो भारती जी नमस्कार, राधे राधे प्रणाम जी, मुझे गाना सुनना है प्लीज़ सुना दीजिएगा। और सुजीत कुमार प्रेम नगर बस्तरा राजा लालगंज मिर्जापुर यूपी 63 से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो कि हमारे पास अगला मैसेज पहुँचा हुआ है शंभू यादव जी की तरफ से, जो कि लिख रहे हैं गाना सुनने के बाद, तो जी बिल्कुल आपको भी गाना सुनाया जाएगा और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। उससे पहले हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नमस्कार मैम, मैं अभिषेक बच्चन पुलेपली तेलंगाना से, और मुझे एक गाना सुनना है, गांव का याद आ रहा है इसलिए मुझे गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और जी बिल्कुल आपको भी गाना सुनाया जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास फरमाइश पहुँचा हुआ है, उससे पहले मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं जी भारती मैम नमस्ते, मैं मनोरमा मैम आपको भी नमस्ते, कैसी हैं आप लोग, सो मस्त चल रहा है। और उत्तम सोनी हरपुर से, और मैं भी जुड़ गया हूँ, वाओ सुपर सॉन्ग। और लिख रहे हैं दिल को छूने वाले सॉन्ग है हजरा जी की, और हजरा जी की तरफ से यहाँ वॉइस मैसेज फीडबैक पहुँचा हुआ है, तो चलिए शामिल करते हैं।
8: थैंक यू मैम,
4: गाना बजाने के लिए दिल से शुक्रिया। और मैं अपना गाना सुन रही हूँ और इरफान जी को मेरे तरफ से सलाम बोलिएगा। मैं हजरा सूरत से।
7: और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि बहुत बढ़िया गीत, अगर दिल कहेगी तुम है हमसे मोहब्बत है। और यहाँ पे मैसेज करने वाले हैं जो कि लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून राधे राधे भारती मैम, अभी तो हम लंच कर रहे हैं और आपका लंच कब कितने बजे होता है। मैं पारा विरई से बसंत कुमार ठाकुर, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, मेरा नाम उपेंद्र कुमार और मैं भी आपका प्रोग्राम जम्मू से सुन रहा हूँ, और प्लीज़ एक गाना चला दीजिएगा। और गाने की बोल पहुँची हुई है, गाने की बोल है दिल दिया गल्ला, और प्लीज़ प्लीज़ गाना प्ले कर दीजिएगा जम्मू से। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करेंगे और इंजॉय करेंगे रेडियो रमजिम 90.4 FM में।
8: जिनकी बेगम साहिबा उनसे नाराज बैठी, तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ से

अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग दिल दिया गल्ला, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून अंसर आलम सऊदी अरब से रियाद से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, नमस्ते मैम, संजय यादव दुबई से, क्या हाल है। और मनोरमा मैम नमस्ते, नाइस सॉन्ग मैम, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती दी ये मैसेज शामिल कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी के आपके मैसेज को शामिल करेंगे। और लिख रहे हैं कि शादी सिर्फ एक बार होती है, इसलिए अपनी पसंद से करो। और यहाँ पे लिख रहे हैं कि आपके लिए मैसेज है मनोरमा दी, तो और यहाँ पे प्रदीप जी पूछ रहे हैं कि मेरा नंबर कब आएगा। तो जी बिल्कुल आपके भी गाने की नंबर आएगी, पर छोटे से ब्रेक के बाद। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, रेडियो रिमझिम के सभी स्टाफ सदस्यों और भारती मैम को मेरा प्यार भरा नमस्कार, कैसे हैं आप सब, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। और दिलीप शर्मा अबू धाबी से जुड़े हुए हैं, तो मेरी भी हाजिरी लगा दी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आपकी भी हाजिरी लग चुकी है, और हम सब तो ठीक हैं, आप बताइए आप कैसे हैं। इसी के साथ हमारे पास जो कि यहाँ अगली फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं कि नमस्कार मैम, मैं अभिषेक बच्चन तेलंगाना से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और गाना सुनना चाहते हैं, गाने की बोल है गांव के अधिकारी तुहार बड़का भैया, और यही गाना सुना दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रमजिम 90.4 FM में।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
2: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
2: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
3: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस ₹89,815, HF डीलक्स ₹76,275, ग्लैमर एक्स ₹101,354 और X3 125R ₹110,836 में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
3: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे और यहाँ हमारे पास काफी सारे मैसेज पहुंचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, मैं शिवम कुमार बोल रहा हूँ सियारी करण से। अभी मैं ताश खेल रहा हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और कोई बात नहीं, एंजॉय कीजिए, ताश को भी एंजॉय कीजिए आप। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्ते भारती जी, आप यहाँ आपके यहाँ मौसम कैसा है? और हमारे यहाँ बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है। मैं पारा विरई से प्रमोद कुमार साहू लीला साहू जी जिला वालों छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और यहाँ पे तो मौसम कभी धूप कभी छाँव ऐसे ही हुआ है और हल्की गर्मी भी है। और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, भारती मैम जी आप मुझे भोजपुरी गीत सुना सकती हैं क्या? और सरोज ठाकुर बसंत कुमार ठाकुर इजरा राज पप्पू ठाकुर। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भी। इससे पहले हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, भारती जी कहाँ गए थे मनोरमा मैम के छोड़ के? तो जी मैं भी यहीं पे थी और मनोरमा जी को छोड़ी हुई थी कि लीजिए आप ही चलाइए, थोड़ा कोशिश कीजिए। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, मेरा मैसेज शामिल क्यों नहीं कर रही हैं मैडम जी? तो मैसेज करने वाले हैं संजय कुमार फ्रॉम कोलकाता से और लिख रहे हैं, हेलो गुड आफ्टरनून मैम। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रहे हैं कि हेलो मनोरमा मैम, मेरा नाम अखिलेश मेहताब है, पूर्वी चंपारण इजरा नवादा संग्रामपुर से बोल रहा हूँ। और मैम मेरा मैसेज शामिल हुआ है, गाना नहीं बजा तो प्लीज़ बताइएगा कि क्यों नहीं बजा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। उससे पहले आपके मैसेज से पहले यहाँ पे कुछ गाने की फरमाइश पहुँची हुई है, इसीलिए आपके गाने को नहीं प्ले किया गया। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, भारती जी नमस्कार, और आज मेरे बेटे हिमांशु जी का जन्मदिन है, आप विश कर दीजिए और अपने तरफ से बर्थडे सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा यदि आपके दिल हो तो। दिलीप राम दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं, भारती जी आपकी आवाज़ काफ़ी देर से नहीं सुन रहा था इसीलिए अभी जुड़ा हूँ दिलीप राम। तो ऐसा तो लग रहा है कि आप पहले से जुड़े हुए हैं और मनोरमा जी ने आपके गाने को प्ले भी किया है और हमारी रेडियो रिमझिम के परिवार के तरफ से आपके बेटे हिमांशु जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ जो कि हमारे पास अगली फरमाइश पहुंची हुई है वॉइस के माध्यम से है, तो चलिए सुनते हैं इनकी वॉइस और क्या है इनकी फरमाइश।
2: हेलो गुड आफ्टरनून मैम, मैं सत्यनारायण पटेल बनारस के सजोंग गांव का रहने वाला हूँ, मुझे भी एक गाना सुनना है और मेरे सभी मित्रगण गाना सुनना चाहते हैं, प्लीज़ गाना बजा दीजिएगा। गाने के बोल है, कहवा गई लड़कियां तली हमके बताए दे।
1: तो बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, कहाँ गई लड़कैया हो तनी हमके बता दो। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं शिवम कुमार जी की, नमस्ते। तो जी आपको भी मेरा प्रणाम। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि अनिल कुमार दरभंगा से, नमस्ते भारती मैम, मुझे भी सॉन्ग सुना दीजिएगा। सॉन्ग है बर्बादी हुई बर्बादी हुई। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हैप्पी बर्थडे आपके बेटे को, और मेरी तरफ से मैं हजरा सूरत से। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, सुपर सॉन्ग उत्तम सोनी जी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून, मैं सेल्फ सोहन कुमार फ्रॉम जम्मू, और मैम ये गाना अपनी वाइफ के लिए जिनका नाम ममता

चंद्रा है और यहाँ पे लिख रहे हैं कि आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे भी एक गाना बजा दीजिएगा। तो लिख रहे हैं यहाँ कि गाना सुनना चाहते हैं, तो जी आपकी भी गाने की फरमाइश पूरी की जाएगी। उससे पहले जो कि हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं कि हाय मैम नमस्कार, मैं सुनील यादव दुबई से और मेरा भी एक गाना सुना दीजिएगा। और गाने की बोल पहुँची हुई है, दिलवर दिलवर गाना है और छुपा रुस्तम फिल्म से है। और हाँ मैडम जी हमारा गाना नहीं बजा, तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, तो एंजॉय करते हैं रेडियो रंजन 90.4 FM में ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9470434468 पे।
6: धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई एक गाथा जो हजारों सालों से दिलों में जीवित है, महाभारत। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष, रिश्तों की उलझने और जीवन के सबसे कठिन सवाल, महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कभी अर्जुन के शस्त्र उठाने के पहले की दुविधा, तो कभी श्री कृष्ण के गीता का उपदेश, हर मोड़ पे नए प्रश्न और उनके जवाब, धर्म, युद्ध और जीवन के असली अर्थ की खोज। सुनना ना भूलें हर शुक्रवार शाम 7 बजे से रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। सुनो।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि आप नहीं थी इसलिए नहीं जुड़ा था, गाना नहीं सुन पाया हमने, कोई बात नहीं, मनोरमा जी चलाई, शुक्रिया दिलीप राम। तो अच्छा जी, आप गाना नहीं सुन पाए थे। और लिख रहे हैं कि माना कि कभी दिल की बात ना बताओगे, माना कि कभी दिल की बात ना बताओगे, पर आंखों में जो है वो कैसे छुपाओगे, वादा रहा ये हमारा तुमसे, जब भी दिल में झांकोगे हमारी तस्वीर पाओगे। और मैसेज करने वाले हैं दिलीप राम जी दिल्ली से, और लिख रहे हैं कि दिखावे की मोहब्बत तो जमाने को है हमसे पर, दिखावे की मोहब्बत तो जमाने से है हमसे पर, ये दिल तो वहाँ बिकेगा जहाँ जज्बातों की कदर होगी। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, राधे राधे पाजी यूपी 54 से, और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा। तो जी बिल्कुल, आपकी भी हाजिरी लग चुकी है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नमस्ते भारती मैम, मैं भी शो से जुड़ गया हूँ जलंधर पंजाब से, और गोविंद कुमार मेरा भी हाजिर लगा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी गोविंद जी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, मैं डॉक्टर संतोष संगीता जैसल और मैं माँ पूजावंती हॉस्पिटल बस्त्रा राजा लालगंज मिर्जापुर यूपी इंडिया से, और एक गाना सुनना चाहती हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और जी आपकी भी गाने की फरमाइश पूरी होगी, उससे पहले यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि गणेश कुमार जी लिख रहे हैं कि सुपर सॉन्ग चल रहा है। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि थैंक्स मैसेज के लिए, प्लीज़ मेरा गाना भी चला दो, और गाना प्ले करते टाइम एक बार मेरी वाइफ का नाम ज़रूर बोल लीजिएगा। और इनकी तरफ से गाने की, सोहन कुमार जी की तरफ से गाने की बोल पहुंची हुई है, जो कि गाने की बोल है पल पल दिल के पास, और फिल्म भी है पल पल दिल के पास, और इनकी पत्नी है ममता चंद्रा, और इन्हीं को ये गाना सुनाना चाहते हैं। और गाने की जो फरमाइश है काफ़ी लाजवाब है, तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने की प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में ये प्यारा सा सॉन्ग।

और यहाँ सोहन कुमार जी की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरा आज का दिन और दिन दिल खुश कर दिया और मेरी वाइफ भी हैप्पी है और आपने मेरा गाना चलाया उसके लिए, थैंक्स अगेन। तो इन्जॉय कीजिए आप दोनों अपने गाने।

0: तो अभी हम लोगों ने सुना सोहन जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग और गाने की बोल थी पल पल दिल के पास। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरा भी गाना बजा दीजिए मैम। तो जी बिल्कुल, आपकी भी गाने की फरमाइश पूरी होगी। जो कि इससे पहले मैसेज पहुंचा हुआ यहाँ जो कि लिख रहे हैं कि हाय हेलो गुड आफ्टरनून भारती जी, राजसो लाल सिंह लखनऊ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं तुम रहती हो नाइस सॉन्ग मैम। और लिख रहे हैं कि इस तरह भी होता है इश्क आजमा कर तो देखो, इस तरह भी होता है इश्क आजमा कर तो देखो, बिना मिले उम्र भर चलता है सिलसिला निभा कर तो देखो। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश।
1: हेलो।
0: हेलो
1: जी मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी मैं पप्पू ठाकुर बगेम बाजार कटिया थाना गोपालगंज से बोल रहा हूँ।
0: जी जी, क्या हालचाल है आपका?
1: बढ़िया है जी, अपना बताइए। भारती मैम,
0: हम सबका भी ठीक है।
1: बोल रहे हैं गाना सुना दीजिए, आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छे अच्छे गाने बज रहे हैं।
0: जी जी, आज तो बहुत ही अच्छे अच्छे गाने की फरमाइश पहुँची हुई है।
1: जी जी जी, बोल रहे हमारा भी एक फरमाइश है और हमारी बीवी साथ में है, उनके लिए एक गाना है। फिल्म का नाम है ये रात फिर ना आएगी और महेंद्र कपूर साहब का आवाज में गाना है कि मेरा प्यार वो है कि, यही गाना है।
0: गाना कौन सा है? मेरा
1: मेरा प्यार ये है कि, यही है गाने का बोल है, अच्छा गाना है उसका।
0: और गाना जो सुना
1: मेरा प्यार वो है कि मर के भी तुझको जुदा अपने बाहों से होने ना दूंगा।
0: जी जी, और गाना जिन्हें सुनाना चाहते हैं अपनी वाइफ को उनका नाम भी बताएंगे।
1: जी नीलम देवी है, यही पास में ही हमारे साथ में।
0: जी जी, तो गाना प्ले कर रहे हैं, एंजॉय कीजिए आप दोनों अपने गाने को।
1: थैंक यू मैम।
0: ओके जी।
2: मर कर भी तुमको

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9470434468 पे।
6: धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई एक गाथा जो हजारों सालों से दिलों में जीवित है, महाभारत। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष, रिश्तों की उलझने और जीवन के सबसे कठिन सवाल, महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कभी अर्जुन के शस्त्र उठाने के पहले की दुविधा, तो कभी श्री कृष्ण के गीता का उपदेश, हर मोड़ पे नए प्रश्न और उनके जवाब, धर्म, युद्ध और जीवन के असली अर्थ की खोज। सुनना ना भूलें हर शुक्रवार शाम 7 बजे से रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। सुनो दिल से।

ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और यहाँ पे अगला मैसेज है गुलाम हुसैन जी की तरफ से। और इन्होंने मैसेज किया है, मुझे सॉन्ग सुनना है मौसम आशिकाना। तो चलिए ये प्यारा सा सॉन्ग एंजॉय करते हैं।

0: तो अभी हम लोगों ने सुना गुलाम हुसैन जी की तरफ से बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, और जो कि वेस्ट मुंबई के रहने वाले हैं और गाना डेडिकेट किए थे कमरान अमरान, नौशाद, जगदीप, आयुष, प्रिंस, लकी, समीर, साकिब, रवीना, ब्यूटी, हीना, गुड़िया, सजाद, गुलशन, सबीना, यास्मीन, सलेहा, रोशनी, अफरीन। तो यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है हमारे पास, अगले लिख रहे हैं कि हाय दी, गुड आफ्टरनून, मेरा नाम करिश्मा कुमारी पिपरा नारायण से, और मनोरमा दी का हालवा। तो मनोरमा जी का तो हाल ठीक है, आप बताइए आप कैसी हैं। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि मनोरमा जी शामिल करेंगी।
1: यहाँ पे अगला मैसेज है सूरज जी की तरफ से, सरोज जी की तरफ से, और इन्होंने मैसेज किया है हेलो मैम सरोज अली।
0: और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है सरफरोज अली अगिल टोला के रहने वाले हैं और लिख रहे हैं बहुत अच्छा गाना चल रहा है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं नमस्कार भारती जी, अनूप कुमार कुशवाहा ग्राम निरंजना से, और लिख रहे हैं क्या हाल है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मेरा हाल तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ इंस्टाग्राम की तरफ से मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि
1: यहाँ पे अगला मैसेज है प्रिंस चौहान जी की तरफ से, और इन्होंने मैसेज किया है मैं भी जुड़ गया हूँ जी, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मुझे भी सॉन्ग सुनना है, सॉन्ग है चिंदरी चिंदरी, तो चलिए प्यारा सा सॉन्ग प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सभी के साथ।

और इसी गाने के साथ बढ़ेंगे दोपहर न्यूज की तरफ। फिर आपसे मुलाकात होगी हमारी दोपहर न्यूज के बाद, जिसका अभी गाना प्ले नहीं हुआ है, दोपहर न्यूज के बाद गाना प्ले होगा। तब तक एंजॉय कीजिए आप सभी इस गाने को।

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जवानों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि इससे पहले एसएसबी के कार्यक्रमों में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इनमें शामिल होना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमा सुरक्षा के लिए पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना, सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने बंगाल के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर करीब 189 करोड़ रुपए की लागत से एसएसपी के कई शिविरों के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से सीमा सुरक्षा में तैनात जवानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दूरसंचार विभाग ने बताया है कि यह समझौता ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग हुआ। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। एक रिपोर्ट।
2: पुणे में आयोजित 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक से इतर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो के बीच हुआ। ये समझौता ज्ञापन दूरसंचार, डिजिटल बुनियादी ढांचे और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्यवस्थित सहयोग के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों में समावेशी, सुरक्षित और मजबूत डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना है। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में ये समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकों के क्षेत्र में अधिक सहयोग की वकालत करता रहा है। भारत ब्राजील समझौता दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का भी एक हिस्सा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक जारी है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीली डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। उद्घाटन भाषण में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की प्रतिबद्धता से प्रेरित लचीले, विश्वसनीय, नवोन्मेषी, सशक्त और समावेशी भविष्य के लिए भारत के दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की।
3: पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा ध्यान संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए।
4: इम्प्लीमेंटिंग कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स।
0: ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर में हो रही है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का स्वागत किया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राजस्थान भारत की सदियों पुरानी विरासत, जीवंत संस्कृति और अद्वितीय आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अतिथि अपने प्रवास के दौरान राज्य की परंपराओं की गर्मजोशी और समृद्ध का अनुभव करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसेह और के विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनः समीक्षा को खारिज करते हुए 2-1 से यह फैसला दिया। एक रिपोर्ट।
5: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार।
0: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जीएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है।
6: झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी को आगामी 7 सितम्बर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि विज्ञापन और नियुक्तियों को अचानक रद्द करने का सरकारी फैसला नियमों के अनुकूल नहीं है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर तय की है। इससे पहले कल जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर और पूरे एशिया के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। सिंगापुर में भारत सिंगापुर कारोबारी मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत की मजबूत आर्थिक विकास यात्रा, निवेश के अवसरों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कारोबार सुगम बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री गोयल ने सिंगापुर के विदेश मामलों और व्यापार तथा उद्योग राज्य मंत्री गन सियो ह्वांग तथा अन्य गणमान्य लोगों से भी मुलाकात की। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। नई सेवा से लोगों को यात्रा का एक और विकल्प मिलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के उधमपुर स्टेशन पर रुकने की सुविधा का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। इसे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। नई वंदे भारत उन यात्रियों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जिन्हें नौकरी, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी कामों के सिलसिले में जम्मू श्रीनगर आना जाना पड़ता है। अब उन्हें इस सेवा का लाभ लेने के लिए पहले जम्मू या किसी अन्य स्टेशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधमपुर से ही जम्मू से श्रीनगर तक की यात्रा की जा सकेगी। रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान को विश्व में इतिहास के सबसे बड़े समन्वित आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा। एक साक्षात्कार में श्री बेसेंट ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर द्वितीय प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के आर्थिक उपायों को ध्वस्त करने की धमकी दी थी। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन आर्थिक धमकियों को खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अराक्ची ने कहा कि ये धमकी अमेरिकी जनता का अपने घरेलू वित्तीय समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण जल मार्गों को मुख्य रूप से नियंत्रित कर रहा है और जल्द ही उन पर पूरा कब्जा कर लेगा। एक रिपोर्ट।
8: एक निजी रेडियो चैनल के साथ साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि अमरीका के लोगों को इस संघर्ष के कारण पेट्रोल और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिए जाएंगे और दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता काफी हद तक कम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईरान में बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और सैन्य कर्मियों को वेतन नहीं मिलना उस पर बढ़ते दबाव के संकेत हैं। श्री ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो वह इसराइल और पश्चिम एशिया के अन्य देशों पर हमले कर सकता था। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइलों ने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन को निशाना बनाया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: अमेरिका ने क्यूबा के निर्माण, खनन और धातु क्षेत्रों से जुड़ी 9 सरकारी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही क्यूबा की सरकारी कंपनियों के साथ कारोबार करने वाले अमरीकी नागरिकों पर भी पाबंदियां कड़ी कर दी गई हैं। क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की 100वीं जयंती से जुड़े समारोहों से वापस आने वाले नागरिकों को अमरीका म्यामी हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है और कई नदियां उफान पर हैं।
9: मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन में बारिश का असर धीरे धीरे मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: भारत के त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने असाधारण दृढ़ता और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले सेट में पिछड़ने के बाद वापसी की और चौथी वरीयता प्राप्त चीन की जिया यीफेन और झांगशू शियान को हराया। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। ये 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। भारतीय महिला टीम आज अम्स्टरडैम में एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में मेजबान नीदरलैंड से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,544 जबकि निफ्टी 24,236 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
12: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
13: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
12: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
13: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
12: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
14: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
15: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
14: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
15: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
14: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
15: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
14: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0970-06-575।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
3: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
2: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
3: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
3: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
3: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
2: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92-8-99-22-5-67 या 97-7-14-86-164।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
5: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
8: भरोसे वाले से लेंगे,
7: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
8: और कीमत भी।
7: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
9: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
10: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
11: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
12: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करे खरीदारी।
11: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
13: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
11: कॉल करें 85070-32042 पे।

छोटे से ब्रेक के बाद और दोपहर न्यूज के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त भारती। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टा व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852782191, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि मैसेज करने वाले हैं श्री भगवान सिंह, लाइव दोहा कत्तर से रेडियो रिमझिम के साथ जुड़ गए हैं और लिख रहे हैं कि सात समुद्र पार है पर दिल में हिंदुस्तान है, रेडियो रिमझिम की धुनों में बसा मेरे अपनों का अरमान है, ड्यूटी की व्यवस्था में जब भी आती हैं वतन की याद या चिट्ठी आई है गाना बजा दीजिएगा, और दिल की आवाज़ कतर से लाइव। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपकी भी गाने को प्ले करेंगे। और मैसेज करने वाले हैं श्री भगवान जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं क्या बात है, सच ही कहा है किसी ने, ओल्ड इज गोल्ड। और लिख रहे हैं आज तो ओल्ड गानों की बहार आ गई माशाअल्लाह। और मैसेज करने वाले हैं लाल सिंह जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से, तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार आपका फिर से। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हाय भारती जी नमस्कार, इरशाद मास्टर ग्राम धनाव से आपका कार्यक्रम से जुड़ा हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो कि हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि भारती जी नमस्कार, मुझे भी गाना सुनना है, आज भोजपुरी गाना सुना दीजिएगा और दोस्तों को भी सुनवाना चाहते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आपके भी गाने की फरमाइश पूरी की जाएगी। उससे पहले यहाँ हमारे पास रेखा सुनील खरे से जुड़ी हुई हैं और लिख रही हैं कि मुझे गाना सुनना है, सुना दीजिएगा, और गाने की बोल है रिमझिम गिरे सॉन्ग, और सुना दीजिएगा महाराष्ट्र से आपका बहुत सारा प्यार। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में ये प्यारा सा सॉन्ग।

अभी हम लोग ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग रेखा जी की तरफ से, रिमझिम गिरे सावन। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैडम जी नमस्कार, हम लोग भी आपका कार्यक्रम सुन रहे हैं और कार्यक्रम अच्छा चल रहा है। उमा शंकर सिंह, अवंतिका सिंह, अर्चित सिंह रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून भारती मैम, कैसी हैं? मनोरमा मैम साथ में ही हैं क्या? तो जी अभी तो दोपहर न्यूज के पहले हम दोनों साथ में थे, अभी फ़िलहाल मैं केवल भारती बोल रही हूँ। और लिख रहे हैं कि कल तो मेरा गाना बजा था, आज तो नहीं बजेगा, अगर संभव हो तो गाना बजा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आपका गाना कल बजा था, इसीलिए मैं आज प्ले नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे जो आज सुनने वाले लिसनर हैं उन सभी का मैसेज पहुँचा हुआ है, तो उनका भी गाना प्ले करना ज़रूरी है। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मनोरमा दी का हलवा, और मैसेज करने वाली है करिश्मा जी, और लिख रही हैं दी आप लोग लंच कर लीजिए। तो जी हम लोगों ने अभी लंच किया है, अभी लंच करके आ रहे हैं। और यहाँ पे अगली मैसेज पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं, ओम नमः शिवाय हर हर महादेव न्याय पारा बिरई से लीला साहू, प्रमोद कुमार साहू बिरई जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, फिर से तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है, मैं केतन खरे नासिक महाराष्ट्र से, और मुझे गाना सुनना है तेरे नाम हमने किया है। और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुँची हुई है। और लिख रहे हैं मनोरमा मैम, भारती मैम और शोनी मैम को ढेर सारा प्यार। और इसी के साथ हमारे पास जो कि फरमाइश पहुंची हुई है, लिख रहे हैं कि मैं शिवलाल पटेल वाराणसी का रहने वाला हूँ और मैं साड़ी की बुनाई करते हैं, मुझे भी गाना सुना दीजिएगा। और रिमझिम पर सुने सभी भाई बहनों को आने वाले रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, प्लीज़ मैडम सुना दीजिए। गाने के बोल हैं, भैया मेरी राखी के बंधन को निभाना। और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी

तुम्हारे बिना मेरा यह दिल अधूरा लगता है, और लिख रहे हैं गाना की कोई फरमाइश नहीं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरा गाना कब तक बजेगा, और मैसेज करने वाले हैं श्री भगवान सिंह जी। तो जी आपका भी गाना प्ले होगा, उससे पहले हमारे पास यहाँ एक फरमाइश पहुँची हुई है, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं रोहित देहरादून से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो कि हमारे पास फरमाइश पहुँची हुई है इंस्टाग्राम के माध्यम से, और लिख रहे हैं कि हमारा नाम रमिता कुमारी और गाने की बोल भेजे हुए हैं आप, और लिख रहे हैं कि पश्चिमी टोला से हमको सॉन्ग सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और गाने की बोल है तो हर दिल है कि चार्जर कतई लगा ले लो, और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

अभी हम लोगों ने सुना खेसारी लाल जी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, तो हर दिल हर की जर जर कति लगा ले लूँ। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि बहुत मेहनत से शेर लिखा है, पढ़ दे।

0: पूरा शेर मैं जिन्हें सुनाया था उन्हें नहीं सुना पाए, एक बार और पढ़ दीजिएगा। तो चलिए फिर से पढ़ देते हैं आपके लिए। और लिख रहे हैं शमशाद अली उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से, और एक शायरी अपनी बीवी के लिए, जो कि लिख रहे हैं कि चेहरे पर तुम्हारे नूर ऐसा है कि चांद भी तुम्हारे आगे फीका लगता है। चेहरे पर तुम्हारे नूर ऐसा है कि चांद भी तुम्हारे आगे फीका लगता है। मेरी ज़िंदगी को जन्नत बनाने वाली तुम्हारे बिना मेरा यह दिल अधूरा लगता है। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं शमशाद अली जी। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि उससे पहले हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है। तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: गाना सुनना है
0: जी। गाना सुनाऊंगी, नाम बता दीजिएगा अपना।
1: तमन्ना खातून।
0: अच्छा, और कौन सा गाना सुनना है?
1: चाहिए तो सर जी को छोड़िए में हमारे बात के तेरा से छोड़िए में।
0: थोड़ा तेज बोल सकते हैं? हेलो।
1: हाँ,
0: एक बार और बोल दीजिए धीरे से।
1: हम टांगे पसार की कुठरिया में हमारे बाप के दुराग लग कुठरिया में।
0: गाना क्या आप चेंज कर सकते हैं?
1: हाँ,
0: दूसरा बता दीजिए। जोर से बोलिए।
1: हमारे भाई हमारे आँखी के नींद जा रहे हैं, जैसे चाहिए अच्छाई के लिए फिर जा रहे हैं।

0: एक बार और बोल दीजिएगा।
1: हमारे भाई हमारा के भाई के
0: और गाना सुनाना भी है किसी को
1: यार।
0: बता दीजिए
1: काफी पहले आप तो
0: ओके तो गाना आपका प्ले कर दिए हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। एंजॉय कीजिए गाने को।

तो अभी हम लोग ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग भाई कोहिनूर बड़े हो, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैडम जी नमस्कार, मैं संग्रामपुर जिला नवादा से बोल रहा हूँ और पवन सिंह के गाना सुना है सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका भी गाना प्ले होगा। उससे पहले जो कि हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँची हुई है जो कि फरमाइश तो नहीं पर दिनेश जी की तरफ से कुछ लाइंस पहुँची हुई है, और बहुत ही खूबसूरत लाइन है। लिख रहे हैं कि खता हो गई तो फिर सजा सुना दो, दिल में इतना दर्द क्यों है वजह बता दो, देर हो गई याद करने में ज़रूर लेकिन तुमको भुला देंगे ये ख्याल मिटा दो। और बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं दिनेश कुमार मिश्रा जी, और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं तो इस तरह से, और मुझे भी गाना सुनना है और गाने की बोल पहुंची हुई है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और लिख रहे हैं राज किशोर झारखंड देवघर से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुंची हुई है, लिख रहे हैं कि हेलो मैम, राधे राधे पाजी यूपी 54 से, और मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और लिख रहे हैं कि मैम कब तक बजाइएगा, लिंक भेज दिया हूँ, प्लीज़ मेरा गाना प्ले कर दीजिए। और इनकी तरफ से गाने की जो बोल पहुँची हुई है, गाना है अपने महबूब की तस्वीर। तो बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश है, तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं रेडियो रिमझिम 91.4 FM में।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिरदर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
6: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:22 हो रहे हैं और शो चल रहा है योर वॉइस योर चॉइस का। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे कार्यक्रम की तरफ, और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, भारती जी मेरा भी गाना है, ख्याल रखिएगा। और क्या भारती जी हमसे नाराज हैं क्या? 4 दिन से गाना सुनाने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं सुना रही हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका गाना इसलिए मैं प्ले नहीं कर रही थी क्योंकि आपके गाने की टाइमिंग नहीं हुई थी। और यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय भारती मैम, मेरा नाम मनीष कुमार, घर पिपरा से नाम, गाने की लिंक भेज दिया हूँ और हमको भी गाना सुनना है, बजा दीजिएगा मैम। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि मैसेज पहुँचा हुआ है, लिख रहे हैं कि श्री भगवान सिंह जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ और गाना सुनना चाहते हैं, और गाने की बोल है जो कि पहुँची हुई है, और गाने की बोल है चिट्ठी आई है, आई है चिट्ठी आई है, और गाना बजा सकती है तो बजा दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले किया जाए और एंजॉय किया जाए रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

अभी हम लोगों ने सुना भगवान जी की तरफ से चिट्ठी आई है और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैं केतन खरे नासिक महाराष्ट्र से जुड़ा हूँ और मुझे भी गाना सुनना है, और मनोरमा मैम, भारती मैम और सोनी मैम को ढेर सारा प्यार और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है और मेरा गाना नहीं बजेगा क्या, 3 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ। और लिख रहे हैं कि हेलो भारती जी नमस्कार, राधे राधे प्रणाम जी, और मुझे गाना सुनना है और गाने की बोल है दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम। और मैसेज करने वाले हैं सुजीत कुमार, प्रेम नगर बस्त्र राजा लालगंज मिर्जापुर यूपी 63 से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले कर रहे हैं, एंजॉय कीजिए रेडियो रमजन 90.4 FM में।

और यहाँ सुजीत कुमार जी की तरफ से मैसेज पहुँच गया है, जो कि लिख रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद गाना प्ले करने के लिए, और गाना प्ले करने के लिए आपका भारती जी, तो इन्जॉय करते रहिए अपने।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894 18744।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198886973।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 91.4 FM में। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98-52-78-91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72-77-16-65-96। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि

मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून भारती मैम, आज देर से जुड़े हैं और मैसेज करने वाले हैं मुंबई से मोहम्मद सदाम, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो हाय भारती जी, हम कृष्ण मोहन सिंह सिपाया खास से सभी लिसनर और सभी आरजे को गुड आफ्टरनून बोलिएगा, हम अभी लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो कि हमारे पास यहाँ फरमाइश जो कि पहुंची हुई है, लिख रहे हैं कि भारती जी मेरा गाना बजा दीजिएगा, और भोजपुरी गाने की फरमाइश पहुंची हुई है, लिख रहे हैं कि दोस्तों को दोस्त सुनेगा लोग, और भगवान भाई ने छोटन तिवारी ने हमारा घर हिजरा नवादा है, पवन सिंह की आवाज़ में गाना सुनना है और गाने की लाइन तो नहीं और मूवी पहुंची हुई है प्यार मोहब्बत जिंदाबाद का, और गाना सुना दीजिएगा भारती जी, हमारा गाना नहीं बजेगा क्या आज दिन का, हमारा भी गाना बजा दीजिए। तो चलिए बिना देरी के आपको प्यार मोहब्बत जिंदाबाद का गाना प्ले करते हैं, तो एंजॉय कीजिए रेडियो रिमझिम 90.5 पे ये अपना गाना।

0: तब रामू काका हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
1: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
0: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
1: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
0: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
1: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
0: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द?
4: अरे तो उसे डांटते क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
0: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
0: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
0: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में, और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, हेलो मैम, मुझे भी गाना सुनना है, गाना सुना दीजिएगा। और मैसेज करने वाले हैं शुभम कुशवाहा बंजारी से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे जो कि हमारे पास फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि मनीष कुमार घर पिपरा से जुड़े हुए हैं, तो इनकी तरफ से लिंक के माध्यम से फरमाइश पहुंची हुई है जो कि गाने की बोल है ऐसी दीवानगी, और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है। तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे रेडियो रमजम 90.

तो अभी हम लोगों ने सुना मनीष जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, और इनकी तरफ से मैसेज पहुंच गया जो कि लिख रहे हैं थैंक्स मैम गाना प्ले करने के लिए। और मैम मेला जा रहा हूँ, चलिएगा। थैंक्स मैम गाना प्ले करने के लिए। तो मेला तो मैं नहीं जाती, आप ही जाइए और इन्जॉय कीजिए। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरा गाना कब बजेगा। तो जी आपका गाना कल बजेगा, और आपकी सप्ताह कल पूरी हो रही है तो बिल्कुल आपका गाना कल बज जाएगा। और इसी के साथ यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं गाना सुनना है, और बहुत ही खूबसूरत गाने की फरमाइश पहुँची हुई है। और लिख रहे हैं हेलो मैम हमें भी गाना सुना दीजिएगा, और गाने की बोल है तू सनम बेवफा हो गेलू हो। और मैसेज करने वाले हैं शुभम कुशवाहा बंजारी से, और लिख रहे हैं गाना बजा दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

तो अभी हम लोग ने सुना शुभम जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग तू सनम बेवफा हो गईलू हो पवन सिंह की आवाज़ में, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और यहाँ हमारे पास जो कि मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि वक्त ने हमसे कैसा लिया इम्तिहान, आ गए तुम्हारे दर पर फरियाद करेंगे, तुम गाना हमारा बजाओ ना बजाओ हम फिर भी इंतज़ार करेंगे। और मैं आपको बता दूँ आपकी गाने की फरमाइश मैंने पूरी की थी, इसलिए मैंने आपके गाने को आज प्ले नहीं किया। और आपकी गाने की फरमाइश आपकी जिस दिन सप्ताह पूरी हो रही है उसी दिन बजेगा फिर से। और यहाँ पे मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि हमारे पास फरमाइश पहुँची हुई है, और लिख रहे हैं कि हेलो मैम, हमें भी गाना सुनना है, सुना दीजिएगा। और गाने की बोल है, दुपट्टा सरक रहा है, मेरा दिल धड़क रहा है। और शंभू यादव जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लास्ट सॉन्ग आप सभी के लिए प्ले करूँगी, और इसी के साथ आप सभी से लूँगी विदा। और आज के लिए बस इतना ही। और जिनके भी गाने की फरमाइश पूरी नहीं हुई है और जिन जिनकी फरमाइश बच गई है उनकी गाने को मैं कल प्ले करूँगी, और टाइम भी ओवर हो चुका है। तो चलिए आप सभी के लिए शंभू यादव जी की तरफ से ये गाना प्ले करते हुए आप लोगों से लूँगी विदा। इंजॉय करते रहिए ये प्यारा सा सॉन्ग। बाय बाय।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HFD लक्स 76,275 रूपए, Glamour X 1,01,354 रूपए और XT125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545-67-666।
5: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रूपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
8: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
9: रेडियो रिमझिम,
8: सुनो दिल से।
10: रात होई ता बिहान।

खैलास बेसी होई त जियान होई बे करी और खिलल बगिया जबू जब।

0: धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई एक गाथा जो हजारों सालों से दिलों में जीवित है, महाभारत। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष, रिश्तों की उलझने और जीवन के सबसे कठिन सवाल, महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कभी अर्जुन के शस्त्र उठाने के पहले की दुविधा, तो कभी श्री कृष्ण के गीता का उपदेश, हर मोड़ पे नए प्रश्न और उनके जवाब, धर्म, युद्ध और जीवन के असली अर्थ की खोज। सुनना ना भूलें हर शुक्रवार शाम 7 बजे से रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। सुनो दिल से।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।

0: बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
5: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9939-35923।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034 48652 पे।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
7: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
8: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97097065।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
7: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88 291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88 291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
9: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आएं कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
9: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: Now pick your phone up.
11: नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029294911। जी हाँ, 8029294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
12: हेलो।
13: हेलो।
12: हाँ नमस्ते सर, मैडम।
13: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
12: भारती मैडम बोल रहे हैं?
13: नहीं,
12: मनोरमा मैडम।
13: जी जी।
12: अच्छा, मैं राजेश के बजट बोल रहा हूँ, गुजरात से।
13: जी जी, कैसे हैं आप?
12: बढ़िया हूँ, अपना बताइए।
13: जी मैं भी अच्छी हूँ।
12: पहला ही कॉल लग गया मेरा।
13: जी जी, पहला ही कॉल है आपका।
12: ठीक है मैडम, मैं तो भोजपुरी गाना ही सुनता हूँ। कोई गाना सुना दीजिए।
13: कौन सा बता दीजिए?
12: सावन का।
13: सावन का कोई भी?
12: हाँ कोई भी चलेगा, भोजपुरी होना चाहिएगा।
13: जी जी। और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
12: हाँ, आपको सभी लोग को सुनाना चाहते हैं, जितने भाई लोग, बहनों लोग सब सुनते हैं, सभी लोग।
13: ओके, फिर वैसे क्या हो रहा था?
12: बस ऐसे ही, मैं सोचा की आज लगाता हूँ कॉल। मैं तो जुड़ता नहीं हूँ, बस खाली फरमाइश में ही जुड़ता हूँ इसमें।
13: क्यों, इसमें क्यों नहीं जुड़ते आप?
12: बस क्योंकि बस एक कॉल लगा नहीं जानता हूँ, बाकी तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो बस इसे सुनते रहता हूँ खाली।
13: कोई बात नहीं है।
12: मोबाइल वाला एक और है तो चॉइस एसएमएस वाला, तो उसमें भी तो लगता है अभी तो फोन ही नहीं उठाते हैं आप लोग।
13: जी जी, उसमें फोन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कॉल तो आ रहा है बट उठ नहीं रहा है।
12: चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं फिर ट्राई करेगा जब सुनेगा।
13: जी तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
12: जी जी, थैंक यू।
13: जी वेलकम, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: नमस्ते
1: नमस्ते,
0: गोपाल बोल रहा हूँ।
1: जी जी, कैसे हैं गोपाल जी?
0: बढ़िया है, घर पर ही है अभी तो।
1: अच्छा जी, वैसे आप कहाँ से बोल रहे हैं?
0: जिला गुना।
1: अच्छा अच्छा, तो क्या हो रहा था अभी?
0: अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, अभी तो थोड़ी बारिश हो रही थी तो घर पर ही है।
1: अच्छा, बारिश हो रही है?
0: हाँ बारिश हो रही है। और क्या,
1: खाना वाना हो गया आपका?
0: खाना तो अभी नहीं हुआ है, अभी तो हम खेत पर से आए हैं और घर पर ही है अभी। और क्या, गाना सुनना है?
1: बता दीजिए।
0: सुनना है आंदोलन फिल्म का, आएगी हर पल तुझे मेरी याद।
1: क्या गा के दो लाइन सुना सकते हैं मुझे?
0: जी, आएगी हर पल तुझे मेरी याद, आइस मुलाकात या कुमार सानू का इनके वाले।
1: ओके, अब ये गाना डेडिकेट भी करना।
0: डेडिकेट तीन साहू जी है, मक्सूनगढ़ से ज्योति साहू जी है, नरेश प्रजापति जी है, इनके लिए।
1: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: कर दीजिए।
1: सबके साथ रेडियो 90.4 एफएम।

0: और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई एक गाथा जो हजारों सालों से दिलों में जीवित है, महाभारत। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष, रिश्तों की उलझने और जीवन के सबसे कठिन सवाल, महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कभी अर्जुन के शस्त्र उठाने के पहले की दुविधा, तो कभी श्री कृष्ण के गीता का उपदेश, हर मोड़ पे नए प्रश्न और उनके जवाब, धर्म, युद्ध और जीवन के असली अर्थ की खोज। सुनना ना भूले हर शुक्रवार शाम 7 बजे से रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। सुनो दिल से।
1: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
2: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
2: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
3: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
4: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
3: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9939365923।
6: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
6: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए, और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27, बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
6: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।
7: Now pick it up,
8: hello.
7: Now pick your phone up,
8: hello.
7: Pick it up,
8: hello.
7: Now pick your phone up,
8: hello.
9: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं hello.
10: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो।
12: हेलो
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में।
12: मनोरमा जी।
11: जी जी,
12: आज तो पहले बेर में लग गए, क्या बात है
11: जी?
12: आज पहले बेर में लग गए
11: ना, एक पहले कॉल आ चुका हुआ
12: ना। ना हमार हमार।
11: अच्छा जी,
12: दिल से प्रणाम।
11: प्रणाम।
12: पैसा बनी?
11: जी जी बिल्कुल बढ़िया बानी, आपन बताई?
12: बस हम ठीक है बनी, चाय पिया प्रणी।
11: अच्छा,
12: देखने की टाइम हो गई बाहरी लगाई ली
11: जी, कहा है ना
12: सब मौसम के संग बारिश,
11: बारिश तो मतलब हल्का धूप निकल वैसे आप नाम बता दी।
12: रमेश कुमार मिश्रा दिल्ली।
11: अच्छा,
12: फरमाइश ले ली।
11: बता दी।
12: विशेष पांडे के किया के मारल लोग दूर से चुना जाला।
11: क्या दुल्हन गाके सुना सकते?
12: ना आज नहीं गाके सुना सकते, ऐसे ही गाना हम ज्यादा सुनने नहीं थे। आज याद आई तो कौन है की फरमाइश दिया जाए।
11: अच्छा अच्छा, कौन बात नहीं थे। और गाना कैसे सुनवाए के विचार
12: मनोरमा मैम के, भारती मैम के, सोनी मैम के, और जिसके नाम से जानने वाले हैं सब सुन रहे हैं। नाम लिया जाए हमने सके मोबाइल में अलार्म सेट हो गए तो के भी रिकॉर्डिंग के भी अलार्म सेट हो गए तो आदमी कोई भी काम करी तो अलार्म बाज जाला। तो ये दो चार पाँच मिनट लेट हो गई तो जानवा के चॉइस कर लिया जाए क्या गाना दिया। पाँच सात मिनट लेट हो गए बहनी तो पहले ही बेर में लग जाए, आज माने के पड़ी कैसे कैसे आज पहले बेर में लग जाए।
11: आज के दिन अच्छा बा,
12: आज के दिन अच्छा बा, पूरा दिन अच्छा चले तब तो।
11: जी बिल्कुल,
12: चलिए फिर हमारी शामिल करें,
11: प्ले करते हैं राहुल गाना।
12: नमस्कार,
11: सुनत रही सबके साथ रेडियो 94.4।

0: हेलो,
1: जी बहुत स्वागत है रेडियो रिंकू 90.4 FM
0: में। वालेकुम
1: अस्सलाम।
0: अभ्यर्थी मैम बोल रहे हैं?
1: नहीं,
0: फिर कौन मैम जी?
1: जी मैं मनोरमा।
0: अच्छा, मैं अहमद अली सारे वार्ड नंबर 1 से बोल रहे हैं।
1: अच्छा, क्या हाल चाल है आपका?
0: ठीक है मैम, अपना बताइए।
1: अभी बढ़िया हूँ।
0: तबीयत पानी अच्छा है ना?
1: जी जी बिल्कुल।
0: सब लोग अच्छा है ना?
1: जी जी, यहाँ पे भी सब कोई अच्छे, आप ठीक है ना?
0: हाँ हाँ, हम लोग सब मस्त है, बिंदास। आज हमको सॉन्ग सुनना है चांदनी मूवी से।
1: जी,
0: गाना है ना, आ मेरी जान मैं तुझ में अपनी जान भर दूं।
1: क्या आप दो लाइन गा के बता सकते?
0: तेरे कदमों में अपनी जहान रख दूं, आ मेरी जान मैं तुझ में अपनी जान भर दूं, है ना गाना?
1: जी जी
0: हाँ।
1: और ये गाना आप किसी को डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
0: जी मैम, सबसे पहले तो आपको और भारती मैम को, कमरान भाई को, राघव जी को, दिलीप भाई को, और जो भी रिमझिम जहाँ से भी सुन रहे हैं सभी को, और हमारे तरफ से सभी को जुम्मा मुबारक। ये गाना मैम कब बजेगा, आज बजेगा या कल?
1: जी जी, पूरा कोशिश रहेगा कि आज ही बजे।
0: प्लीज, आज जुम्मा है इसलिए अगर बजा देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी।
1: जी जी बिल्कुल।
0: ठीक है मैम, सलाम
1: अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ।
0: थैंक यू मैम गाना सुनाने के लिए।
1: सुनते रहिए रेडियो रिंकू 90.4 FM।
0: थैंक यू थैंक यू।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545 67 666।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
8: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
8: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
9: Now pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
9: Pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your phone up.
10: Hello.
11: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
12: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिम 90.4 FM में।
14: जी नमस्ते, बसरा से बोला जी, बोलते हैं।
13: नमस्ते,
14: क्या समाचार?
13: जी बढ़िया बा, अपन बताइए, रघुआ कैसन बानी?
14: ठीक बानी।
13: वैसे नाम क्या बतानी है?
14: जी
13: जी, अपन नाम बता दिए और एड्रेस
14: बताओ ना। जो बसरा से बोला जी बोलते नहीं,
13: आवाज कट के आता,
14: आवाज कट के ऐसे आता की स्पीकर चालू ना करती, बात ना हुई, मोबाइल खराब था। जी यही आवाज कभी कभी कटेला। आवाज
13: जी जी, एक बार और बता दी, कहाँ से बोला जानी?
14: हम पचफेरा से बोला जी बोलते हैं, हम हमेशा फोन करी नहीं, ध्यान से नहीं है। समाचार
13: बढ़िया बाबा, ठीक बानी ना?
14: हाँ हाँ, बढ़िया बानी। भारती बोलते नहीं
13: ना?
14: मनोरमा जी।
13: जी जी
14: जी, सेम दोनों इनके सेम आवाज में उसे आदमी पहचान में दिक्कत हो जाता
13: है। अच्छा जी, खाना होगा?
14: हाँ खाना होना है तो मैया के फुलकर आई चढ़ाए कर थोड़ा लेट हो गई हो, लेकिन खाना खा के आराम करते नहीं और फोन लगावत रही फोन धरत ना बात करते नहीं। गाना सुना दी रक्षाबंधन के अंकुश रजत के गाना आते बहनी तुम्हारा के कभी ना भूलाए, ये गाना बजा दी लास्ट वाला कड़ी में बाजे सजल रहो भैया बहनी के प्यार समय बार वाला, यही गाना में लास्ट में भाई।
13: और ये गाना क्योंकि सुना
14: रहे और सुने पूरा टीम सुनी रेडियो जितना भी जुड़ल बदला सर कोई सुनी हम सुने कब बाजी
13: ये गाना राउत शाम के बाजी
14: आज शाम को बाजे नो
13: जी जी अगर आज ना भी बाजे तो कल तक बाकी बाजी कहा की बहुत सारा दर्द है तो कहीं आगे पीछे हो सकता था।
14: हाँ कोई बात नहीं बात जारी चाहे
13: जी नमस्ते सुनत रही सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।

0: हेलो,
1: जी बहुत स्वागत है रेडियो रिंगू 90.4 FM में।
0: सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: हम भारत मैम बोल रहे हैं?
1: नहीं,
0: फिर कौन मैम जी?
1: जी मैं मनोरमा।
0: अच्छा, मैं अहमद अली सारे आवाज नंबर 1 से बोल रहे हैं।
1: अच्छा, क्या हाल चाल है आपका?
0: ठीक है मैम, अपना बताइए।
1: अभी बढ़िया हूँ।
0: तबीयत पानी अच्छा है ना?
1: जी जी बिल्कुल।
0: सब लोग अच्छा है ना?
1: जी जी, यहाँ पे भी सब कोई अच्छे, आप ठीक है ना?
0: हाँ हाँ, हम लोग सब मस्त है, बिंदास।
1: जी जी,
0: आज हमको सॉन्ग सुनना है चांदनी मूवी से।
1: जी,
0: वो गाना है ना, आ मेरी जान मैं तुझ में अपनी जान भर दूँ।
1: क्या आप दो लाइन गा के बता सकते?
0: तेरे कदमों में अपनी जहान रख दूँ, आ मेरी जान मैं तुझ में अपनी जान भर दूँ, है ना गाना?
1: जी जी। और ये गाना आप किसी को डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
0: जी मैम, सबसे पहले तो आपको और भारती मैम को, कमरान भाई को, राघव जी को, दिलीप भाई को, और जो भी रिमझिम जहाँ से भी सुन रहे हैं सभी को, और हमारे तरफ से सभी को जुम्मा मुबारक। ये गाना मैम कब बजेगा, आज बजेगा या कल?
1: जी जी, पूरा कोशिश रहेगा कि आज ही बजे।
0: प्लीज, आज जुम्मा है इसलिए अगर बजा देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी।
1: जी जी बिल्कुल।
0: ठीक है मैम, सलाम
1: अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ।
0: थैंक यू मैम गाना सुनाने के लिए।
1: सुनते रहिए रेडियो रिंगू 90.4 FM।
0: थैंक यू।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
2: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
9: ठक ठक।
10: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
11: अच्छा मिला ही नहीं।
10: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
10: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
12: Now pick your phone up.
13: तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगकिन 90.4 एफएम में।
15: जी भारती जी से बात हो रहा है ना?
14: नहीं जी, मैं मनोरमा।
15: मनोरमा जी नमस्कार।
14: नमस्कार,
15: हम दिलेश कुमार शर्मा, हम जिंदा मत से बोल रहे हैं।
14: जी जी, कैसे हैं आप?
15: हम तो अच्छे हैं, आप ना बताइए।
14: मैं भी बढ़िया हूँ।
15: समझ में हो गया है?
14: हाँ हो गया है। और आपका?
15: मेरा भी हो गया है।
14: चलिए बढ़िया।
15: तुमको गाना सुनना है?
14: बता दीजिए।
15: सावन आया, ये सॉन्ग सुनना है।
14: ओके, अरे गाना सुनाना भी हो किसी को?
15: आपको भारती जी को, सनी रंग को, सनु सर को और शर्मा जी सर साहब हैं और मनोज शर्मा भी हैं और सदर भैया भी हैं और सुशीन मास्टर कवर भी हैं और निर्मला जी हैं और दुर्गा जी और सीता जी हैं और जितने रंजन सुनने वाले हैं सबको साथ और अनिल जी सबसे सब लोग को साथ सुनना है।
14: नमस्कार, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 FM में।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: कौन बोल रही है? वर्किंग है?
0: नहीं,
1: मनोरमा जी। बोल रहे हैं, बहुत बिजी थाउजेंड में लगाते
0: जी जी। क्या नाम बता दीजिए अपना?
1: हमारा नाम पप्पू ठाकुर है, गोपालगंज से बोल रहे हैं।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: खतरा थाना गोपालगंज जी। बोल रहे कौन सुनवा रही है
0: बता दीजिए।
1: फिल्म का नाम है कटिश पतंग और गाने का बोल है प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता।
0: और मूवी नेम क्या बताया है?
1: कटिश पतंग। राजेश खन्ना का फिल्म आया गया है।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: तब रामू काका, है इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
6: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
7: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
6: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
8: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88 291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88 291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: Now pick your phone up.
11: तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो
13: जी मैम, नमस्कार।
12: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजीव 90.4 FM में।
13: जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ, मैं से।
12: जी जी, कैसे हैं सुनील जी?
13: बस ठीक है मैम, बस बैठे हैं। हमारे यहाँ बारिश चालू है मैम, आपका वहाँ का मौसम पे क्या चल
12: रहा है? मौसम इधर तो लग रहा है इधर भी की बारिश आएगा।
13: तो बस बारिश हो रहा मैम, तो हम बैठे थे अभी फ्री, तो हम सोचे अभी टाइम हो गया तो लगाते फोन, फोन भी लग गया मैम।
12: जी तो फिर
13: आज एक फरमाइश करने गाने के बोल है फूलों सा चेहरा तेरा और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम जो लोग सुनते हैं सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
12: ओके, क्या आप दुल्हन गा के सुना सकते हैं?
13: जी मैम, गाना हम नहीं गा पाते हैं, यही फूलों सा चेहरा तेरा यही सुनवा दीजिएगा और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम दोस्त लोग सुनते हैं सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
12: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
13: धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिम 90.4 FM में।
0: हाँ जी मैडम, क्या हाल है मैडम?
1: जी बढ़िया, बा अपन बताएं।
0: चल
1: ही रहे कि चाहिए, वैसे अपन नाम बता दें।
0: नाम साहिल,
1: कहाँ?
0: बंजारी से, गोपालगंज।
1: अच्छा, चलिए, तो खाना वाना हो गया? चलिए बढ़िया बा। वैसे आज की फरमाइश का बा बता दें।
0: बात जाए ना,
1: बात
0: जाए बजा दीजिए, आप अपना पसंद बजा दीजिए।
1: अच्छा, हम अपन पसंद
0: मतलब आपके पास हम गाना थे।
1: जी जी, मतलब कैसा गाना सुनूंगा, जैसे कि भोजपुरी या फिर हिंदी?
0: भोजपुरी अच्छा था,
1: हिंदी
0: सॉन्ग सुनाइए।
1: ओके, और ये गाना डेडिकेट भी करेगी साथ में?
0: हाँ डेडिकेट कर जाते
1: हैं। अच्छा,
0: तो सुनिए बोलिए मैडम।
1: शाम की 5 से 7 के बीच?
0: 5 से 7।
1: हाँ, वैसे अगर आज ना सुन पाते हैं तो कल तो जरूर मिली सुनेंगे, यही टाइम।
0: को बोले
1: 5 से 7 के बीच?
0: खाली 5 से 7 रिपीट ना करेला,
1: रिपीट भी चलेला।
0: 9 से 11
1: के बीच?
0: अच्छा,
1: फिर अब गाना प्ले करता नहीं?
0: हाँ एकदम एकदम
1: जी, सुनते रहे सबके साथ रेडियो रिंगजिम 90.4 FM।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
6: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
7: ग्लैमर X, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
6: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
7: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
7: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
6: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
8: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
9: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
10: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
11: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
12: तो ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009-94-9911। जी हाँ, 8009-94-9911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो
14: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
13: सलाम वालेकुम।
14: वालेकुम अस्सलाम।
13: रेशमा बोलते हैं, पठानपुर से।
14: जी जी, कैसन बानी?
13: ठीक बानी, अपन बताए।
14: जी हमारे भी बढ़िया बा।
13: नासन सपालन बानी।
14: और भइला कि ना?
13: जी मैडम जी हमने को हो गइला।
14: चली बढ़िया।
13: तो बेटा ठीक बानो मैडम जी?
14: जी बोली
13: ठीक बानी नु?
14: हाँ हाँ ठीक बानी एकदम।
13: तो बात भर गए घर तो बड़ी तारीफ होत रहे।
14: अच्छा जी।
13: हाँ कहते मैडम जी की आवाज बड़ी अच्छा बा, बड़ा अच्छा बन टाइम तो गाना सुना दी।
14: कहा की रहुआ गाना जन बतले रही तो वैसे कोनो मिलत ना रुआ रहुआ तो नाम धके कोनो गाना बतावी ना।
13: हाँ
14: तो तनी दिक्कत होत रुआ तो जन बुझावे तन लगा दे कोनो इतरा
13: गाना का कोई कहत रुआ था भाभी कहत गाना तर मेरे तो हिसाब से बजा दल बड़ी हो।
14: जी जी
13: हमने। हाँ
14: चली सुनवे नु गाना?
13: हाँ नहीं सुन सके सुने भाई भतीजा रहुआ सा भाभी रही हम रहे सब तो बैठ रहे सा गाना बाजत रहे मोबाइल में वही सुना ये तो रेडियो रख ले बानी और छोटका मोबाइल लेके गए रहे तो उसमें हेडफोन लगा दें बाजत रहे
14: तो घर कहिया गई बिहान भैले?
13: हाँ बिहान भले आ गई तो मार्ग दिन कॉल कर रहे हूँ शाम को तो गाना सुन रही मंगल के दिन चलिए तीन चार बजे
14: तो रहे ना जल्दी कहा रही
13: लड़का पढ़ल तो एक दो दिन रहे बस चलिए ज्यादा दिन ना
14: रहे
13: तो फिर इसलिए मैं लड़का बोली सुन लो
14: पढ़ लो जरूरी
13: बात काम फिर बढ़े रहो तो कथी बुआ चलिए भले मत रहे गये गई फोन लगा के गाना सुनवा थे मैडम जी गाना सुना है आज की फरमाइश काले से इंतजार जो होता है जगह की खबरी बा
14: बताई
13: आज नाजिर भाई बा नौसाद उनके कल को लड़की भाई बड़ी
14: तो हमारा तरफ से उनके बहुत बहुत बधाई बा बोल रहे
13: ठीक बा जी तो वे कॉलेज से सोचते हैं कि फोन लगी तो गाना सुनने के बस हो तो कौन सीन के फिल्म के वो गाना बा खियाई भौजी हलुआ लक्ष्मी जी आईनी खियाई भौजी हलुआ लक्ष्मी जी आईनी बोलाई भौजी सोनारा लक्ष्मी जी आईनी ये गाना है मैडम जी।
14: जी रुआ तो बड़ा अच्छा गावे नी।
13: अच्छा कहाँ गावे मैडम जी थोड़ा सा ट्राई करे नी।
14: ना ना बहुत बढ़िया गावे नी रुआ
13: ऐसे भी हम मैंने ये सब गाना तो कम गावत रही गाने नी ये सब बिया शादी गीत ना होला ये सब ज्यादा गावत रही
14: चली तो हम और भारती जी आवते
13: आए जरूर आए
14: पार्टी में
13: आएंगे छठियार के दिन आए पार्टी में मैम सब कोई आई गाजर और बाजी मिठाई बटाई ना।
14: जी जी बिल्कुल हमने को पहुंचा टेंशन हो गया।
13: हाँ गावे नहीं की ना मैम गाना होगी तो
14: गाना तो ना गावे नहीं हूँ
13: बिया शादी गीत गा सक ना।
14: जी
13: अरे बिया शादी वाले गीत गा सक ना
14: ना ना गाना हम के ना
13: हम तो सो और खूब गावे
14: ठीक बात कभी टाइम गवावे नहीं रहूगा एक दिन
13: एकदम गवाए बिया शादी में लड़की के गीत कहीं लड़का के गीत कहीं झूमर ना कहीं सब
14: जी जी तो चलिए प्ले करते नहीं गाना अगला आदमी के फोन आता।
13: जी मैडम जी सब कोई इंतजार है
14: जी सुनत रहे सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4।

0: हेलो मैडम नमस्कार।
1: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
0: जी मैं मनान बोल रहा हूँ कपूरपुरा से।
1: जी जी, क्या हाल चाल है?
0: बहुत हाल चाल तो ठीक है, और बहुत दिनों के बाद आज कॉल में किया हूँ।
1: जी जी,
0: तीन चार प्रोग्राम निकल जाने के बाद आज याद आया है।
1: अच्छा, तो कहीं गए थे क्या?
0: नहीं गए थे, नहीं कुछ उलझन में, वैसे ही दूसरे काम में पहुँचाना। अच्छा। ये रिमझिम याद नहीं आ रहा है इसी सब मामले में, तो आज हमको याद आया है, तो करीब दो मिनट से लगा रहा हूँ तो हमारा लग गया। तो गाना वही सुनना है हमको, साथ और डूबे इस दुनिया में आज तुम्हें अपने जो दिन, है ना?
1: एक बार और बता दीजिए, अभी आपके पास शोर हो रहा है क्या?
0: जब नहा रहा है, जुम्मा है ना?
1: जी जी।
0: तो इसीलिए वो बाथरूम में नहा के चिल्लाते हैं तो, है ना? हाँ, तो वही आवाज आ रहा है।
1: चलिए कोई बात नहीं।
0: तो वही गाना सुनवाना है मैडम, सातो जुबे इस दुनिया में आतो अपने जोड़ी, है ना? धर्मवीर का है। हाँ, तो ये गाना सुनवा दीजिएगा मैडम। लेकिन तो एक शिकायत तो है, शिकायत ये है कि आपके प्रोग्राम में हम तो मैसेज करके गाना नहीं सुनते हैं व्हाट्सएप पे, और जो है कि जब कॉल करते हैं इतना कॉल कर करके थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं। आप कॉल कभी भी उठाती भी नहीं है।
1: जी जी, वो क्या ना फोन में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, कॉल तो आ रहा था बट उठ नहीं रहा था इसके वजह से, तो अभी कल देखते हैं।
0: तो ऐसा ही जो है ना, मैं मतलब थोड़ा मायूस हो जाता हूँ कि ऐसा है, कॉल तो मैं करता हूँ पर मैडम उठा नहीं रही है, तो थोड़ा सा मायूस हो जाता हूँ कि आप कॉल में वो जरा कॉल करके गाना सुना जाए। ये तो हम तो इसमें बता देते हैं तो ये गाना बच जाता है। कोई मामूली है, लेकिन उसमें जो बचा है ना उतना ही टाइम पे आज उसी टाइम पे गाना आया और अच्छा लगा है। आप तो अब बहुत फेमस हो गई हैं पहले से, इसीलिए नाराजगी है ना?
1: नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। ऐसा बात
0: हर चीज में आप फेमस हो गई हैं, अब सोनी जी को अपील कर रही हैं आप। तो इसके लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत दुआएं हैं कि आप ऊंचाई पकड़ते जाएं, अच्छा रहेगा। सोनी जी का भी प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा है, और किसी डॉक्टर से सवाल जवाब करती हैं तो वो भी सुनने में बहुत अच्छा लगा है, है ना?
1: जी
0: उनका, हाँ, तो मैं सुनता हूँ कभी तो बहुत अच्छा लगा है, सवाल जवाब करने में आते हैं, उनका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा जा रहा है उनका भी। तो अब इसमें आप वो तो आते नहीं है आपके प्रोग्राम में, ये सब आप ही अटेंड कर रही हैं, कभी उनको भी मौका दीजिए कि हमको मतलब उनसे भी बात करने का मौका मिल जाए। आज एक और मैम आई थी ना, वो अब नहीं आती है क्या?
1: जी आती हैं।
0: देखो तो प्रोग्राम में अब नहीं आती हैं।
1: वो भी आती हैं।
0: उनका आवाज सुनना हमको बहुत दिन हो गया, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है, ठीक है मैडम, तब हम भी अब चले अपने काम में, है ना? तो गाना सुनवा दीजिएगा मैडम।
1: ओके, तो प्ले करते हैं गाना आपका।
0: जी
1: जी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
2: सात अजूबे इस दुनिया में आठ में अपनी जोड़ी, सात अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी, हर थोड़े से भाई टूटे ना।

अपना जो कुछ है सब आधा आधा है, दुख सुख के हम साथी हैं ये वादा है। अपना जो कुछ है सब आधा आधा है, जो ये सच्चा वादा है तो

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई एक गाथा जो हजारों सालों से दिलों में जीवित है, महाभारत। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष, रिश्तों की उलझने और जीवन के सबसे कठिन सवाल, महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कभी अर्जुन के शस्त्र उठाने के पहले की दुविधा, तो कभी श्री कृष्ण के गीता का उपदेश, हर मोड़ पे नए प्रश्न और उनके जवाब, धर्म, युद्ध और जीवन के असली अर्थ की खोज। सुनना ना भूलें हर शुक्रवार शाम 7 बजे से रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। सुनो दिल से।
4: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: Now pick your phone up.
7: दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो,
9: नमस्कार मैम।
8: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिम 90.4 FM में।
9: आपको भी
8: नाम बता दीजिए अपना।
9: हम ओम साई में बोल रहे हैं, बंजारी रोड पुलिस स्टेशन के सामने, गोपालगंज से। राघव भाटी मैम?
8: नहीं,
9: आपका मैम नाम?
8: मनोरमा।
9: मनोरमा, थैंक यू मैम आप नाम बताने के लिए, आपको दिल से थैंक यू। आज तो बहुत दिक्कत हुआ फोन लगाते लगाते।
8: अच्छा जी,
9: कम से कम 200 बार कॉल लगाए तब जाकर लगा।
8: चलिए कोई ना, आप लग गया।
9: आज आपसे पहली बार बात हो रही है
8: जी, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि पहली बार आपसे बात कर रही हूँ मैं।
9: जी जी, भारती मैम से एक दो बार हुआ है कॉल पे बात। आज
8: अभी क्या हो रहा था
9: मैम? अभी तो आप सब काम धाम छोड़ के आप कॉल पे कॉल लगा रहे थे।
8: अच्छा।
9: कम से कम 10-15 मिनट से कॉल लगा रहे थे, 200 बार कॉल लगाए थे अभी जाकर लगा।
8: तो फिर बता दीजिए फरमाइए।
9: आज दोस्ती पिक्चर का कोई भी सॉन्ग चला दीजिएगा।
8: डेडिकेट भी है
9: पहले तो आपको, क्योंकि पहली बार बात हुई है। और हमारे जितना रेडियो दोस्त सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम, उन सभी लोगों का साथ में सुनना चाहता हूँ, सभी आरजे को साथ में सुनना चाहता हूँ हमारे ओम साई चलो राघव जी की तरफ।
8: तो फिर लेकर देंगे ना आपका।
9: थैंक यू मैम,
8: वेलकम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।
9: थैंक यू।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: मैं मोहम्मद यूसुफ सिपाया ढाला से बोल रहा हूँ।
0: क्या हाल चाल है आपका?
1: हाल तो बढ़िया है, बहुत दिन थोड़ा व्यस्त थे, कहीं बाहर गए थे इसलिए फोन नहीं कर रहे थे। हाँ, बाहर में थे कहीं। और सब सुनाइए, सब बढ़िया है? मौसम तो ठीक हो रहा है।
0: जी जी,
1: हमको गाना सुनवाइएगा, सावन के महीना पावन करे तो।
0: ओके।
1: हाँ, इसी को सुनवा दीजिएगा।
0: क्या आप दो लाइन गा के बता सकते हैं?
1: बता सकते हैं, सावन के महीना पावन करे सोर, जियर रे झूमे जैसे वैसे मनवा नाचे मोर।
0: ओके, और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
1: अपना मेडिकल हॉल के सभी स्टाफ और गुमनिया के अरशद अली हैं और कन्हैया प्रसाद हैं गुमनिया के, उनको सुनवाना चाहता हूँ।
0: ठीक है, प्ले करते हैं गाना आपका।
1: हाँ ठीक है, ठीक
0: है, सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87894-18744।
5: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
4: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो जी, नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगम 90.4 FM में। जी जी, मैं बढ़िया हूँ, अपना बताइए आप कैसे हैं?
8: जी हाँ जी, अच्छे हैं, मनोरमा मैम बोल रहे हैं।
7: जी जी,
8: हम एक ट्राई कर रहे हैं, अब लगा बहुत मेहनत किए हैं।
7: अच्छा जी,
8: बहुत सफर है।
7: जी सब बढ़िया, आप अपना नाम बता दीजिए।
8: जी हम सफर जल्दी बोल रहे हैं।
7: अच्छा, तो क्या हो रहा था?
8: जी मैम, 11 बजे से आपके पास कॉल लगा रहे थे, मेहनत करते हुए सब कुछ छोड़ के लग गया।
7: जी बहुत मेहनत करना
8: पड़ता है। जी मैम, कभी कभी हो जाता है सर। जी मैम, बहुत समझ में करके आई होंगी।
7: जी जी, और आपका हुआ?
8: जी हम लोग भी तक करके जाते हैं दुकान पे, मतलब दुकान पे रहते हैं गोपाल गंज में।
7: जी जी, किस चीज का दुकान है?
8: हम लोग का मतलब ये खतरा का लेडीज का।
7: अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया। तो फिर
8: प्राइस तो नहीं मिलेगा फरमाइश?
7: जी
8: आज जो फरमाइश होगा तो नहीं बजेगा।
7: बचेगा,
8: आज बजेगा मैम।
7: जी जी बता दी
8: मैम, तो गाना की फरमाइश यही है, तेरी जिंदगी मेरी जिंदगी ऐसे गाना है।
7: जी एक बार और बता दीजिए।
8: तेरी जिंदगी उड़ा के ले जाइए, मेरी जिंदगी ऐसे गाना।
7: अच्छा, और गाना सुनवाना भी है किसी को?
8: आपको भाते को, सभी आर्मी को, जितने भी दोस्त हैं सभी दोस्त सबको।
7: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
8: धन्यवाद, बाय
7: बाय, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगम 90.4 FM।
8: ओके।

0: हेलो जी रिमझिम रेडियो गोपालगंज जी
1: जी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: सोनिया बेटा जी प्यार सत्कार भाई, सत श्री अकाल भाई। मैं भाई पिंड मौड़ खुर्द डिस्ट्रिक्ट बठिंडा पंजाब तो जगजीत मटू बोलता भाई।
1: बस कैसे हैं आप?
0: ठीक ठाक भाई, तुसी दसो भाई थोड़ी सेहत ठीक ठाक है?
1: बस क्या हो रहा है अभी?
0: अभी भाई सुबह तो थोड़ी थोड़ी मेहनत भाई पंजाब च बारिश आई जी, आप पूरी धूप निकली हुई है। तुहाडे भाई गोपालगंज कैसा है मौसम?
1: मौसम तो धूप निकला हुआ है
0: भाई, इसकी बारिश हो ही नहीं भाई, वधिया इसकी साडे पंजाब जी दा भाई जमी नहीं हुई अपने पंजाब जी दा।
1: तो फिर की फरमाइश बता दीजिए।
0: बेटा जी आज एक पंजाबी सॉन्ग है, उस सिंगर का नाम बताऊं?
1: जी बिल्कुल,
0: कुलदीप मानक साहब है जी। समझ आ गई बेटा?
1: जी जी। और गाने के बोल?
0: हाँ जी उसके बोल हम जी चादर चादर।
1: क्या आप गा के सुना सकते हैं?
0: हाँ जी बेटा जी सुनो जी। बुर प्या कन कानुमाई बागी अम्बिया पक्कियां अग दे पांबड़।

0: हवा एगी का बेटा।
1: ओके, और ये गाना डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
0: बेटा पहले जो ये गीत है ना बेटा, ए तीयो को पैना का परिवार का हिदार पुरो गीत धार्मिक बढ़िया है बेटा।
1: जी जी।
0: ए बेटा मेरे मान जो को बड़े भाई है सरदार प्रगट सिंह ढिल्लों साहब, सरदार दविंदर सिंह तगड़ साहब, स्वामी धर्मपाल जी, तेजी संतोख सिंह मिस्त्री दिल्लू सूर साहब राजस्थान गंगापुर तो जी, तेजी अपने मलकीत सिंह घड़ीराज, तेजी परमजीत बागा पुराना जी, तेजी बेटा तुहानू प्यार सत्कार भरी ये सत श्री अकाल बताते है बेटा।
1: जी जी। तो फिर
0: बेटा एक ना भूल गया मैं, एक भाई बेटा मैं ना भूल गया प्रिंसिपल अमरजीत सिंह वाला जी।
1: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ठीक है बेटा, बेटा चंगा भाई सत श्री अकाल भाई, बाबा नानक चढ़ती कला चरक जाऊंदे रहो बाद दे रहो सत श्री अकाल भाई।
1: सत श्री अकाल, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: ठीक है बेटा, ठीक है भाई।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
2: भागे भागे फिरते हैं।
4: तो श्रोताओं अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं। नंबर है 8009994911 पर कॉल करके। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
5: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
6: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
5: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
7: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9939365923।
8: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपी

0: ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
3: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: एपिसोड नंबर 45।

श्री रामचंद्र के ब्रह्म होने के संबंध में पूछे गए पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान शिव उनकी इस शंका को लोक कल्याणकारी बताते हैं। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी उनके श्रवण रंध्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने संतों के दर्शन नहीं किए उनकी आंखें मोर पंख पर बनी आंख की नकली आकृतियों के समान हैं। जिसके हृदय में भगवत भक्ति नहीं वो प्राणी मृतक के समान है। जिस जिह्वा से श्री राम का गुणगान नहीं हुआ वो मेढक की जीभ के समान है। वो हृदय वज्र के समान कठोर होता है जो प्रभु चरित का गान सुनकर हर्षित नहीं होता। इन उक्तियों के साथ भगवान शिव ने पार्वती को राम कथा सुनाना आरंभ किया। गिरिराज किशोरी आदर पूर्वक श्रद्धानत हो पति के वचन सुनने लगी।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,01,354 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
6: प्रसाद क्लिनिक।
7: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
6: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंड स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज,
7: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने श्री राम अवतार की कथा सुनाते हुए ब्रह्म के निर्गुण तथा सगुण रूपों की व्याख्या की। जो निर्गुण अर्थात अरूप, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। जिस प्रकार जल और ओले में कोई भेद नहीं, दोनों जल के ही रूप हैं, उसी प्रकार सगुण और निर्गुण भी तत्वतः एक ही हैं। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को समझ पाने में असमर्थ होता है, इसी कारण वो प्रकाश पुंज पुराण पुरुष श्री रामचंद्र पर एक मानव की भांति मोह के आवरण में लिपटे होने का आरोप लगाता है।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज। और
5: विभाग और कॉन्वर्ट जीनियस AI के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान अररिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और किशनगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ महत्वपूर्ण बैठक में शामिल हुए। बैठक में भारत नेपाल जल एवं बांध परियोजनाओं, बजट से जुड़े विषयों, पर्यटन विकास और बिहार के हित से जुड़े अन्य मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा भी मौजूद रहे। बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार बिहार को विकसित बनाने के लिए हर संभव सहयोग उपलब्ध करा रही है।
6: इसमें हाई लेवल डैम जो बनने हैं उस पर चर्चा हुई और बिहार में जो लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सपोर्ट मिल रहा है उसके ऊपर भी चर्चा हुआ कि कई चीजें जो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है, चाहे वो इरिगेशन के प्रोजेक्ट है, सब में भारत सरकार का पूरा सकारात्मक पक्ष रहा कि पूरी तरह बिहार को सहयोग करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया।
5: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि जब तक बिहार समृद्ध नहीं होगा तब तक भारत का विकास अधूरा है। नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि अब बिहार में कानून का राज है। उन्होंने कहा कि सुरक्षित वातावरण में बिहार नए मानक कर रहा है।
6: बिहार एकदम सुरक्षित है, मैं 100% कह सकता हूँ। पटना एयरपोर्ट से निकलकर गया जी 4 घंटा लगता था पटना से जाने में, आज पटना से गया जी आप चले जाइए 1.5 घंटे में पहुँचेंगे और 100% सुरक्षित पहुँचेंगे, कोई रोकने वाला। आप जब जाएंगे आप स्वयं महसूस करेंगे बिहार बदला हुआ है, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर बदले हुए हैं, बिहार की कानून व्यवस्था बदली हुई है और कोई समर्थन करने वाला नहीं। बिहार के आम लोगों का स्वयं मानना कि बिहार को सुरक्षित।
5: श्री चौधरी ने कहा कि सरकार की कोशिश रही है कि आम काम की तलाश में राज्य से बाहर गए लोग अपनी जन्मभूमि वापस लौट सके।
6: और क्योंकि सबसे ज्यादा डेंसेस्ट पॉपुलेशन वाला राज्य बिहार है, हमसे पीछे बांग्लादेश छूट चुका है, हमसे पीछे इंडोनेशिया छूट चुका है, हम आबादी का लाभ लें और जो बाहर हमारे लोग चले गए कर्म करने के लिए, कर्म भूमि पर काम करने के लिए, हम लोगों ने एक थीम भी रखा है, कर्म भूमि से जन्मभूमि पर आकर अपने बिहार को सुंदर बनाने का प्रयास। इन सब चीजों पर लगातार हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं।
5: बिहार में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में नवाचार, तकनीकी क्षमताओं के विकास और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार और कॉन्वर्ट जीनियस AI के बीच आज समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य बिहार को AI सक्षम राज्य के रूप में विकसित करना तथा AI आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्पाद, सेवाओं और तकनीकी समाधानों के विकास को प्रोत्साहित करना है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति AG मसीह और K. विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनर्समीक्षा को खारिज करते हुए 2-1 से यह फैसला दिया। एक रिपोर्ट।
7: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में एक वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद एक वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार।
5: केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन निर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि यह योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है। योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष की होगी। इस योजना का उद्देश्य मोबाइल विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है। यह योजना भारतीय मोबाइल ब्रांडों को बढ़ावा देगी और रोजगार सृजित करेगी। बिहार में सतत और समावेशी विकास को गति देने के उद्देश्य से आयोजित 2 दिवसीय बिहार सतत विकास लक्ष्य कॉन्क्लेव 2026 आज संपन्न हो गया। समापन सत्र को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि बिहार ने वित्तीय क्षेत्र में अच्छा कार्य किया है, लेकिन विकास को गति देने के लिए संसाधनों के अपव्यय को नियंत्रित करना और प्रत्येक खर्च को परिणामदायी बनाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है और इसके लिए संसाधनों का उचित उपयोग, नई तकनीक को अपनाना तथा बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य प्रणाली विकसित करना जरूरी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि गठबंधन में सभी सहयोगी दलों की अपनी सामाजिक और राजनीतिक भूमिका होती है और गठबंधन के बिना आज देश की राजनीति नहीं चल सकती। श्री कुशवाहा राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में पार्टी के 3 दिवसीय विमर्श शिविर में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के भाजपा में विलय की अटकलों को भी खारिज कर दिया।
8: बीच में कुछ हमारे मीडिया के भी बंधु और मीडिया में तो एक बड़ी जमात, अब सोशल मीडिया, अब उसके माध्यम से भी कुछ लोगों ने क्या क्या नहीं हमारी पार्टी के बारे में कहना शुरू किया। विलय हो जाएगा, तारीख तय कर दी कुछ लोगों ने, घोषणा हो गई। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं था, दबाव नहीं था कि हमको विलय करना है। कुछ लोगों ने सुझाव जरूर दिया था कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा का अस्तित्व कहीं से कोई क्या भी अर्थ लगाता है उसकी मर्जी, पार्टी है और पार्टी रहेगी, कोई प्रश्न ही पैदा नहीं।
5: कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि कृषि जनकल्याण संवाद अभियान से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण हाट व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी। श्री सिन्हा ने आज पटना में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है।
9: किसानों के हित में किसान समृद्धि, महिला उद्यमी, युवा रोजगार और श्रमिक उत्थान, कृषि जन कल्याण संवाद का कार्यक्रम हमने शुरू करने जा रहे हैं गया जी के पावन धरती से। और आज किसान 76% आबादी के लोग हैं, इनके हित में सरकार पूरी सजगता के साथ इनकी समस्याओं का निदान करने का, इनको बेहतर केंद्र और राज्य की योजनाओं को जमीन पर इम्प्लीमेंट करने का एक वातावरण बनाने की सकारात्मक सोच के साथ शुरुआत कर रही।
5: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल पटना में कृषि जनकल्याण संवाद अभियान का शुभारंभ किया था। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों पर समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। इसके साथ ही इन्फ्लुएंजा पर बारीकी से निगरानी करने की बात कही। इधर वरिष्ठ चिकित्सक रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि बरसात के मौसम में H1N1 फ्लू सामान्य बात है। श्री गुलेरिया ने कहा कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है।
1: रियल एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
2: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू। तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दें, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
4: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: दिल कहे रे जिया।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
6: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
1: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
1: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
1: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
1: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
7: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
8: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
7: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
8: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
7: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
9: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
10: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
9: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
10: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर, ग्राम एक डेरवा, तिलंगही मैदान के पूरब, गोपालगंज।
9: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी, गोपालगंज में है।
10: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
11: All right।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67666।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
10: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
5: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
10: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

0: किस तरह हो सकती है मद्रास
1: तमिलियन?
0: ओ इको गल है कविता, तेरी नू है?
2: मैं कह जी साउथ इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब नाल तो तेरी सोहनी है।
1: रजी एनू मिल साडे कृति लवर अन्याय
2: अन्याय भला भी कोई ना हो।

0: कब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया घूम लेनी नु सारा मार्केट देख लेनी नु सारा बाजार कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
1: अरे ना देवर जी कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री कमल श्री कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा दुल्हन के लिए साड़ी सूट पीस लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले

0: गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है, S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
4: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 7545-67666।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
0: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
8: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
9: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
8: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 से 2:00 PM तक।
9: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
10: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो,

0: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
6: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
5: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
6: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
7: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
8: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
7: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
8: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
8: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
8: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
9: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
10: भरोसे वाले से लेंगे,
9: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
10: और कीमत भी।
9: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
11: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
8: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करें खरीदारी।
2: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
6: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड, गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करे 85070-32042 पे।
3: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
12: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, दीनदयाल पोत अधिकरण आमंत्रित कर रहा है संविदा के आधार पर इन पदों को भरने के लिए आवेदन। ड्रेजर सहायक 2 पद, सहायक जल सर्वेक्षक 2 पद, वैज्ञानिक सहायक 2 पद तथा समुद्री सहायक 16 पद। पात्रता, शैक्षिक अर्हता, अनुभव, पारिश्रमिक, संविदा के नियम और शर्तों तथा अन्य विस्तृत जानकारी के लिए देखिए दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट www.deendayalport.gov.in। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विभाग और विषयों के नाम हैं: वाणिज्य कुलपद 12, अर्थशास्त्र कुलपद 3, गणित कुलपद 1, कुल मिलाकर 16 पद रिक्त हैं। शारीरिक शिक्षा निदेशक का एक पद भी रिक्त है। योग्यता, अनुभव, स्क्रीनिंग, दिशा निर्देश और सांकेतिक प्रोफार्मा आदि के बारे में विवरण देख सकते हैं आप कॉलेज की वेबसाइट पर, जिसका पता है www.src.edu, और विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी ये विवरण उपलब्ध है। वेबसाइट है www.du.ac.in। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में ये पद रिक्त हैं: उप CVO एक पद, प्रबंधक सतर्कता एक पद और पर्यवेक्षक सतर्कता 2 पद। विस्तृत विज्ञापन के लिए देखिए वेबसाइट www.spmcil.com। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रक केंद्र में सलाहकार एंटोमोलॉजी का एक पद रिक्त है। इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विस्तृत नियम, शर्तों, योग्यता आदि की जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रक केंद्र की वेबसाइट www.ncvbdc.mohfw.gov.in। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान में इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं: सहायक निदेशक 2 पद, लेखा अधिकारी 1 पद तथा सहायक ग्रेड 1 1 पद। पात्रता संबंधी विस्तृत शर्तों और निर्धारित प्रपत्र की जानकारी आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पर www.ccsniam.gov.in। भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय आमंत्रित करता है इन पदों को भरने के लिए आवेदन: ऑफसेट मशीनमैन, सामान्य, केंद्रीय सेवा, समूह ख, अराजपत्रित। रिक्तियों की संख्या 2 है। आवेदन हेतु पात्रता की शर्तों और निर्धारित अन्य शर्तों की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट caomod.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
13: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
14: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
15: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
14: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
15: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
14: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
16: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
17: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
16: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
17: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
16: हमारा जूनियर ब्रांच सरियावाड़ नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
17: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
18: प्रसाद क्लिनिक।
19: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
18: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम LIC ऑफिस के पास गोपालगंज,
19: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
16: धर्म और अधर्म की सबसे बड़ी लड़ाई एक गाथा जो हजारों सालों से दिलों में जीवित है, महाभारत। पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष, रिश्तों की उलझने और जीवन के सबसे कठिन सवाल, महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि सही रास्ता चुनना आसान नहीं होता। कभी अर्जुन के शस्त्र उठाने के पहले की दुविधा, तो कभी श्री कृष्ण के गीता का उपदेश, हर मोड़ पे नए प्रश्न और उनके जवाब, धर्म, युद्ध और जीवन के असली अर्थ की खोज। सुनना ना भूलें हर शुक्रवार शाम 7 बजे से रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम पर सुनो दिल से।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम, सुनो दिल से।
20: ऑलराइट।

0: का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में
4: जाएंगे। फिलहाल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब से कुछ ही पलों में सुनते हैं समाचार हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय फोरम को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
6: पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है, 10,000 से ज्यादा लेवल क्रॉसिंग गेट्स को भी इंटरलॉकिंग से जोड़ा जा चुका है। इससे ह्यूमन एरर से होने वाले हादसों की आशंका बहुत कम हुई है। साथियों, जब 2014 में हमारी सरकार आई तो करीब 9,000 फाटक ऐसे थे जो अनमैंड थे। इन्हें हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अनमैन्ड क्रॉसिंग की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन पहले की सरकारों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। हमने मिशन मोड में गत 10 वर्ष में इन अनमैन्ड क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया।
5: प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
7: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता।
5: श्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है।
7: मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, जैन शरणार्थियों को वादा कर जाता हूँ कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूँ।
5: गृह मंत्री ने कहा कि अवैध प्रवासन कतई बर्दाश्त न करने की नीति जारी रहेगी और अवैध प्रवासियों को पहचानने, नाम हटाने और निर्वासित करने की प्रक्रिया सख्ती से लागू की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि हर अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी बदलाव को भी सख्ती से रोका जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी संख्या में उपस्थित कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा कानून के विद्यार्थियों तथा अन्य नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि 3 नए कानूनों से देश व राज्य की जनता और अधिक सुरक्षित होगी। उन्होंने आगे कहा कि जुलाई 2024 से ही देश में यह कानून लागू हो गया था, परंतु विगत की TMC की ममता सरकार ने इसे पूर्ण रूप से लागू होने नहीं दिया, परंतु भाजपा की सरकार आते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस कानून को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिलीगुड़ी से अशोक चौरसिया।
5: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिपोर्ट।
9: सरकार चीनी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मंत्रालय ने पाया कि कुछ चीनी मिलों और व्यापारियों द्वारा जमाखोरी की वजह से भी चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक पूरे देश में चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 400 टन का स्टॉक रखने की सीमा तय की है। इसके अलावा थोक उपभोक्ताओं को 1 सितम्बर से 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। सरकार द्वारा राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर में चीनी का उत्पादन सामान्य 3 से 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में चीनी की उपलब्धता और बेहतर होगी। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
5: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वो स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। योजना का उद्देश्य उत्पादन का स्तर बढ़ाकर मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और व्यापक बनाते हुए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सशक्त बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत करना है। इस योजना से भारतीय मोबाइल ब्रांड को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने में भी मदद मिलेगी। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि ये योजना भारतीय स्वामित्व वाले मोबाइल ब्रांड, बौद्धिक संपदा और डिजाइन के विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी।
10: भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट का इकोसिस्टम बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है। MSME और फाइनल प्रोडक्ट्स के बीच में पूरा एक वैल्यू चेन का रिलेशन है। उस तरीके से ये चीज डेवलप हो रही है। पीएलआई केवल एक प्योरली प्रोडक्शन बेस्ड था, इसमें डोमेस्टिक वैल्यू के लिए अलग से, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के लिए अलग से रखा गया है, और साथ ही साथ इंडियन ब्रांड को डेवलप करने के लिए, इंडियन आईपी को डेवलप करने के लिए, इंडियन डिजाइन को डेवलप करने के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए।
5: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि योजना की अवधि के दौरान देश में मोबाइल फोन का संचयी उत्पादन करीब 39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है।
11: दो जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं, उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
12: We are in touch with the authorities that are concerned in this.
5: विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फिलिस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के विकास साझीदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने बताया कि सुश्री रंगनाथन ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फिलिस्तीन सरकार को सौंपी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग $12 अरब का है। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इन प्रस्तावों में सूचना प्रौद्योगिकी, एआई, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब कुछ खेल खबरें। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने पूल डी के अपने अंतिम मैच में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में प्रवेश किया था। भारतीय महिला पहलवान काजल ढोचक ने लगातार दूसरी बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सून को 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 72 किलोग्राम वर्ग में भारत की तनु शर्मा और 62 किलोग्राम वर्ग में सविता ने रजत पदक अपने नाम किया। 68 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए फाइनल में भारत की मानसी लाथेर का मुकाबला चीन की चेंग लिंग से होगा और 59 किलोग्राम वर्ग के रैपिचेस राउंड में कोमल स्पेन की रोजा मोलिना के साथ खेलेंगी। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर दिया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित भारत के उत्तर पूर्वी भागों में भी इस महीने की 24 तारीख तक तेज बारिश की आशंका है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
13: सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 77,541 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 24,252 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में लगभग सपाट रहते हुए 95.71 रुपए पर बंद हुआ।
5: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
14: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India's...
15: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
16: बनिए अपने जिले की आवाज रेडियो रमजिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रमजिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
17: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
18: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
16: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
19: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
16: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
17: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
20: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
21: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
20: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
21: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
20: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
21: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
20: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
21: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
22: सोहन,
0: रोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूं?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
22: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
23: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
24: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
25: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH-27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
24: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन

0: या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
1: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। संत रविदास संकल्प अभियान को लेकर निकली भव्य कलश यात्रा। गुड़ इकाई की स्थापना करने पर मिलेगा अनुदान। 25 अगस्त को होगा सिंहासनी महोत्सव का आयोजन। नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और विद्यार्थी सहयोग पोर्टल से अब होगा समस्याओं का समाधान। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती पर सामाजिक समरसता, समानता, मानवता एवं भाईचारे के संदेश को जन जन तक पहुंचाने तथा अनुसूचित जाति समुदाय के पात्र लाभुकों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से 100% आच्छादित करने के उद्देश्य से बिहार सरकार के द्वारा प्रारंभ श्री गुरु संत रविदास समरसता संकल्प अभियान के तहत आज भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इसका शुभारम्भ शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने थावे के ऐतिहासिक रसू मंदिर से किया। सामाजिक आस्था से जुड़े इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, जनप्रतिनिधि, जीविका दीदी, विकास मित्र और स्थानीय नागरिकों ने उत्साह पूर्वक सहभागिता की। जिलाधिकारी ने बताया कि 27 अगस्त से 15 फरवरी 2027 तक जिले के सभी टोलों में प्रत्येक गुरुवार को विशेष शिविर का आयोजन होगा। इसके माध्यम से अनुसूचित जाति समुदाय के पात्र परिवारों एवं व्यक्तियों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। कुल 22 योजनाओं से पात्र अनुसूचित जाति के लाभुकों को 100% आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए संबंधित विभागों द्वारा पात्र लाभुकों की पहचान, आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता, आवेदन की प्रक्रिया और योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए समन्वित रूप से कार्य किया जाएगा। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने बताया कि कलश यात्रा के माध्यम से अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया गया है। 23 अगस्त से यह कलश यात्रा विभिन्न निर्धारित स्थानों एवं सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचेगी, जहां स्थानीय स्तर पर लोगों को अभियान के उद्देश्यों और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि अभियान को लेकर एक कार्यक्रम तक सीमित न रखते हुए इसे व्यापक जन भागीदारी से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि गुरु संत रविदास के सामाजिक समरसता के संदेश को गांव-गांव और टोले-टोले तक पहुंचाया जा सके। बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत इच्छुक निवेशक गुड़ उत्पादन इकाई स्थापित करते हैं तो उन्हें सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि 6 लाख से 15 लाख रुपए तक का अनुदान है। इसके लिए गवर्नमेंट के ccsbihar.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। गोपालगंज के भोरे, कटिया, विजयपुर एवं पंचदेवरी तथा पश्चिमी चंपारण के ठकराहा प्रखंड के चयनित ग्रामों में इकाइयां स्थापित की जानी है। 5 से 20 PCD क्षमता की लघु इकाई पर पूंजी लागत का 50% अथवा अधिकतम 6 लाख रुपए और 21 से 40 TCD क्षमता की मध्यम इकाई पर 50% अथवा अधिकतम 15 लाख रुपए का अनुदान दे बताया जा रहा है। सिंहासनी महोत्सव की पूर्व निर्धारित तिथि 24 अगस्त 2026 को सोमवार होने तथा उस दिन शिवालयों में संभावित अप्रत्याशित भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा एवं प्रशासनिक व्यवस्था के मद्देनजर महोत्सव की तिथि में समिति द्वारा परिवर्तन किया गया है। आयोजन समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि सिंहासनी महोत्सव का आयोजन अब 25 अगस्त यानी मंगलवार को अपराह्न 3 बजे से 5 बजे तक बैकुंठपुर में किया जाएगा। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि एवं समय के अनुसार महोत्सव में सहभागिता करें तथा प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आयोजन को सफल बनाने में सहयोग करें। गोपालगंज शहर के ही अजय कुमार गुप्ता से नौकरी दिलाने के नाम पर 11,07,500 रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ठगी के मामले में पीड़ित के द्वारा जब आवेदन दिया गया तो इस मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए गोपालगंज के ही रहने वाले अभियुक्त रजनीश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी मूल रूप से पूर्वी चंपारण का रहने वाला बताया जा रहा है। इसे गोपालगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके द्वारा कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार भी की गई है। बताया जा रहा है कि सचिवालय में यह अपने आप को अधिकारी बताकर पीड़ित से रुपए ले लिया था और इनके रुपए ठग लिए थे। अब इसे पुलिस गिरफ्तार कर इस पर आवश्यक कार्रवाई कर रही है। सिद्धवाली।

0: थाना की पुलिस ने एक युवती से छेड़खानी और दुष्कर्म के प्रयास करने के मामले में आरोपी विवेक कुमार पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। यह सिधवलिया के बुचिया निवासी जगदीश मांझी का पुत्र बताया जा रहा है। पुलिस ने आज इसे पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। विद्यार्थियों की शैक्षणिक एवं छात्रावास से संबंधित समस्याओं के त्वरित पारदर्शी एवं जवाबदेह समाधान की दिशा में सरकार द्वारा प्रयास शुरू किया गया है। विद्यार्थी सहयोग पोर्टल छात्र छात्राओं एवं युवाओं के लिए महत्वपूर्ण पहल है। इस पोर्टल का उद्देश्य विद्यार्थियों की समस्याओं को सहजता से प्रशासन तक पहुंचाना तथा निर्धारित समय सीमा में उनके समाधान की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। जिलाधिकारी ने कहा कि विद्यार्थी सहयोग पोर्टल विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के साथ साथ शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम है। विद्यार्थियों को अपनी समस्याओं एवं सुझावों के लिए कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसी उद्देश्य से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। 12 सितंबर को व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता को लेकर लगातार बैठक की जा रही है। जनता से भी निवेदन किया जा रहा है कि जिनके भी सुलहनीय वाद हैं, वे लोग इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने वादों का समापन करवा सकते हैं। इसके लिए आप अपने संबंधित अदालत या राष्ट्रीय लोक अदालत के या जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में पहुंचकर आवश्यक जानकारी ले सकते हैं। आज भी जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर बैठक किया गया और अधिक से अधिक वादों को चिन्हित किया गया और वादकारियों को नोटिस भेजने के लिए आवश्यक निर्देश दिया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर के द्वारा पटना में 4 दिवसीय प्रयोगशाला कौशल एवं उद्यमिता, मृदा, पशु एवं मानव स्वास्थ्य के लिए वन हेल्थ दृष्टिकोण विषय पर व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया। इस 4 दिवसीय कार्यक्रम में विद्यार्थियों को व्यवहारिक प्रयोगशाला कौशल, आधुनिक नैदानिक तकनीकों का तथा उद्यमिता के अवसरों से परिचित कराया गया। माझा थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे 2 प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें एक आरोपी सुरेश महतो और दूसरा रवि कुमार है। ये दोनों लंगटू हाता थाना माझागढ़ के निवासी हैं। इन पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज था। पुलिस ने आज इन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सदर अस्पताल में वैष्णव जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारिता समिति के द्वारा अस्पताल परिसर की सफाई एवं वस्त्र धुलाई का कार्य किया जा रहा है। जीविका दीदियों की सहायता के लिए 2 पर्यवेक्षकों की आवश्यकता है, जिसमें 10वीं पास महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। ऐसे लोग एकडेरवा के जीविका महिला विकास स्वावलंबी सहकारिता समिति से संपर्क कर सकते हैं। आज जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर बैठक की गई, जिसमें जिला सूचीबद्धता समिति की बैठक में जिला शिकायत निवारण समिति के साथ भी बैठक हुई और इसमें निजी अस्पतालों से प्राप्त आवेदन पर भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर गोपालगंज के शल्यम हॉस्पिटल को भी 3 स्पेशलिटी अनाउंसमेंट के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही 40 शिकायतों में 39 का ससमय निष्पादन कर और 1 शिकायत के वापस लिए जाने की जानकारी भी दी गई। बैठक में सिविल सर्जन, जिला पंचायती राज अधिकारी सहित तमाम संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे। आज जिलाधिकारी के जनता दरबार में 32 फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। प्राप्त आवेदनों पर अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ त्वरित राहत देने के लिए टीएम ने सख्त निर्देश दिया। आवेदन लेकर आने वाले प्रत्येक व्यक्तियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनने के बाद निष्पादन में टालमटोल या अनावश्यक विलंब की स्थिति में अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई। डीएम ने कहा कि ऐसी स्थिति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आवेदनों का समय से निपटारा करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने भी अपने कार्यालय में जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना और उसे निष्पादित करने के लिए पदाधिकारियों को निर्देशित किया। इधर थामे थाना की पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत फरार चल रहे एक प्राथमिकी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी उपेंद्र सिंह पिता स्वर्गीय रामानंद सिंह, जो थामे थाना क्षेत्र के चनावे गांव का रहने वाला है। आज इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पिछले 24 घंटों में अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने 29 लोगों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया है और इन सभी आरोपियों को आज न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसमें शराब की तस्करी, कोर्ट के द्वारा जारी वारंट और अन्य कांडों में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इस दौरान पुलिस ने सैकड़ों लीटर शराब को भी जब्त किया है और कई वाहन को भी पकड़ा है। फुलवरिया थाना की पुलिस ने भी 237 लीटर देशी शराब के साथ एक मोटरसाइकिल को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर धोबहा झरही नदी के पास छापेमारी की, जहां शराब बेचने के लिए 237 लीटर देशी शराब को इकट्ठा किया गया था। पुलिस वाहन को देखकर सभी तस्कर फरार हो गए। पुलिस ने घटना स्थल से शराब को जब्त कर लिया है, साथ ही शराब के परिवहन में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है। वाहन मालिक और चालक के विरुद्ध कांड दर्ज कर अब आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर, संत रविदास संकल्प अभियान को लेकर निकली भव्य कलश यात्रा, गुड़ इकाई की स्थापना करने पर मिलेगा अनुदान, 25 अगस्त को होगा सिंहासनी महोत्सव का आयोजन, नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार और विद्यार्थी सहयोग पोर्टल से अब होगा समस्याओं का समाधान। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
2: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
1: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
3: सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: ठक ठक।
6: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
7: अच्छा मिला ही नहीं।
6: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
6: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
9: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
10: तो अब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
11: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
10: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
11: अरे हो बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
10: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
11: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से ही लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
12: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
10: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
13: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
14: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
13: और लाइट बिल के
14: अब 0 रुपए कैसे दूं?
13: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
14: पक्का।
15: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
16: हर घर सूर्य घर।
17: प्रसाद क्लिनिक,
18: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
17: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
18: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
13: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
5: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
13: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
5: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
13: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
19: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
20: एक्सक्यूज मी बॉस, यू हैव अ टेक्स्ट मैसेज।
21: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम के हाल चाल कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूँ। मैं सोनू सो SMS फरमाइश के साथ रेडियो 96.4 FM पे समय 9:22 हो रहे हमारे स्टूडियो गिड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। टेक्स्ट मैसेज के लिए नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने की फरमाइश करना है तो आप लोग तो जानते हैं कि पुराने गाने की फरमाइश इस कार्यक्रम में की जाती है, तो आप पुराने गाने पसंद करते हैं तो बिल्कुल फरमाएं, हम आपकी फरमाइश पूरी करेंगे कुछ ही समय में। और कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अपना भी कार्यक्रम शुरू करें मैसेज टाइप करने का, जिसमें अपना नाम और गाने का नाम, कहाँ से मैसेज कर रहे, तीन चीज़ें टाइप करना है और सेंड करना है हमारे नंबर पे। यहाँ पे पहला मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सर, हम सफरोज अली आकिल टोला से और गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने की फरमाइश कौन सी है ये तो बताएं, ताकि आपकी फरमाइश हम पूरी करें। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सर, हम सफरोज अली गोपालगंज से और गाना सुनना है। तो बिल्कुल आप दो दो मैसेज कर रहे हैं, दो दो नंबरों से, तो एक ही नंबर आप चलाएं ताकि दिक्कत ना हो हमें। और आगे गाने की फरमाइश तो आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि अस्सलाम वालेकुम, सुनो भैया क्या हाल है, मैं मुस्कान गोपालगंज से और मुझे सॉन्ग सुनना है, क्योंकि इतना प्यार करते हैं तुमको सनम। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने की फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हाय मैं कमलेश जी विलेज सव्या फील्ड गोपालगंज से और मुझे सॉन्ग सुनना है, जाने मन तू खूब है, फिल्म जानी दुश्मन का। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, फिलहाल बने रहे हमारे साथ। और सफरोज अली जी के गाने के साथ इस कार्यक्रम की आगाज करते हैं और सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ में, होई आँख नम।

डेडर एमसीएम 94.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का। और अभी अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ में गाने सुन रहे थे सफरोज अली जी के फरमाइश पे। यहाँ पे आगे मैसेज कई पहुँचे हुए हैं, आगे मैसेज पहुँचा हुआ है। नमस्ते नमस्कार सलाम भैया, कैसे हैं बताइएगा। तो बिल्कुल बढ़िया, आप सभी के बीच उपस्थित हूँ और कार्यक्रम को लेकर कार्यक्रम चल रहा है। और इस मैसेज को करते हैं रंजन कुमार, ग्राम शाह शराव, जिला सिवान, बिहार, फिलहाल धनबाद झरिया से। और कहते हैं कि मैं गाना सुनना चाहता हूँ, गाना सुनवा दीजिए निगाहें पिक्चर का। तो बिल्कुल आपका गाना है तो पूरा करने की कोशिश है और बने रहना हमारे साथ। आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया है कि गाना सुनाने के लिए थैंक्स सर, और उसके लिए सॉरी, नेटवर्क कम काम नहीं कर रहा था। ओह तो चलिए आगे से ध्यान रखिएगा, एक ही नंबर चलेगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि आपकी फरमाइश और एक और दो दो नंबर चलते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि हाय सुनो सर, मैं सुरभि गोपालगंज से और मुझे भी आज इस शो से जुड़ गई हूं। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने की फरमाइश तो कल आपकी पूरी हुई है, सो आप बन रहे हैं हमारे साथ। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि नमस्ते सुनो भैया जी, रंजीत कुशवाहा महुआ वैशाली से और हमें गाना सुनना है, कृपया गाना सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाएंगे, फिलहाल स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे बढ़ते हैं, अगली गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं यहाँ पे कमलेश जी की। और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है, जाने मन तू खूबो है, जाने दुश्मन मूवी से। तो सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो एमजीएम 94.4 एफएम पे।

4 FM पे सुन रहे थे इस कमल के शाम को और जानी दुश्मन मूवी से। और यहाँ पे आगे मैसेज कहीं पहुँचे हैं, आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि गाना बजाने के लिए थैंक यू सर जी। चलिए आपके भी धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो नमस्ते भैया, कैसे हैं? मेरे तरफ से सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिए। और मैं रोशनी कुमारी मानिकपुर से, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सोनू भाई नमस्कार, कैसे हैं आप? और मैं रोहित देहरादून से और मैं भी सुबह से जुड़ चुका हूं, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, नाइस सॉन्ग सर, कमलेश जी का गाना बहुत अच्छा है। और इस मैसेज को पहुंचाते हैं सफरोज अली अखिल टोला से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो हाय कैसे हैं आप सर? सॉन्ग बनला के दस गो साथी, बिगड़ला के कोई ना, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला, प्लीज सर बजा दीजिएगा। आज हमारे गांव में जुलूस है, कल मेला है, आइए सब देखने मेला करने। और इस मैसेज को करती हैं मनीषा फ्रॉम अमुआ मौजम से, तो स्वागत है आपकी फरमाइश है, तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सर आज मुझे भी गाना सुनना है, निशा पांडे, तो बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा यदि गाने के फरमाइश करती हैं तो। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं मुस्कान की। और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं सनम। सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी रेडियो रमझम 94.4 FM पर।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
2: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 94.4 FM पे सोशल लाइफ में इस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे मैसेज कई पहुँचे हुए हैं, आगे गाने की भी फरमाइश पहुँचा हुआ है, तो चलिए आगे बढ़ा जाए और अगले गाने की शांत इंजॉय किया जाए। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है डॉक्टर रक्की बाबू अजहर नगर गोपालगंज से, और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है। और अगले मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हमारा नहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल आपका भी दिख रहा है, आपका भी फरमाइश है तो पूरा करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि क्या सुनो भैया, ज़्यादा दिन बाद मैसेज किया इसलिए गाना नहीं बजाए। ऐसी बात नहीं है, आपकी फरमाइश हम पूरी करने वाले हैं। और इस मैसेज को करते हैं रंजन कुमार ग्राम सहसराव जिला सिवान फिलहाल धनबाद झरिया से, और गाने के फरमाइश किए हुए हैं निगाहें पिक्चर का, सावन के झूलों ने हमको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। तो चलिए आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे, कहते हैं कि सभी दोस्त के साथ में बैठ कर सुन रहे हैं शुभम दिलीप अमजद अंसारी और सभी लोग, तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे, कुछ मैसेज देख ले फिर आपके गाने हम प्ले करते हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सुनो भाई कैसे हैं आप, और मेरा एक वीक 4 दिन हो गया है, तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और आपकी फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है अनूप जी। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग, और इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र कुमार जी पोस्ट चौरी गौरैया टोला डिस्ट्रिक्ट उमरिया MP से, तो स्वागत है आपका भी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय हेलो प्रणाम सलाम जी, मेरे तरफ से प्यारे प्यारे लिसनर को प्यार भरा नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और मैं आपके संगीत शो में एंट्री कर चुकी हूँ निशा भारती उछवलिया उंचका गांव प्रखंड से, और हुई आँख नम और ये दिल मुस्कुराया, लजवाब सॉन्ग एंड जाने मन दुख हुए है, सुपर सॉन्ग क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं सनम, मस्त सॉन्ग। तो चलिए आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में निशा भारती। और आगे मैसेज कई आ रहे हैं तो मैसेज को रुकते हैं और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। और एक और मैसेज हमारे पास इधर लिखा हुआ था ऑनलाइन, लिखा गया है कि प्यार वो नहीं जो जान देती है, प्यार वो नहीं जो जान देती है, प्यार वो नहीं जो मुस्कान देती है, प्यार तो वो है जो पानी में भी गिरा हुआ आंसू पहचान लेती है। नाइस सॉन्ग, रोशनी इस लाइन को भेजती है। चलिए आगे बढ़ा जाए, प्यारा लाइन, और अगली गाने की फरमाइश प्ले करते हैं हम और सुनते हैं अगली फरमाइश। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया।

काफी प्यारा सॉन्ग रेडियो जमशेद 94.4 FM पे सुन रहे हैं निगाहें पिक्चर से। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय सुनो जी, गुड इवनिंग, मैं रेखा पांडे सरयावन नंबर 5 से, आज तो मेरा गाना बिल्कुल प्ले कीजिएगा। गाने हैं इससे समझो नारेशम का डोर भैया, राखी का मतलब है प्यार भैया, बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा और समय तो बहुत कम है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सोनू बाबू हम भी जुड़ गए हैं पर लेट है, हारी तो बनता है। बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कहते हैं कि खुशी होता है जब कोई देश प्रदेश से सावन के महीने में या किसी महीने में घर वास्ते हैं। पर निशाना तो कहीं और होता है। बिल्कुल। और कहते हैं कि रोमांटिक सॉन्ग, इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया के करियर ऑप्शन नेपाल बॉर्डर से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मुझे नागमणि मूवी का सॉन्ग सुनना है, बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा, फिलहाल बने रहे हमारे साथ। और इस मैसेज को करते हैं वीरेंद्र कुमार जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि मेरा गाना, तो चलिए आपके भी गाने हम प्ले करते हैं। और इस मैसेज को करती हैं मनीषा फ्रॉम अमो मौजम से, और इनके दोस्त हैं, डेडिकेट करती हैं सिस्टर काजल पिंकी सरिया शनम। और गाने की बोल देती हैं, जब समय होला कमजोर तो हर कोई साथ छोड़ देला हो।

रेडियो एमसीएम 90.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब। और कार्यक्रम चल रहा है एसएमएस फरमाइश का, और यहाँ पे आगे मिसेज पहुँचा हुआ है बिल्कुल नाइस सॉन्ग, और मिसेज करती हैं रोशनी। और आगे गाने के फरमाइश किए हुए हमारे सुरतागढ़ वीरेंद्र कुमार जी हैं, और विलेज पोस्ट चौरी गौरैया टोला डिस्ट्रिक्ट उमरिया एमपी से, और गाने के फरमाइश किए हुए हैं दुश्मन ई जान को हम अपनी जान बना बैठे। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे अनुराधा पौडवाल एंड सबीर कुमार की आवाज़ में। आगे मिसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सुनो भैया बहुत बहुत धन्यवाद गाना बजाने के लिए, और इस मिसेज को किए हुए हैं रंजन कुमार ग्राम सराव जिला शिवान से। और आगे मिसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि आज के समय के दौर के मुताबिक सही सॉन्ग मनीषा का, पर कुछ लोग हैं कि दुख में साथ नहीं छोड़ते हैं, और बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि प्लीज़ मेरा भी सॉन्ग। तो एक एक करके सबकी फरमाइश पूरी करने की कोशिश है, आपकी भी फरमाइश हम पूरी करें, कोशिश है मेरा। आगे बढ़ते हैं और अगले गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश।

0: नगीना, क्या तुम्हारे यहाँ मेहमानों के रास्तों पर फूल बिछाए जाते हैं?
1: हर मेहमान के लिए नहीं, कुछ खास मेहमान के लिए।
0: मेहमानों से इतना मोह अच्छा नहीं, मेहमान हमेशा

काफ़ी प्यारा सॉन्ग रेडियो एमजीएम नेटफंड 4 FM पे सुन रहे हैं आप सब। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सर, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, मेरा नाम है आज़ाद अंसारी। तो बिल्कुल बढ़िया, आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज लिखे हुए हैं कि दिल के टुकड़े टुकड़े गाना सुनना है। मेरा नाम है आज़ाद अंसारी, मोहनपुर से जुड़ चुका हूँ। आज बहुत दिन के बाद मुझे गाना सुनना है, तो आज तो नहीं सुना पाएंगे क्योंकि काफ़ी समय निकल चुके हैं और सप्ताह का आज अंतिम दिन भी है। तो आगे कल कोशिश रहेगा, अगले सप्ताह, कल तो नहीं, अगले सप्ताह। और आगे मैसेज पहुंचा और लिखा गया है कि थैंक यू सो मच सर सॉन्ग प्ले करने के लिए, आपको भी धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि गाने का बोल है तेरी नज़रों से कुछ ऐसा जादू किया। तो इस मैसेज को पहुंचाने वाले अनूप जी हैं, तो कोशिश तो है लेकिन बहुत कम समय है। आगे बढ़ते हैं फटाफट और अगले गाने के प्ले करते हैं। और इस गाने की फरमाइश करती हैं निशा पांडे, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है हम तुमको चुरा लेंगे। तो चलिए आपकी फरमाइश प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं हम सभी रेडियो रमझम 94.4 FM पे।

काफी प्यारा सॉन्ग रेडियो रेम छीम 94.4 FM पे सुन रहे हैं आप सब। और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और यहाँ पे समाप्ति का समय भी हो चुका है। और यहाँ पे आगे कई मैसेज और कई गाने के फरमाइश है, तो कई तो नहीं पूरा कर पा रहे हैं। अंतिम गाने प्ले करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। आगे मैसेज पहुँचा और लिखा गया है कि थैंक्स सर मेरा गाना बजाने के लिए। चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो रेम छीम सुनने के लिए। और आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की फरमाइश यहाँ पे रेखा जी की तरफ से पहुँचा हुआ है। और गाने की फरमाइश से इसे समझो ना रेशम का डोर भैया। तो चलिए अंतिम गाने आप ही का रहेगा, और कई मैसेज हमारे पास इधर उधर हो रहे हैं गाने को लेकर, तो कई तो नहीं पूरा कर पा रहे क्योंकि समय जो है समाप्ति का हो चुका है। सो आज के लिए बस इतना ही। आप सब सुनते रहें रेडियो रेम छीम 94.4 FM, जो हमें सच कहता है सुनो दिल से। और आज थोड़ा सब्र करें, मंडे को कोशिश करें मैसेज करें, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी भी फरमाइश हम पूरी करें। फिलहाल नमस्कार।

0: जाओ।
1: अली बेटे, अली बेटे, अली, अली जल्दी करो, इसे अस्पताल ले चलते।
0: नहीं शांति नहीं, लगता आज मेरे जाने का वक्त आ गया। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ यार बहन, अपने इस भाई को रागे नहीं बांधूंगी।

0: मेरे भाई।
1: तू जो है। आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। एक

0: रात के 11 बज चुके हैं और रेडियो रंजन पर समय हो चुका है रात्रि समाचार का। आइए सुनते हैं पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में ये न्यूज।
1: आय रखने के लिए लगातार कई कदम उठा रहा है और सुधारों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों की नीति लोगों को अभाव में रखने की थी, ताकि वे बुनियादी जरूरतों के लिए भी सरकार के सामने हाथ फैलाने को मजबूर रहें। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार केवल नियमों में बदलाव नहीं कर रही, बल्कि नियमों से जुड़ी पूरी नीति में बदलाव ला रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाला नशा मुक्ति केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है, जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता।
1: श्री शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है, जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वह स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगले महीने की 5 तारीख को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इन शिक्षकों का चयन जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 चरणों की चयन प्रक्रिया के जरिए किया गया है। पुरस्कार के लिए चुने गए 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से हैं। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की तेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज Read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has said India is being seen as a bright spot of growth throughout the globe, even as the world has many concerns regarding growth and resources are getting weaponized. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi this evening, the Prime Minister said India continues to take several steps to ensure continued growth momentum and reforms are commitment of his government.
4: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों. रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा. लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है.

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो
3: हेलो
4: हेलो
3: हेलो। नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और समय हो गया हेलो माई चॉइस कार्यक्रम का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
5: हेलो
6: हेलो।
5: हाँ नमस्ते सर। मैडम
6: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो जिमझिम 90.4 FM में।
5: भारती मैडम बोल रहे हैं?
6: नहीं,
5: मनोरमा मैडम।
6: जी जी।
5: अच्छा, मैं राजेश सिवाजन बोल रहा हूँ गुजरात से।
6: जी जी, कैसे हैं आप?
5: बढ़िया हूँ, अपना बताइए।
6: जी मैं भी अच्छी हूँ।
5: पहला ही कॉल लग गया मेरा।
6: जी जी, पहला ही कॉल है आपका।
5: ठीक है मैडम, मैं तो भोजपुरी गाना ही सुनता हूँ। कोई गाना सुना दीजिए।
6: कौन सा बता दीजिए?
5: सावन का।
6: सावन का कोई भी?
5: हाँ कोई भी चलेगा, भोजपुरी होना चाहिए।
6: जी जी। और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
5: हाँ, आपको सभी लोग को सुनाना चाहते हैं, जितने भाई लोग बहनों लोग सब सुनते हैं सभी लोग।
6: ओके, फिर वैसे क्या हो रहा था?
5: बस ऐसे ही, मैं सोचा कि आज लगाता हूँ कॉल। हेलो, तू मैं तो जुड़ता नहीं हूँ, बस खाली फरमाइश नहीं जुड़ता हूँ इसमें।
6: क्यों, इसमें क्यों नहीं जुड़ते हैं आप?
5: बस क्योंकि बस एक कॉल लगा नहीं जानता हूँ, बाकी तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो बस इसे सुनते रहता हूँ खाली।
6: कोई बात नहीं है।
5: मोबाइल वाला एक और है तो चॉइस वाला, तो उसमें भी तो

0: है अभी तो फोन ही नहीं उठाते हैं आप लोग।
1: जी, उसमें फोन में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, कॉल तो आ रहा है बट उठ नहीं रहा है।
0: चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं फिर ट्राई करेगा जब सुनेगा।
1: जी तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ठीक है, थैंक यू
1: जी, वेलकम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो,
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्ते।
1: नमस्ते,
0: गोपाल बोल रहा हूँ।
1: जी जी, कैसे हैं गोपाल जी?
0: बढ़िया है, घर पर ही है अभी तो।
1: अच्छा जी, वैसे आप कहाँ से बोल रहे हैं?
0: जिला गुना।
1: अच्छा अच्छा, तो क्या हो रहा था अभी?
0: अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, अभी तो थोड़ी बारिश हो रही थी तो घर पर ही है।
1: अच्छा जी, बारिश हो रही है?
0: हाँ बारिश हो रही कम कम। और क्या,
1: खाना वाना हो गया आपका?
0: खाना तो अभी नहीं हुआ है, अभी तो हम खेत पर से आए हैं और घर पर ही है अभी। और गाना सुनना है?
1: बता दीजिए।
0: सुनना है आंदोलन फिल्म का, आएगी हर पल तुझे मेरी याद।
1: क्या गा के दो लाइन सुना सकते हैं मुझे?
0: जी, आएगी हर पल तुझे मेरी याद, आयुष मुलाकात कुमार सानिवाल का ही नीचे भाई।
1: ओके, अब ये गाना डेडिकेट भी करना।
0: डेडिकेट सचिन साहू जी है मक्सूनगढ़ से, ज्योति साहू जी है, नरेश प्रजापति जी है, इनके लिए।
1: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: कर दीजिए।
1: सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: The phone ghandi bajti hai to kehte hain hello.
5: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो।
7: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: मनोरमा जी।
6: जी जी,
7: आज तो पहले बेर में लागबे क्या बात हो
6: जी?
7: आज पहले बेर में लागबे
6: ना, एक पहले कॉल आ चुकल बा
7: ना। ना हमार हमार।
6: अच्छा जी,
7: दिल से प्रणाम।
6: प्रणाम।
7: कैसा बनी?
6: जी जी बिल्कुल बढ़िया बनी, आप बताए।
7: बस हम ठीक है बनी, चाय पियो रही।
6: अच्छा,
7: देखने की टाइम हो गई, हाजिर लगाई ली
6: जी। कहे ना
7: सब।

0: के संग बारिश के कौन हो?
1: बारिश तो मतलब हल्का धूप निकल रहा। वैसे आप नाम बता दी।
0: गणेश कुमार मिश्रा दिल्ली।
1: अच्छा,
0: फरमाइश ले ली।
1: बता दी।
0: रितेश पांडे के रिकिया के मारल लोग दूरे से चिन्ह जाला।
1: सुना
0: सकता नहीं सुना सकता ऐसे ही गाना हम ज्यादा सुनने नहीं थी। आज याद आई लोग कहने के यही फरमाइश दिया जाओ।
1: अच्छा अच्छा, कोनो बात नहीं थी। और ये गाना क्योंकि सुनवाए के भी चाहता नहीं।
0: मनोरमा मैम के, भारती मैम के, सोनी मैम के और जितने नाम से जानने वाले हैं सब सुन लेंगे। नाम लिया जाए
1: का
0: मोटरवा भी चाय पिए तो हमने सके मोबाइल में अलार्म सेट हो गए ना। शो के भी रिकॉर्डिंग के भी अलार्म सेट हो गए तो आदमी कोई भी काम करी तो अलार्म बाज जाला। तो दो चार पाँच मिनट लेट हो गई तो गाना के चॉइस कर लिया जाओ क्या गाना दिया। पाँच सात मिनट लेट हो गए लगनी तो पहले ही बेर में लग गए। आज माने के पड़ी कने कैसे कैसे आज पहले बेर में लग गए।
1: आज के दिन अच्छा बा।
0: आज के दिन अच्छा बा, पूरा दिन अच्छा चले तब तो।
1: जी बिल्कुल।
0: चलिए फिर हमारी फिर शामिल करे
1: प्ले करते हैं राहुल गाना। सबके साथ रेडियो 90.4।

0: हेलो
1: जी, बहुत स्वागत है रेडियो रिंग 90.4 FM में।
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: हम घर से मैम बोल रहे हैं?
1: नहीं,
0: फिर कौन मैम जी?
1: जी मैं मनोरम।
0: अच्छा, मैं अहमद अली सारे आवाज नंबर 1 से बोल रहे हैं।
1: अच्छा, क्या हाल चाल है आपका?
0: ठीक है मैम, अपना बताइए।
1: अभी बढ़िया हूँ।
0: तबीयत पानी अच्छा है ना?
1: जी जी बिल्कुल।
0: सब लोग अच्छा है ना?
1: जी जी, यहाँ पे भी सब कोई अच्छे, आप ठीक है ना?
0: हाँ हाँ, हम लोग सब मस्त हैं, बिंदास।
1: जी जी,
0: आज हमको सॉन्ग सुनना है चांदनी मूवी से।
1: जी,
0: वो गाना है ना, आ मेरी जान मैं तुझ में अपनी जान भर दूँ।
1: क्या आप दो लाइन गा के बता सकते?
0: तेरे कदमों में अपनी जहान रख दूँ, आ मेरी जान मैं तुझ में अपनी जान भर दूँ, है ना गाना?
1: जी जी। और ये गाना आप किसी को डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
0: जी मैम, सबसे पहले तो आपको और भारती मैम को, कमरान भाई को, राघव जी को, दिलीप भाई को, और जो भी रिमझिम जहाँ से भी सुन रहे हैं सभी को, और हमारे तरफ से सभी को जुम्मा मुबारक। ये गाना मैम कब बजेगा? आज बजेगा या कल?
1: जी जी, पूरा कोशिश रहेगा कि आज ही बजे।
0: प्लीज, आज जुम्मा है इसलिए अगर बजा देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी।
1: जी जी बिल्कुल।
0: ठीक है मैम, सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ।
0: थैंक यू मैम गाना सुनाने के लिए।
1: सुनते रहिए रेडियो रिंग 90.4 FM।
0: थैंक यू।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello,
4: hello, hello, hello, hello.
5: तो दोस्तों ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिम 90.4 FM में।
7: जी नमस्ते, बसरा से बोला जी बोलते हैं।
6: नमस्ते,
7: क्या समाचार?
6: जी बढ़िया बा, अपन बताइए रहुआ कैसन बानी?
7: ठीक बानी।
6: वैसे नाम क्या बताइनी है?
7: जी
6: जी अपन नाम बता दिए और एड्रेस
7: बताओ ना। बसरा से बोला जी बोलते नहीं,
6: आवाज वो कट के आवाता।
7: आवाज कट के ऐसे आवाता की जो स्पीकर चालू लाख रूपये बात है ना, मोबाइल खराब हुआ।
6: अच्छा
7: जी, यही से आवाज कभी कभी कटेला। आवाज
6: जी जी एक बार और बता दी, कहाँ से बोला था नहीं?
7: हम पचफेरा से बोला जी बोलते हैं। हम हमेशा फोन करी ने ध्यान से नहीं है समाचार।
6: बढ़िया बात है, ठीक बानी ना?
7: हाँ हाँ बढ़िया बानी। भारती बोलते नहीं
6: ना?
7: मनोरमा जी।
6: जी जी
7: जी, सेम दोनों इनके सेम आवाज में, उसे आदमी पहचान में दिक्कत हो जाता।
6: अच्छा जी, खाना हो गया?
7: हाँ हाँ खाना होना है, तो मैया के कुल कराई रही चढ़ाई कर लो तो थोड़ा लेट हो गई हो, लेकिन खाना खा के आराम करते नहीं और फोन लगाओ तो रहिए फोन धरत ना रहा धले तो बात करते नहीं। गाना सुना दी रक्षाबंधन के अंकुश रजत के गाना आते बहनी तुहरा के कभी ना भुलाए, ये गाना बजा दी लास्ट वाला कड़ी में बाजे सजल रहो भैया बहनी के प्यार समय बार बार आवला, यही गाना में लास्ट में भाई।
6: अच्छा, और ये गाना क्योंकि सुनवाई के लिए चाहते हैं?
7: अरे वह सुने पूरा टीम सुनी रेडियो रिमझिम जितना भी जुड़ल बदना सा कोई सुनी हम वो सुने कब आजी
6: ये गाना राउत शाम की बाजी।
7: आज शाम को बज गई
6: जी जी, अगर आज ना भी बाजल तो कल तक बची बाजी, कहा की बहुत सारा दर्द है तो कहीं आगे पीछे हो सकता था।
7: जी हाँ कोई बात नहीं, बात जारी चाहिए।
6: जी
7: जी
6: करता नहीं।
7: जी जी नमस्ते।
6: नमस्ते, सुनत रही सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत स्वागत है रेडियो रिंगू 90.4 एफएम में।
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: हम भारती मैम बोल रहे हैं?
1: नहीं,
0: फिर कौन मैम जी?
1: जी मैं मनोरमा।
0: अच्छा, मैं अहमद अली सारे आवाज नंबर 1 से बोल रहे हैं।
1: अच्छा, क्या हाल चाल है आपका?
0: ठीक है मैम, अपना बताइए।
1: अभी बढ़िया हूँ।
0: तबीयत पानी अच्छा है ना?
1: जी जी बिल्कुल।
0: सब लोग अच्छा है ना?
1: जी जी, यहाँ पे भी सब कोई अच्छे, आप ठीक है ना?
0: हाँ हाँ, हम लोग सब मस्त हैं, बिंदास।
1: जी जी,
0: आज हमको सॉन्ग सुनना है चांदनी मूवी से।
1: जी,
0: वो गाना है ना, आ मेरी जान मैं तुझ में अपनी जान भर दूँ।
1: क्या आप दो लाइन गा के बता सकते?
0: तेरे कदमों में अपनी जहान रख दूँ, आ मेरी जान मैं तुझ में अपनी जान भर दूँ, है ना गाना?
1: जी जी। और ये गाना आप किसी को डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
0: जी मैम, सबसे पहले तो आपको और भारती मैम को, कमरान भाई को, राघव जी को, दिलीप भाई को, और जो भी रिमझिम जहाँ से भी सुन रहे हैं सभी को, और हमारे तरफ से सभी को जुम्मा मुबारक। ये गाना मैम कब बजेगा? आज बजेगा या कल?
1: जी जी, पूरा कोशिश रहेगा कि आज ही बजे।
0: प्लीज, आज जुम्मा है इसलिए अगर बजा देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी।
1: जी जी बिल्कुल।
0: ठीक है मैम, सलाम अलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ।
0: थैंक यू मैम गाना सुनाने के लिए।
1: सुनते रहिए रेडियो रिंगू 90.4 एफएम।
0: थैंक यू।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिम 90.4 FM में।
6: जी भारती जी से बात हो रहा है ना?
5: नहीं
6: जी,
5: मैं मनोरमा।
6: मनोरमा जी नमस्कार।
5: नमस्कार,
6: हम दिलवेश कुमार शर्मा हम गिरना मठ से बोल रहे हैं।
5: जी जी, कैसे हैं आप?
6: हम तो अच्छे हैं, आप वहाँ बताइए।
5: मैं भी बढ़िया हूँ।
6: खाना पीना हो गया है?
5: हाँ हो गया है। और आपका?
6: और भी हो गया है।
5: चलिए बढ़िया।
6: तुमको गाना सुनना है?
5: बता दीजिए।
6: सावन आया, ये सॉन्ग सुनना है।
5: ओके, और ये गाना सुनवाना भी है किसी को?
6: आपको, भारती जी को, सोनी मैम को, सनु सर को, और आनंद शर्मा जी प्रसाद हैं, और मनोज शर्मा भी हैं, और सदर भैया भी हैं, और विपिन मास्टर कलर भी हैं, और निर्मला जी हैं, और गुड़िया जी और सीता जी हैं, और जितने रिमझिम सुनने वाले हैं सबको साथ, और अनिल जी हैं सबसे, सब लोगों को साथ सुनना है।
5: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना।
6: जी नमस्कार।
5: नमस्कार, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगिंग 90.4 एफएम में।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: कौन बोल रही है? घटी है?
0: नहीं,
1: मनोरमा जी।
0: जी
1: बोल रहे, बहुत बिजी था उसी समय लगाते लगाते सर लगा जाते।
0: जी जी, क्या नाम बता दीजिए अपना?
1: हमारा नाम पप्पू ठाकुर है, रोहिंग बाजार गोपालगंज से बोल रहे हैं।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: रोहिंग खतरे थाना गोपालगंज।
0: अच्छा,
1: बोल रहे सॉन्ग सुनवा दीजिए।
0: बता दीजिए।
1: फिल्म का नाम है कटी पतंग और गाने का बोल है प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता।
0: और मूवी नेम क्या बताया है?
1: कटी पतंग। राजेश खन्ना का फिल्म आया गया है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.
2: Hello.
1: Pick it up, pick it up.
2: Hello.
1: Now pick your phone up.

0: दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: जी मैम, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजी 90.4 FM में।
2: जी सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, नया रेलपुर से।
1: जी जी, कैसे हैं सुनील जी?
2: बस ठीक है मैम, बस बैठे हैं। हमारे यहाँ बारिश चालू है मैम, आपका वहाँ का मौसम पे क्या चल रहा है?
1: मौसम इधर तो लग रहा है, इधर भी की बारिश आएगा।
2: तो बस बारिश हो रहा मैम, तो हम बैठे थे अभी फ्री, तो हम सोचे अभी टाइम हो गया तो लगाते फोन, फोन भी लग गया मैम।
1: तो फिर
2: आज एक फरमाई करने गाने के बोल है कूलो सा चेहरा तेरा, और सुनवाएंगे कितने रेडियो रेंजिन दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
1: ओके, क्या आप दो लाइन गा के सुना सकते हैं?
2: जी मैम, गाना हम नहीं गा पाते हैं, तो यही कूलो सा चेहरा तेरा यही सुनवा दीजिएगा, और सुनवाएंगे कितने रेडियो रेंजिन दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
1: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
2: धन्यवाद मैम, थैंक यू।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकू 90.4 FM में।
0: हाँ जी मैडम, क्या हाल? हाँ मैडम
1: जी, बढ़िया। बा अपन बताएं।
0: चल
1: ही रहे कि चाहिए, वैसे अपन नाम बता दें।
0: नाम साहिल,
1: कहाँ?
0: बंजारी से, भोपाल।
1: अच्छा, चलिए। तो खाना वाना हो गया? चलिए बढ़िया बा। वैसे आज की फरमाइश का बा बता दें।
0: बात जाए ना,
1: बात जाए
0: गाना बात बजा दीजिए, आप अपना पसंद बजा दीजिए भोजपुरी वाला।
1: अच्छा, हम अपन पसंद।
0: मतलब आपके पास हम कर
1: जी जी मतलब कैसा गाना सुनूंगा, जैसे कि भोजपुरी या फिर हिंदी?
0: भोजपुरी
1: गाना डेडिकेट भी करेगी चाहत हूँ।
0: हाँ डेडिकेट कर चाहत
1: हूँ।
0: अच्छा,
1: शाम के 5 से 7 के बीच?
0: 5 से 7।
1: हाँ वैसे अगर आज ना सुन पाते हैं तो कल तो जरूर मिली सुनेंगे। यही टाइम
0: को बजे?
1: 5 से 7 के बीच।
0: खाली 5 बजे रिपीट ना चलेगा?
1: रिपीट भी चलेगा।
0: 9 से 11
1: के बीच?
0: अच्छा,
1: फिर आप गाना प्ले करते नहीं?
0: हाँ एकदम एकदम
1: जी। सुनते रहें सबके साथ रेडियो रिंगजिम 90.4 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
5: सलाम अलैकुम मैम।
6: वालेकुम अस्सलाम।
5: रेशमा बोलते हैं, पठानपुर से।
6: जी जी, कैसन बानी?
5: ठीक बानी, अपन बताएं।
6: जी हमारे भी बढ़िया बा।
5: नासा सफल बानी।
6: और भइल की ना?
5: जी मैडम जी, हमने को हो गयी।
6: चली बढ़िया बा।
5: हाँ तो बेटो, ठीक बानू मैडम जी?
6: जी बोली,
5: ठीक बानी नू?
6: हाँ हाँ, ठीक बानी एकदम।
5: तो बात भर गए घर तो बड़ी तारीफ होते रहे।
6: अच्छा जी।
5: हाँ कहते मैडम जी की आवाज बड़ी अच्छा बा, बड़ा अच्छा बन टाइम तो गया गाना सुनवा दनी।
6: कहाना की रहुआ गाना जन बतले रही तो वैसे को मिलत ना रुआ रहुआ, तो नाम धके को गाना बतावी ना।
5: हाँ
6: तनी दिक्कत हो रुए तो जन बुझाऊ तन लगा दे कने त्रास।
5: गाना कोई कह रहा है बाबू कर गाना तर मेरे तो हिसाब से बजा दल बड़ी हो।
6: जी जी।
5: हाँ हाँ,
6: कभी सुनवे न गाना?
5: हाँ सुन सकते, सुने भाई भतीजे रहुआ भाभी रही हमू रही छत पर बैठ रहे गाना बाजत रहे मोबाइल में जो सुना ये तो रेडियो रख ले बानी और छोटका मोबाइल लेके गए रहे तो उसमें हेडफोन लगा रहे बाजत रहे।
6: तो घर कहिया गई बिहान भैले?
5: हाँ बिहान भले आ गई। सोमवार के दिन कॉल कर रहे
6: हो?
5: दिन शाम को तो गाना सुन रही हूँ। मंगल के दिन चल रही 3-4 बजे।
6: तब तो रहे ना जल्दी का रही
5: है लड़का पढ़ा ला तो 1-2 दिन रहे नी बस चलिए ज्यादा दिन ना रहे।
6: तो बात
5: हाँ ना, तो फिर स्कूल में लड़का बोली सुन लो
6: पढ़ लो जरूरी बा।
5: हाँ पढ़े ला तो काम फिर बढ़े रहो तो कथी बुआ चल जाए भले मत रहिया तू गई
6: फोन
5: ला के गाना सुनवा कितना है मैडम जी गाना सुनाए। आज की फरमाइश काले से इंतजार जी होता है जगह और खबरी बा
6: बताई।
5: आज माजिद भाई बन नौसाद उनके कल को लड़की भाई बड़ी,
6: तो हमारा तरफ से उनके बहुत बहुत बधाई बा बोल रहे।
5: ठीक बाजी, तो वे कभी सोचे तो फोन लागे ये तो गाना सुने के बस हो तो हो। कौन सीन के फिल्म के वो गाना बा? खियाई भौजी हलुआ लक्ष्मी जी आईनी, खियाई भौजी हलुआ लक्ष्मी जी आईनी, बोलाई भौजी सोनारा लक्ष्मी जी आईनी। ये गाना है मैडम जी?
6: जी रुआ तो बड़ा अच्छा गावे नी।
5: अच्छा कहाँ गावनी मैडम जी, थोड़ा सा ट्राई करे नी।
6: ना ना बहुत बढ़िया गावे नी रुआ।
5: ऐसे भी हम मेरे ये सब गाना तो कम गाव गाने नी, ये सब बिया साथी गीत ना होला ये सब ज्यादा गाव रही।
6: चलिए तो हम और भारती जी आओते
5: आए जरूर आए
6: पार्टी में
5: आएंगे छठियार के दिन रौरा आए पार्टी में मैम सब कोई आए गाजर और बाजी मिठाई बटाई ना।
6: जी जी बिल्कुल, हमने को पहुँचा था सौ दिन।
5: हाँ गाने की ना मैम गाना होगी तो
6: गाना तो ना गाए नहीं हूँ।
5: बिया शादी गीत गाओ था ना?
6: जी
5: अरे बिया शादी वाले गीत गाओ था ना रोगा?
6: ना ना गाना हम के ना।
5: हाँ तो सोर खूब गाए नहीं।
6: चलिए ठीक बात, तो कभी टाइम गवावे नहीं रहूगा एक दिन
5: एकदम गवाए। बिया शादी के लड़की के गीत कहीं लड़का के गीत कहीं जाए कहीं सब गाने।
6: जी जी, तो चलिए प्ले करते नहीं गाना, अगला आदमी के फोन आता।
5: जी मैडम जी, सब कोई इंतजार है।
6: जी सुनत रहे सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4।

0: हेलो मैडम, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
0: जी मैं मनान बोल रहा हूँ कपूरपुर से।
1: जी जी, क्या हाल चाल है?
0: बहुत हाल चाल तो ठीक है, और बहुत दिनों के बाद आज कॉल में किया हूँ।
1: जी जी,
0: तीन चार प्रोग्राम निकल जाने के बाद आज याद आया है।
1: अच्छा, तो कहीं गए थे क्या?
0: नहीं गए थे, नहीं कुछ उलझन में, वैसे ही दूसरे काम में पहचाना। अच्छा। रिमझिम याद नहीं आ रहा है इसी सब मामले में, तो आज हमको याद आया है, तो करीब दो मिनट से लगा रहा हूँ तो हमारा लग गया, तो गाना वही सुनना है हमको, साथ और डूबे इस दुनिया में आज मैं अपने जो दिन, है ना?
1: एक बार और बता दीजिए, अभी आपके पास शोर हो रहा है क्या?
0: जब नहा रहा है, जुम्मा है ना?
1: जी जी।
0: हाँ, तो इसीलिए वो बाथरूम में नहा के चिल्लाते हैं तो।
1: अच्छा,
0: है ना? हाँ, तो वही आवाज आ रहा है।
1: चलिए कोई बात नहीं।
0: हाँ, तो वही गाना सुनवाना है मैडम, सातों जुबे इस दुनिया में।

0: जी
1: हाँ, कोई ये मामूली है, लेकिन उसमें जो बचा है ना उतना ही टाइम पे आज उसी टाइम पे गाना आया और अच्छा लगा है। आप तो अब बहुत फेमस हो गई हैं पहले से, इसीलिए नाराजगी है ना?
0: नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं
1: है। हर चीज में आप फेमस हो गई हैं, अब सोनी जी को अपील कर रही हैं आप। हाँ, तो इसके लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत दुआएं हैं कि आप ऊंचाई पकड़ते जाएं, अच्छा रहेगा। सोनी जी का भी प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा है, और किसी डॉक्टर से सवाल जवाब करती हैं तो वो भी सुनने में बहुत अच्छा लगा है ना
0: जी,
1: उनका। हाँ, तो मैं सुनता हूँ कभी, तो बहुत अच्छा लगा है, तो सवाल जवाब करने में आते हैं, उनका प्रोग्राम भी बहुत अच्छा जा रहा है उनका भी
0: जी।
1: तो अब इसमें आप वो तो आते नहीं है आपके प्रोग्राम में, ये सब आप ही अटेंड कर रही हैं, कभी उनको भी मौका दीजिए कि हमको मतलब उनसे भी बात करने का मौका मिल जाए। आज एक और मैम आई थी ना, वो अब नहीं आती है क्या?
0: जी आती हैं।
1: देखो तो प्रोग्राम में अब नहीं आती हैं,
0: वो भी आती हैं।
1: हाँ, तो उनका आवाज सुनना हमको बहुत दिन हो गया, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है, ठीक है मैडम, तब हम भी अब चले अपने काम में, है ना। हाँ, तो गाना सुनवा दीजिएगा मैडम।
0: ओके, तो प्ले करते हैं गाना आपका।
1: जी
0: जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी। सात अजूबे इस दुनिया में, आठवीं अपनी जोड़ी। अरे थोड़े से भाई टूटे ना।

अपना जो कुछ है सब आधा आधा है, दुख सुख के हम साथी है ये वादा है, अपना जो कुछ है सब आधा आधा।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ding ding bajti hai to kehte hain hello.
4: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो,
6: नमस्कार मैम।
5: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: आपको भी
5: नाम बता दीजिए अपना।
6: हम ओम साइंस में बोल रहे हैं, बंजारे रोड पुलिस स्टेशन के सामने, गोपालगंज से। राघव भाटी मैम?
5: नहीं,
6: आपका मैम नाम?
5: मनोरमा।
6: मनोरमा, थैंक यू मैम आप नाम बताने के लिए, आपको दिल से थैंक यू। आज तो बहुत दिक्कत हुआ फोन लगाते लगाते।
5: अच्छा जी,
6: कम से कम 200 बार कॉल लगाए तब जाकर लगा।
5: चलिए कोई ना, आप लग गया।
6: आज आपसे पहली बार बात हो रही
5: है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि पहली बार आपसे बात कर रही हूँ मैं।
6: जी जी, भारती मैम से एक दो बार हुआ है कॉल पे बात। आज
5: अभी क्या हो रहा था
6: मैम? अभी तो आप सब काम धाम छोड़ के आप कॉल से कॉल लगा रहे थे।
5: अच्छा।
6: कम से कम 10-15 मिनट से कॉल लगा रहे थे, हम 200 बार कॉल लगाए थे अभी जाकर लगा।
5: अच्छा जी, तो फिर बता दीजिए फरमाइश।
6: आज दोस्ती पिक्चर का कोई भी सॉन्ग चला दीजिएगा।
5: डेडिकेट भी है
6: पहले तो आपको, क्योंकि पहली बार बात हुई है। और हमारे जितना रेडियो दोस्त सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम, उन सभी लोगों का साथ में सुनना चाहता हूँ, सभी आरजी को साथ में सुनना चाहता हूँ, हमारे ओम साई टेलर राघव जी के तरफ।
5: तो फिर लेकर देंगे ना आपका।
6: थैंक यू मैम,
5: वेलकम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: थैंक यू।

0: हाँ हेलो,
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: मैं मोहम्मद यूसुफ सिपाया ढाला से बोल रहा हूँ।
1: क्या हाल चाल है आपका?
0: हाल तो बढ़िया है, बहुत दिन थोड़ा व्यस्त थे, कहीं बाहर गए थे इसलिए फोन नहीं कर रहे थे। हाँ बाहर में थे कहीं। और सब सुनाइए, सब बढ़िया है? मौसम तो ठीक हो रहा है।
1: जी जी
0: हमको गाना सुनवाइएगा, सावन के महीना पावन करे तो।
1: ओके
0: हाँ, इसी को सुनवा दीजिएगा।
1: क्या आप दो लाइन गा के बता सकते हैं?
0: बता सकते हैं, सावन के महीना पावन करे सोर, जियरा रे झूमे जैसे वैसे मनवा नाचे मोर।
1: ओके, और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
0: अपना मेडिकल हॉल के सभी स्टाफ और गुमनिया के अरशद अली हैं और कन्हैया प्रसाद हैं गुमनिया के, उनको सुनवाना चाहता हूँ।
1: ठीक है, प्ले करते हैं गाना आपका।
0: हाँ ठीक है, ठीक
1: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone dinde bajti hai to kehte hain hello.
5: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। मैं आप सभी को बता दूं, यदि आप सभी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो जी, नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिम 90.4 FM में।
7: कैसे हैं? बहुत दिनों बाद बात हो रहा है आपसे।
6: जी जी, मैं बढ़िया हूँ, अपना बताइए, आप कैसे हैं?
7: जी हाँ जी, अच्छे हैं, मनोरमा मैम बोल रहे हैं।
6: जी जी,
7: हम एक हफ्ते से ट्राई कर रहे हैं, अब लगा बहुत मेहनत किए हैं आज।
6: अच्छा जी
7: जी, बहुत सब बढ़िया
6: है। जी सब बढ़िया है, आप अपना नाम बता दीजिए।
7: जी हम सफर जली बोल रहे हैं।
6: अच्छा, तो क्या हो रहा था?
7: जी मैम, 11 बजे से आपके पास कॉल लगा रहे थे, मेहनत करते हुए सब कुछ छोड़ के, लग गया।
6: जी बहुत मेहनत करना पड़ता
7: है। जी मैम, कभी कभी हो जाता है सर। जी मैम, और सब बढ़िया, मन करके आए होंगी।
6: जी जी, और आपका हुआ?
7: जी हम लोग भी तक करके जाते हैं दुकान पे, मतलब दुकान पे रहते हैं गोपालगंज में।
6: जी जी, किस चीज का दुकान है?
7: हम लोग का मतलब यही खतरा का लेडीज का।
6: अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया। तो फिर
7: एम्प्लॉय तो नहीं मिलेगा फरमाइश?
6: जी
7: आज जो फरमाइश होगा आज तो नहीं बजेगा।
6: बजेगा,
7: आज बजेगा मैम।
6: जी जी बता दीजिए।
7: मैम को गाना की फरमाइश यही है, तेरी जिंदगी उड़ा के ले गई मेरी जिंदगी, ऐसा गाना है।
6: जी एक बार और बता दीजिए।
7: तेरी जिंदगी उड़ा के ले गई मेरी जिंदगी, ऐसा गाना है।
6: अच्छा, और गाना सुनवाना भी है किसी को?
7: आपको, भारती मैम को, सभी आर्जे को, जितने भी दोस्त हैं, सुन लो रेडियो दोस्त सबको।
6: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
7: धन्यवाद और बाय
6: बाय, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
7: ओके।

0: हेलो जी रिमझिम रेडियो गोपालगंज जी।
1: जी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: सोनिया बेटा जी प्यार सत्कार भाई, सत श्री अकाल भाई। मैं भाई पिंड मौड खुरद डिस्ट्रिक्ट बठिंडा पंजाब तो जगजीत मट्टू बोलदा भाई।
1: बस कैसे हैं आप?
0: ठीक ठाक भाई, तुसी दसो भाई थोड़ी सेहत ठीक ठाक है?
1: बस क्या हो रहा है अभी?
0: अभी भाई सुबह तो थोड़ी थोड़ी मेहनत मेहनत भाई पंजाब च बारिश आई सी, आप पूरी धूप निकली हुई है। तुहाडे भाई गोपालगंज कैसा है मौसम?
1: मौसम तो धूप निकला हुआ है
0: भाई, इसकी बारिश हो ही नहीं भाई, वधिया इसकी साडे पंजाब च तां भाई जमी नहीं हुई अपने पंजाब च।
1: तो फिर फरमाइश बता दीजिए।
0: बेटा जी आज एक पंजाबी सॉन्ग है, उस सिंगर का नाम बताऊं?
1: जी बिल्कुल,
0: कुलदीप मानक साहब है जी। समझ आ गई बेटा?
1: जी जी। और गाने के बोल?
0: हाँ जी उसके बोल हम जी चादर चादर।
1: क्या आप गा के सुना सकते हैं?
0: हाँ जी बेटा जी सुनो जी। बुर प्या कनकानुमाई अम्बिया पक्या अग दे पांबड़ वर्गिया थिया ही तू सांब बुकल विच रखिया गिण वे देना दिया साजा वे बाबर असा सिदका नाल हंडाइया अग दे पांबड़ वर्गिया थिया तेरे वेड़े दो दिन आइया मैं चादर कढ़।

0: के हवा गीता बेटा।
1: ओके, और ये गाना डेडिकेट भी करना चाहते हैं
0: बेटा? पहले जो ये गीत है ना बेटा, एतियों को पैना का परिवार का ही दरपुर गीत कार्मक बढ़िया है बेटा। ए बेटा मेरे मान जो बड़े भाई है सरदार प्रगट सिंह ढिल्लों साहब, सरदार दविंदर सिंह तगड़ साहब, स्वामी धर्मपाल जी, तेजी संतोख सिंह मिस्त्री दिल्लू सूर साहब राजस्थान गंगापुर तो जी, तेजी अपने मलकीत सिंह घड़ी साहब, तेजी परमजीत बाघा पुराना जी, तेजी बेटा तुहानू प्यार सत्कार भरी यह सतरी काल बताते है बेटा।
1: जी जी, तो फिर
0: बेटा एक ना भूल गया मैं, एक भाई बेटा मैं ना भूल गया, प्रिंसिपल अमरजीत सिंह वाला जी।
1: ओके, तो फिर प्ले करते हैं गाना आपका।
0: ठीक है बेटा, बेटा चंगा भाई, सत श्री अकाल भाई, बाबा नानक सिंह चढ़ती कला चरक ज्यों दे रहो बाद दे रहो, सत श्री अकाल भाई।
1: सत श्री अकाल, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: ठीक है बेटा, ठीक है भाई।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो.
3: Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
2: भागे भागे फिरते हैं.
4: तो श्रोताओ, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का. तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना है तो आप भी जुड़ सकते हैं. नंबर है 8029494 पर कॉल करके. तो अब हमें दीजिए जाने की इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM. नमस्कार.
5: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान.
6: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM.
5: सुनो दिल से.

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: All right.

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।